मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज बुधवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की 13वीं तिथि, तदनुसार 3 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:55 और 47 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ।

गर्मी की सुबह हमें जल्दी उठकर प्रकृति के निकट जाने का अवसर देती है। टहलते हुए, योग करते हुए या खुली हवा में कुछ पल बिताते हुए मन आनंद और सकारात्मकता से भर उठता है।

नमस्ते लखनऊ में मैं अंजलि श्रीवास्तव भोर की सुहानी बेला में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। सुबह के 6 बजने वाले हैं, समय है समाचारों का। आइए चलते हैं दिल्ली केंद्र।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग की अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। बोर्ड ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्ज आज से 4 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कल नई दिल्ली में बताया कि उनके साथ उनके मंत्रिमंडल के प्रमुख मंत्री भी होंगे और वे इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी।
1: विजिट ऑफ द एक्टिंग प्रेसिडेंट।
2: वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इन वार्ताओं में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग के अवसरों की खोज पर भी चर्चा होगी।
1: ट्रांसपोर्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी।
0: भारत ने नेपाल के साथ सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की किसी भी तरह की भूमिका को खारिज कर दिया है। कुछ दिन पहले नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने लंबित सीमा विवाद को सुलझाने में चीन और ब्रिटेन के शामिल होने की मांग की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सीमा मुद्दों के सभी पहलुओं को सुलझाने के लिए स्थापित द्विपक्षीय तंत्र मौजूद है।
3: भारत नेपाल सीमा का लगभग 98% हिस्सा निर्धारित हो चुका है। सीमा के निर्धारित हिस्सों में सीमा पार कब्जे और नो मैन्स लैंड पर अतिक्रमण के मामले भी हैं, जिसका संयुक्त रूप से मानचित्रण किया जा रहा है। हमने सीमा संबंधित सभी मामलों से निपटने के लिए द्विपक्षीय तंत्र स्थापित किए हैं। भारत और नेपाल के बीच जो भी द्विपक्षीय मामले हैं, उसमें किसी तरह से तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं है।
0: जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क और संबंधों को मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की 2 दिवसीय उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त शांतमनु करेंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एक

एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। पश्चिम बंगाल सरकार आज अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करेगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। तीसरे और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टोंटन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर और 3 गेंद में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती इलाकों गुजरात, ओडिशा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सिक्किम में भी वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आप सुन रहे हैं मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। समय है हमारे किसान भाइयों को कृषि से संबंधित जानकारी देने का। आज सुनिए फलदार वृक्षों में सामयिक प्रबंधन विषय पर डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, खेती के साथ साथ जहां व्यावसायिक बागवानी आप कर रहे हैं वहां फलदार वृक्षों में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस समय जो भी फलदार वृक्ष हैं, चाहे फलत में हैं या बिना फलत के, उनमें सामयिक प्रबंधन में क्या कुछ करें बागवान भाई बहन।
2: सबसे पहले मेरा किसान भाइयों को नमस्कार। जो हमारे फलदार वृक्ष हैं, अच्छे उत्पादन और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो भी समसामयिक कार्य हैं, चाहे हमारा जुताई हो, खुदाई हो, सिंचाई हो या हमारा कटाई छटाई हो, यदि वो समय समय पर होते रहेंगे तो हमारे फलों की गुणवत्ता भी अच्छी रहेगी और पौधे भी हमारे स्वस्थ रहेंगे। तो हमें किसान भाइयों से यही कहना है कि सारी जो भी गतिविधियां हैं वो हमारी समय समय पर होती रहनी चाहिए।
1: जैसे इस समय आम के बागों में फलत है, लीची में फलत है, बेल में है, फालसा में है, तो बागवान भाई कौन कौन सा महत्वपूर्ण काम करें? एक तो तेज गर्मी है
2: जी जी,
1: तो फसल की प्यास भी बुझाना
2: जी जी जी। तो किसान भाइयों को फलों की तुड़ाई समय ध्यान रखना है कि फल जब पूरी तरीके से पक जाए तभी तोड़ना है। यदि कच्चा फल तोड़ देंगे तो उसकी गुणवत्ता हमारी खराब हो जाएगी। जैसे हमारे फालसा में है, फालसा एक ऐसा फल है जो कि तुड़ाई के तुरंत बाद ही प्रयोग होता है। ऐसा नहीं है कि उसको तुड़ाई के बाद में हम उसको रख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे आम फल है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि फल यदि कच्चा टूट गया तो उसकी हमारी गुणवत्ता खराब हो जाएगी। उसको हमें यदि मार्केट में या बाहर भेजना है तो हम उसकी क्वालिटी को अच्छा सा मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ जब भी तुड़ाई करें तो हमें उसमें सावधानी बरतनी चाहिए, फल टूटे ना और खराब नहीं होना चाहिए।
1: जहां अभी कच्चे फल हैं तो फलदार वृक्ष में सिंचाई भी आवश्यक है?
2: हाँ बिल्कुल, बहुत जरूरी है क्योंकि यदि इस समय गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, अभी बारिश कुछ जगह पे नहीं हुई है, तो हल्की सिंचाई यदि हो जाएगी तो हमारे फलदार वृक्षों में जो हमारे फल लगे हुए हैं वो फल भी अच्छे होंगे और पौधे भी हमारे उसी तरीके से ठीक बने रहेंगे।
1: डॉक्टर साहब, जहाँ फलत खत्म होगी, फलों की तुड़ाई हो जाएगी, तो फसल की भूख मिटाने के लिए जो भी फलदार वृक्ष हैं उनकी भूख मिटाने के लिए क्या खाद और उर्वरकों का प्रयोग भी करना होगा?
2: जी, क्योंकि एक बार फलत

0: आने के बाद जब उनकी तुड़ाई हो जाती है तो हमारे पोषक तत्वों की पौधों में कमी हो जाती है, तो उसकी पूर्ति के लिए हमको पोषक तत्व देना जरूरी होता है। इसके लिए एक मापदंड है, यदि हमारे पेड़ 10 साल के हैं तो उसमें हमारा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का जो एक रेशियो होता है 1 किलोग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से हमको देना चाहिए।
1: यानी 1 किलोग्राम नाइट्रोजन?
0: नहीं, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास तीनों जो हमारी होती हैं वो 1 किलोग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से होना चाहिए।
1: 10 साल या 10 साल से अधिक?
0: 10 साल या 10 साल से उसके ऊपर है। यदि हमारे पेड़ 5 साल के हैं तो हमारा 500 ग्राम, 6 साल के हैं तो हर साल 1 साल से 10 साल तक हम 100 ग्राम जो खाद है उसको बढ़ाते जाएंगे, 10 साल उसके ऊपर हम 1 किलो प्रति पेड़ हम उसको देने।
1: यानी तत्व के रूप में नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास
0: होनी चाहिए।
1: तो उसका अनुपात भी होगा कोई?
0: जी, उसका अनुपात हमारा होता है 40 ग्राम नाइट्रोजन है और 40 ग्राम हमारी फास्फोरस है और 20 ग्राम हमारी पोटास है।
1: यानी अगर 1 किलो की बात करें तो 400 ग्राम नाइट्रोजन, 400 ग्राम फास्फोरस और 200 ग्राम पोटास प्रति पेड़ के हिसाब से।
0: जी जी जी।
1: और कार्बनिक खादों में?
0: कार्बनिक खादों में यदि हम गोबर की खाद अप्लाई करते हैं या डालते हैं किसान भाई, तो प्रति पेड़ हमारे 20 से 25 किलोग्राम गोबर की खाद मिला देंगे तो और अच्छा रहेगा, उसकी बढ़वार अच्छी होगी और फलों की गुणवत्ता भी अच्छी आएगी।
1: डॉक्टर साहब, इस समय जहां फलत में है तो हम लोग जीवन रक्षक सिंचाई भी करते रहे क्या?
0: जी बिल्कुल, समय समय पर हल्की सिंचाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम पानी की वजह से कई बार क्या होते हैं हमारे जो फल लगे हुए हैं वो गिर भी जाते हैं, तो इसलिए हल्की सिंचाई समय समय पर, जिससे पौधे स्वस्थ भी रहें और फल भी हमारे न गिरें।
1: डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि आम है, लीची है, बेल है, कटहल है, बहुत सारे भूले बिसरे फल हैं जिनमें फलत है, तो फलों की तुड़ाई के बाद क्या उनकी डालियों की कटाई छटाई भी करना फायदेमंद है?
0: हाँ, ये कटाई छटाई जो है वो आवश्यकता अनुसार हमको करनी चाहिए। जैसे हमारी कोई डाली खराब हो गई है, टहनी खराब हो गई है या हमें इस डाल को हटाना है, उनको हमें काट देना चाहिए। कटाई के बाद ये ध्यान रखना है, एक आता है कॉपर सल्फेट या नीला थोथा बोलते हैं, तो उसको हमें जरूर लगा देना चाहिए। इससे लगाने से क्या होता है कि वहाँ पे जो कटा हुआ भाग है वहाँ से हमारे पौधे में बीमारी नहीं लगती है,
1: कोई संक्रमण नहीं
0: होता, संक्रमण नहीं होता। जी
1: डॉक्टर साहब, चूंकि फलदार वृक्षों में सामयिक प्रबंधन की बात चल रही है, तो आने वाला समय जब बरसात होगी तो नए फलदार वृक्ष भी लगेंगे, नए पौध लगेंगे, तो जहाँ नए फलदार वृक्ष लगाने की योजना है तो बागवान भाई इस समय क्या कुछ कर सकते हैं?
0: जो भी किसान भाई हमारे नए बाग लगाना चाहते हैं या तैयारी करना चाहते हैं, वो इस समय बहुत अच्छा समय है गड्ढों की खुदाई का। गड्ढे की खुदाई करने के बाद 15 से 20 दिन बरसात के पहले यदि पड़े रहेंगे तो उसमें कीट और बीमारी खत्म हो जाएंगी। उसके बाद में उनको 15 से 20 दिन के बाद उनकी भराई कर देनी चाहिए, जिससे कि यदि पहले से हमारे मिट्टी भरी रहेगी तो पौधे लगाना हमारा आसान हो जाएगा। भराई करते समय किसान भाइयों को ध्यान रखना है कि जो यदि खेत की मिट्टी अच्छी है तभी उस मिट्टी को दोबारा उसमें खाद और जो भी हमारे पोषक तत्व मिला करके डालना चाहिए, नहीं तो उस मिट्टी को हटा करके बाहर की मिट्टी, एक उसका अनुपात होता है 3:1 मिट्टी, 2 भाग गोबर सड़ी खाद और 1 भाग बालू मिलाकर के उसमें भर करके छोड़ देना चाहिए। जैसे ही बरसात का समय हो उसके बाद में उसमें पौधा लगा देना चाहिए।
1: देख सब, जो उन्नत प्रजातियों की फलदार पौध है इसका चुनाव भी तो महत्वपूर्ण है।
0: जी बिल्कुल है, उन्नत प्रजाति से ही हमारा उत्पादन अच्छा होता है। जैसे कि हमारे आम में हमारी बौनी प्रजातियां आ गई हैं, ऐसी प्रजातियां हैं जो हर साल भी फल देती हैं, जैसे हमारे IRI जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है वहां से हमारे कुछ प्रजातियां हैं, तो उनका हमको प्रयोग करना चाहिए। हमारे रहमान खेड़ा लखनऊ से जैसे अंबिका प्रजाति है उसका प्रयोग करना चाहिए। ये प्रजातियां जैसे आम्रपाली है, अर्का अनामिका है, ये प्रजातियां हमारी हैं, तो ये हर साल फलत भी देती हैं और इनमें फल भी अधिक आता है, तो उनका प्रयोग करना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे फलदार वृक्षों में सामयिक प्रबंधन के बारे में, अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके कृषि विश्वविद्यालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 9 4 5 0

0: 2 3 4 4 0 6, 9 4 5 0 2 3 4 4 0 6, 94 50 23 44 06।
1: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं बागवान भाइयों बहनों का फलदार वृक्षों में सामयिक प्रबंधन के बारे में? डॉक्टर साहब,
0: किसान भाइयों को अपनी निगरानी, जो भी हमारे बाग हैं उनको समय समय पर देखते रहना चाहिए। कोई चाहे कीट हो, बीमारी हो, जो भी है, उसको तुरंत वैज्ञानिक से सलाह करके तुरंत उसका निदान करना चाहिए, क्योंकि एक बार यदि कीड़ा या बीमारी लग गई या आपने समय से सिंचाई नहीं गई, फल गिर गया, तो फिर हमें ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए हमको समय समय पर उसकी निगरानी करते रहना चाहिए और कोई भी समस्या है तुरंत वैज्ञानिक से संपर्क करके उसका निदान करना चाहिए, जिससे कि हमें फलत भी अच्छी मिले और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी हो। इसी के साथ साथ जो भी हमारे चाहे हमारे पोषक तत्व हों उनको हमें समय से अप्लाई करना है। सिंचाई का कार्य है वो भी हमको करना है। फलों की तुड़ाई है उसको भी हमें समय से कर लेना चाहिए। साथ ही साथ कटाई छटाई की जो मैं बात कर रहा था उनको भी हमें समय पर ही करना चाहिए, जिससे उत्पादन हमारा अच्छा रहे और पौधा भी हमारा स्वस्थ बना रहे।
1: डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और फलदार वृक्षों में सामयिक प्रबंधन क्या कुछ करें बागवान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। आपके बहुमूल्य सुझाव पर बागवान भाई बहन अवश्य ध्यान देंगे। डॉक्टर साहब, आज कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: फलदार वृक्षों में सामयिक प्रबंधन विषय पर अभी आप डॉक्टर संतोष कुमार वर्मा से की गई ये भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। इसी के साथ कृषि चर्चा कार्यक्रम समाप्त हुआ। आपने ट्यून किया है मीडियम वेव की फ्रीक्वेंसी 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर। कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। आज के सुविचार में सुनिए धर्म और सामाजिक न्याय के बारे में स्वर आशाराम मिश्रा का।
3: वर्तमान समय में जब धर्म का अर्थ और स्वरूप बुरी तरह विकृत हो, धर्म और सामाजिक न्याय में संबंध जोड़ना आश्चर्यजनक घटना ही माना जा सकता है। लेखन के दौरान मेरे एक सहयोगी इस शीर्षक को देखकर अचंभित रह गए। उनका तर्क था कि धर्म तो समाज के शोषण का अमोघ अस्त्र रहा है। आस्तिकों की धर्म वीरता और आस्थाओं का जिस तरह धर्माचार्यों, धर्म के ठेकेदारों द्वारा अनुचित दोहन किया जा रहा है, वो वास्तव में हर विचारशील व्यक्ति को इस शीर्षक पर अविश्वास करने के लिए पर्याप्त है। किंतु यहाँ यह भी स्पष्ट करना समीचीन होगा कि हम इस शीर्षक के अंतर्गत जिस धर्म की चर्चा कर रहे हैं वो वर्तमान का रुग्ण धर्म नहीं है। बरसात के दिनों में गंगा का निर्मल जल मटेला हो जाता है, फिर भी गंगा जल आज भी उन समस्त दोषों से मुक्त और शुद्ध है। गंगा आज भी पवित्र है। गंगा जल आज भी रोगाणुहीन है। कुछ ऐसा ही धर्म के संबंध में कहा जा सकता है। धर्म का समूचा ताना वाना व्यक्ति केंद्रित है और व्यक्ति समाज का अंग है। व्यक्तियों से समाज बनता है, इसलिए व्यक्ति के आचरण पर बल देकर पूरे समाज के लिए विवेकशील चिंतनशील व्यक्तित्व का निर्माण ही धर्म की पृष्ठभूमि का निर्माण करता है। जिस समाज का हर व्यक्ति सदाचारी, सुशिक्षित, विवेकी और नेक होगा, वो समाज भी सुखी और संपन्न होगा। आइए अब जरा धर्म और सामाजिक न्याय के संबंध में विचार करें। यद्यपि धर्माचार्यों ने कहीं भी सामाजिक न्याय शब्द का प्रयोग नहीं किया है, किंतु ऐसे अनेक नियम विधान अवश्य बनाए हैं जो सामाजिक न्याय की दुहाई देते हैं। धर्म कर्म को परलोक और मोक्ष से जोड़कर अत्यंत रहस्यमयी अनिवार्यता बना दिया गया। जो कार्य आज शासन लोक कल्याण की योजनाएं बनाकर कर रहा है, सामाजिक निकाय का वो कार्य बिना किसी नामकरण के कर दिया है। आज विश्व में प्रचलित हर धर्म दर्शन में ऐसे अनेकों कार्यों को अनुमोदित और अनुप्रेरित किया गया है जिसका उद्देश्य समाज के निर्बल, साधनहीन, रोगी, अपाइस और कोड़ी लोगों को भोजन, वस्त्र आदि मुहैया कराना रहा है। भूखों और अपाइजों को अन्नदान, वस्त्रदान देना, निर्बलों की सेवा, दान दक्षिणा जैसे धार्मिक कार्य सामाजिक न्याय के अनूठे उदाहरण हैं। और भारतीय दर्शन और धर्म

0: वेदांत ऐसे अनेकों सत्कार्यों की शिक्षा देता है। भारतीय धर्म दर्शन में चींटियों को चुमाना, कौओं को खाना खिलाना भी धर्म कर्म की कोटि में रखा गया है, जो न केवल मनुष्य वरन जीव मात्र के पोषण की शिक्षा है। इसी प्रकार इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म में दान, गरीबों को अन्न वस्त्र देने, भोजन खिलाने की व्यवस्था की गई है। धर्मशालाएं, कुआं, रैन बसेरा बनाने की प्रेरणा दी गई है। इस्लाम धर्म में तो हर व्यक्ति को अपनी आय का निश्चित अंश गरीबों, अपाहिजों, जरूरतमंदों, मजलूमों पर व्यय करने का निर्देश दिया गया है। यदि तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया है और तुमने खाना खा लिया है तो तुम्हारा खाना हराम है। कहने वाला धर्म चिंतन सामाजिक न्याय का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धर्मशाला बनाना, प्यासों के लिए कुएं बनवाना, सराय बनवाना और रैन बसेरा का निर्माण करने का उद्देश्य मात्र साधनहीन लोगों को विभिन्न सुविधाएं प्रदान करना ही तो रहा है। ये समस्त कार्य धर्म के कार्य माने गए हैं। विश्व के हर धर्म दर्शन में किसी न किसी नाम और रूप में इन कार्यों को प्रोत्साहित किया गया है। ये हमारा अपना दुर्भाग्य, अपनी संकीर्णता और अज्ञानता है कि आज हम धर्म के सार्वभौम स्वरूप को समझ नहीं पा रहे हैं।
1: अभी आप सुविचार में धर्म और सामाजिक न्याय के बारे में सुन रहे थे। स्वर आशाराम मिश्रा का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

श्री गणेश शुभ तत्व की निर्माता हैं, अतः प्रातःकाल ही श्री गणेश जी का स्मरण करने से हमारा संपूर्ण दिन शुभ आनंदमय और निर्विघ्न व्यतीत होता है।

भक्ति का एक और अर्थ प्रेम भी है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो प्रेम कभी किसी दूसरे से नफरत करना नहीं सिखाता।

राम से बढ़कर है राम का नाम। जिसने भी राम नाम को आधार बनाया उसका जीवन सुगम हो गया। हे मन, तू संसार की विषय वासना और विकारों से प्रीति तोड़कर श्री राम नाम का जप कर ले।

आप सुन रहे हैं नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम। भक्ति की इस धारा प्रवाह को निरंतर बनाए रखने के लिए अब हम चलते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुनने के लिए। आज आप सुनेंगे भाग संख्या 191।

दशरथ के दाह संस्कार, दशगात्र विधान आदि के बाद कुलगुरु वशिष्ठ ने भरत जी को राजपद संभालने का उपदेश दिया। भरत ने इस प्रस्ताव को अस्वीकृत करते हुए कहा कि उनका कल्याण मात्र श्री राम की चाकरी में निहित है। अवध का राजपद श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण की अनुपस्थिति में उनके लिए शोक का संसार बन गया है। जिस प्रकार वस्त्र के अभाव में आभूषण व्यर्थ हैं, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार का कोई अर्थ नहीं, रोगी शरीर के लिए जिस प्रकार नाना प्रकार के भोग, हरे भक्ति के बिना जप तथा जोग तथा जीव के बिना देह व्यर्थ है, उसी प्रकार श्री राम के बिना उनके लिए राज सिंहासन, भोग और ऐश्वर्य सभी व्यर्थ हैं। भरत गुरुजन की आज्ञा लेकर श्री राम के पास वन में जाना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में ही उनके जीवन की सार्थकता है। उनका विचार है कि मात्र मोह के वशीभूत होकर गुरुजन उन्हें सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जबकि धर्म के अनुसार शीलवान को ही राजपद शोभा देता है। यदि हठ करके उन्हें राज्य दे दिया गया तो पृथ्वी रसातल चली जाएगी। खुमाता कैकई की कोख से पैदा होना उनके लिए अभिशाप बन गया है।

0: अभी आप श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति सुन रहे थे। गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का था। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। प्रत्येक बुधवार शाम 6:30 पर सुनिए कार्यक्रम हेलो किसान, प्रायोजक इफको।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।

श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे साधन की जो सिर्फ सवारी का माध्यम नहीं बल्कि पर्यावरण, सेहत और बचपन की यादों से जुड़ा है। आज है विश्व साइकिल दिवस, एक दिन जो हमें ये याद दिलाता है कि साइकिल कोई पुरानी चीज नहीं बल्कि आज के समय की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित ये दिन हर साल 3 जून को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य केवल साइकिल चलाने को बढ़ावा देना ही नहीं बल्कि ये भी बताना है कि कैसे साइकिल सामाजिक समरसता, पर्यावरण की रक्षा और शारीरिक स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाती है। हमारे देश में

साइकिल का इतिहास बहुत पुराना है। एक समय था जब साइकिल घर में होने का मतलब होता था आत्मनिर्भरता और सादगी। स्कूल जाने वाले बच्चे हों या काम पर जाने वाले बड़े लोग, साइकिल हर किसी की जीवन शैली का हिस्सा हुआ करती थी। साइकिल चलाना न केवल एक अच्छा व्यायाम है बल्कि ये हमारे पूरे शरीर को सक्रिय करता है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो हमारे पैरों की मांसपेशियां, दिल की धड़कन और फेफड़ों की क्षमता सब एक साथ काम करने लगते हैं। रोजाना 20 से 30 मिनट साइकिल चलाना शरीर को फिट रखने में काफी सहायक होता है। ये मोटापे को कम करने, मधुमेह को नियंत्रित करने, उच्च रक्तचाप को संतुलित रखने और हृदय को मजबूत बनाने में मदद करता है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये व्यायाम बिना किसी जिम फीस के, बिना किसी उपकरण के किया जा सकता है। बस एक साइकिल चाहिए और थोड़ा सा समय। बच्चों के लिए ये एक बेहतरीन आदत है। सुबह सुबह अगर बच्चे साइकिल लेकर पार्क जाएं, खेलें, हंसें, तो न केवल उनका शरीर चुस्त रहता है बल्कि उनकी मानसिक ऊर्जा भी बढ़ती है। किशोर अवस्था में साइकिल चलाने से शरीर में स्टेमिना विकसित होता है और रोगों से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। और यही नहीं, ये आत्मनिर्भरता की भावना भी पैदा करता है। खुद स्कूल जाना, खुद बाजार जाना, छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाना, इन सब में साइकिल साथी बनती है। आज के समय में जब गाड़ियों का शोर, ट्रैफिक की भीड़ और प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तब साइकिल हमें सादगी और पर्यावरण से जुड़ाव की ओर वापस ले जाती है। ये न केवल प्रदूषण मुक्त होती है बल्कि शहरों में ट्रैफिक को भी कम करती है। कल्पना कीजिए, अगर हम सप्ताह में दो दिन भी अपने छोटे छोटे कामों के लिए साइकिल का इस्तेमाल करें, जैसे कि बाजार जाना, ऑफिस के पास की दूरी तय करना, तो इसका प्रभाव न केवल हमारे स्वास्थ्य पर पड़ेगा बल्कि पर्यावरण भी हल्का सांस ले सकेगा। महिलाओं के लिए भी साइकिल एक सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुकी है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में जहां अब तक लड़कियों की स्कूल जाने की संख्या सीमित थी, वहां सरकार और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा साइकिल वितरण योजनाओं ने बहुत बड़ा बदलाव लाया है। अब लड़कियां आत्मविश्वास के साथ स्कूल जाती हैं, समय पर आती जाती हैं और शिक्षा की राह पर आगे बढ़ती हैं। साइकिल उनके लिए न केवल एक वाहन है बल्कि स्वतंत्रता का एक माध्यम भी बन चुका है। बुजुर्गों के लिए भी साइकिल चलाना हल्के व्यायाम का उत्तम विकल्प हो सकता है। कुछ लोग सुबह के समय शांत रास्तों पर आराम से साइकिल चलाते हैं। इससे उनके जोड़ों में लचीलापन बना रहता है और शारीरिक गति बनी रहती है। निश्चित रूप से उम्र के अनुसार सावधानी बरतनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक संभव हो साइकिल से दूरी नहीं बनानी चाहिए। आज के दिन हमें ये समझना होगा कि अगर हम साइकिल जैसी सादगीपूर्ण चीज को अपने जीवन में फिर से अपनाएं, तो वो हमें एक नई ऊर्जा, शांति और स्वास्थ्य दे सकती है। कई देशों में तो अब साइकिल फ्रेंडली शहर बनाए जा रहे हैं, जहां पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए अलग रास्ते बनाए जाते हैं। भारत में भी कुछ शहरों में ये प्रयास शुरू हो चुका है और हमें इस दिशा में और पहल करनी होगी। श्रोताओं, आज विश्व साइकिल दिवस पर हम क्यों ना एक संकल्प लें कि हम सप्ताह में कम से कम दो दिन साइकिल चलाएंगे, बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, खुद बताएंगे और दूसरों को भी इसके फायदों के बारे में बताएंगे। ये छोटे छोटे कदम हमारी सेहत, पर्यावरण और समाज तीनों के लिए वरदान बन सकते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त होती है, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।

अभी आप विश्व बाइसिकल दिवस पैडल से जुड़ी सेहत और सादगी की कहानी विषय पर नीना सोनकर द्वारा दी गई ये जानकारी सुन रहे थे। इसी के साथ स्वास्थ्य चर्चा संपन्न हुई। आकाशवाणी लखनऊ आज जिन कार्यक्रमों को आपके लिए ला रहा है उनके बारे में आपको जानकारी दे दें। चर्चा का विषय है कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 9:30 पर। सरकार के 12 वर्ष

पूर्ण होने पर विशेष श्रृंखला प्रसारित होगी रात 11:10 पर। विषय है मध्यम वर्ग कल्याण। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत रात 8:00 धर्मराज उपाध्याय से सुनिएगा काव्य पाठ, वाचन एवं संपादन सुरेंद्र राजेश्वरी का। उर्दू कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा आकाशवाणी प्रयागराज मरकज की पेशकश, सुनिएगा मकाला। मौजू है शिबली नुमानी की मायनाज तस्नीफ शेरुल अजम। मकाला निगार हैं प्रोफेसर सालेहा रशीद। इसके बाद कलामी शायर के तहत आप सुनेंगे डॉक्टर जफर उल्ला अंसारी से उनका कलाम। जिले की हलचल कार्यक्रम में सुबह 9:15 पर आज लखनऊ और गाजियाबाद जिलों की हलचल प्रसारित होगी। सुबह 7:10 पर विविधा कार्यक्रम में आज का विषय है विश्व बाइसिकल दिवस। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर और रात 10:30 पर सुभांत मुखर्जी का वायलिन वादन प्रसारित होगा। दिन में 1:15 पर आंगनवाड़ी कार्यक्रम में मातृत्व की सही आयु अधिक उम्र में मातृत्व क्या आती हैं दिक्कतें विषय पर डॉक्टर पुष्पलता शंखवार प्रोफेसर स्त्री एवं प्रसूति KGMU लखनऊ से की गई भेंटवार्ता बहने सुनेंगी। भेंट करता है नीना सुनकर। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर डॉक्टर राम कुमार सिंह से भेंटवार्ता का विषय है धान की सुगंधित प्रजातियां। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय। युवा साथी युवा तरंग कार्यक्रम सुनते हैं शाम 5:10 पर। नई उड़ान कार्यक्रम में शाम 5:45 पर फिट इंडिया के अंतर्गत ओबी पर आधारित कार्यक्रम कार्यस्थल पर स्वास्थ्य संस्कृति स्वस्थ दफ्तर सशक्त जीवन आप सुनेंगे। शाम 6:30 पर किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान प्रसारित होगा। विषय है फल फूल और सब्जियों में सामयिक प्रबंधन, फलदार पौधों की सघन बागवानी, खरीफ में सब्जी उत्पादन, फूल उत्पादन, मशरूम उत्पादन, मौन पालन और शहद उत्पादन। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पंकज नौटियाल वरिष्ठ वैज्ञानिक अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र 2 संडीला हरदोई। शाम 7:31 पर कानून की बात कार्यक्रम का प्रसारण होगा। लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी कार्यक्रम में दिन में 2:45 पर कुसुम वर्मा और पूर्विका पांडे के गाए अवधि युगल गीतों का आनंद आप ले सकते हैं। सुगम संगीत कार्यक्रम में रात 8:10 पर कमाल अहमद खान की गाए गजलें पेश की जाएंगी। पुरानी फिल्मी नगमे सुनिएगा ओल्ड इज गोल्ड कार्यक्रम में रात 10:00। पतवा ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम बातों में श्रोता सुनेंगे शाम 7:45 पर। श्रोताओं के पत्र व ईमेल पर आधारित कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत जरूर सुनिएगा सुबह 8:45 पर। फिल्म संगीत का फोन इन इंटरेक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें सुनना न भूलिएगा सुबह 11:00 से। इसके अलावा समय समय पर प्रायोजित कार्यक्रम और चित्रपट से कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये थी संक्षिप्त रूपरेखा आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ और कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम विविधा।

विविध रंगों को समेटे कार्यक्रम विविधा में मैं अंजलि श्रीवास्तव आपको नमस्कार करती हूँ। कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है विश्व बाइसिकल दिवस। आज हम एक ऐसे साधन की बात करने जा रहे हैं जो साधारण दिखता है लेकिन जिसका महत्व असाधारण है। एक ऐसा साथी जो न केवल हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है बल्कि हमारे स्वास्थ्य, पर्यावरण और जीवन की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विश्व बाइसिकल दिवस की, जो प्रत्येक वर्ष 3 जून को मनाया जाता है। साइकिल केवल दो पहियों का वाहन नहीं बल्कि यह संतुलन, सरलता, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। आज जब दुनिया प्रदूषण, बढ़ती बीमारी, ईंधन संकट

और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से जूझ रही है, तब साइकिल एक ऐसा समाधान बनकर सामने आती है जो सस्ता भी है, सरल भी और टिकाऊ भी। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने साइकिल के महत्व को स्वीकार करते हुए विश्व साइकिल दिवस मनाने की शुरुआत की, ताकि लोगों को इसके लाभों के प्रति जागरूक किया जा सके। मित्रों, यदि हम अपने बचपन की यादों में जाएं, तो साइकिल से जुड़ी अनेक मधुर स्मृतियां सामने आती हैं। किसी ने साइकिल चलाना सीखते समय गिरकर फिर उठना सीखा होगा, तो किसी ने पहली बार साइकिल मिलने पर खुशी का अनुभव किया होगा। साइकिल हमें केवल रास्तों पर चलना नहीं सिखाती, बल्कि जीवन में संतुलन बनाए रखना भी सिखाती है। जब हम संतुलन बनाए रखते हैं, तब तक हम आगे बढ़ते रहते हैं। यही संदेश जीवन के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी बन गया है। आधुनिक जीवन शैली में लोग घंटों बैठकर काम करते हैं, शारीरिक गतिविधियां कम हो गई हैं और परिणाम स्वरूप मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और हृदय रोग जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में साइकिल चलाना एक उत्कृष्ट व्यायाम है। यह हृदय को मजबूत बनाता है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है, मांसपेशियों को सक्रिय रखता है और मानसिक तनाव को भी कम करता है। प्रतिदिन कुछ समय साइकिल चलाने से शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, व्यक्ति स्वयं को अधिक स्वस्थ एवं प्रसन्न महसूस करता है। विश्व साइकिल दिवस हमें पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है। आज वाहनों से निकलने वाला धुआं वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। बड़े बड़े शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है, जिससे मानव स्वास्थ्य और प्रकृति दोनों प्रभावित हो रहे हैं। साइकिल एक ऐसा वाहन है जो न धुआं छोड़ता है और न ही शोर पैदा करता है। यह पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल साधन है। यदि छोटी छोटी दूरियों के लिए अधिक लोग साइकिल का उपयोग करें, तो प्रदूषण में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती है। साथियों, साइकिल आर्थिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें पेट्रोल या डीजल की आवश्यकता नहीं, इसके रखरखाव का खर्च भी कम होता है। यही कारण है कि यह समाज के हर वर्ग के लिए सुलभ साधन है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी लाखों लोग शिक्षा, रोजगार और दैनिक कार्यों के लिए साइकिल का उपयोग करते हैं। अनेक विद्यार्थियों के लिए साइकिल शिक्षा तक पहुँचने का माध्यम है। यह उनके सपनों को गति देने वाली साथी बन जाती है। आज दुनिया के अनेक देशों में साइकिल संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेष साइकिल ट्रैक बनाए जा रहे हैं, लोगों को साइकिल उपयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है और ग्रीन ट्रांसपोर्ट की अवधारणा को मजबूत किया जा रहा है। भारत में भी कई शहरों में साइकिल चलाने के प्रति लोगों की रुचि बढ़ रही है। विशेष रूप से युवा वर्ग फिटनेस और पर्यावरण के प्रति जागरूक होकर साइकिल को अपना रहा है। यह एक सकारात्मक परिवर्तन का संदेश है। विश्व साइकिल दिवस का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह भी है, समानता और समावेशन। साइकिल किसी विशेष वर्ग की नहीं, यह अमीर और गरीब, युवा और बुजुर्ग, महिला और पुरुष सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। यह सामाजिक समानता का प्रतीक भी है। जहां आधुनिक वाहन कभी कभी सामाजिक विभाजन को दर्शाते हैं, वहीं साइकिल सरलता और समान अवसर का संदेश देती है। आज डिजिटल युग में बच्चे और युवा मोबाइल तथा कंप्यूटर पर अधिक समय बिताने लगे हैं। इसका प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। ऐसे समय में साइकिल उन्हें खुले वातावरण से जोड़ सकती है। साइकिल चलाने से बच्चों का शारीरिक विकास बेहतर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रकृति के साथ उनका संबंध मजबूत होता है। इसलिए अभिभावकों और शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों को साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करें। श्रोताओं, साइकिल हमें धैर्य, अनुशासन और निरंतरता का भी पाठ पढ़ाती है। जैसे साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए लगातार पैडल मारना पड़ता है, वैसे ही जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास आवश्यक है। यदि हम रुक जाते हैं तो प्रगति भी रुक जाती है। साइकिल का यह सरल सिद्धांत जीवन की बड़ी सीख बन जाता है।

आज विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि जहां संभव हो छोटी दूरी के लिए साइकिल का उपयोग करेंगे। इससे हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा, ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ एवं सुरक्षित पर्यावरण मिल सकेगा। ये केवल व्यक्तिगत लाभ का नहीं बल्कि सामाजिक और राष्ट्रीय हित का भी विषय है। अंत में यही कहा जा सकता है कि साइकिल केवल परिवहन का साधन नहीं बल्कि स्वस्थ जीवन, स्वस्थ पर्यावरण और सतत विकास की दिशा में बढ़ाया गया एक सशक्त कदम है। आइए विश्व साइकिल दिवस पर हम साइकिल के महत्व को समझें, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें और एक ऐसे भविष्य के निर्माण में योगदान दें जहां विकास और प्रकृति के साथ साथ आगे बढ़ें। इसी के साथ आज का विविधा कार्यक्रम समाप्त करने की मैं अंजलि श्रीवास्तव आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने गोरखपुर केंद्र से रिले कर रहे हैं।

0: सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
1: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
0: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
1: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
0: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का किया गठन। एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी यह समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। नई दिल्ली में आज आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होगी आगरा जिले की बिरहरू ग्राम पंचायत। और वाराणसी

में कल से शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक। संस्कृति विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे 11 देशों के प्रतिनिधि। अब समाचार विस्तार से। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के लिए सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष एस राधा चौहान करेंगी। समिति एक माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इस बीच बोर्ड ने कल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में

0: छात्रों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों में पाई गई त्रुटियों के सत्यापन और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन पोर्टल खोल दिया। यह सुविधा केवल उन्हीं छात्रों के लिए उपलब्ध है जिन्होंने अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां प्राप्त कर ली हैं।
1: पोर्टल शुरू होते ही इसे बड़े स्तर पर साइबर हमलों के जरिए इसकी सेवाओं को बाधित करने का प्रयास किया गया। सीबीएसई ने बताया कि इन्हीं प्रयासों के क्रम में मात्र 2 मिनट में पोर्टल पर 15 लाख हिट दर्ज की गईं और अनधिकृत रूप से फाइलों तक पहुंचने के लिए 1 लाख से अधिक प्रयास किए गए। बोर्ड ने साफ किया कि उसकी टीमें पूरी सतर्कता और तत्परता के साथ काम कर रही हैं ताकि छात्रों को हर संभव सुविधा प्रदान की जा सके। छात्रों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सीबीएसई ने प्लेटफॉर्म में और कई सुधार किए हैं। इसके तहत प्रक्रिया को अधिक सुविधाजनक और निर्बाध बनाने के लिए सेशन की समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर वर्तमान में 8,000 से अधिक उपयोगकर्ता एक साथ काम कर रहे हैं। अब तक 16,000 से अधिक छात्र सफलतापूर्वक अपना मूल्यांकन जमा कर चुके हैं। पोर्टल 6 जून तक खुला रहेगा। आनंद कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: इस बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी लोखंडे प्रशांत सीताराम को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सीताराम इससे पहले गृह मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में कार्यरत थे। सीबीएसई के सचिव का भी तबादला कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण तैयार किया है। श्री योगी ने कहा कि सरकार अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है।
2: मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में सत्ता की बागडोर भारत के उस समय के लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सौंपी। पिछले 12 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके जो कार्य प्रारंभ हुआ, आज परिणाम है डबल इंजन सरकार आने के उपरांत अकेले कुशीनगर में लगभग 90,000 गरीबों के लिए एक एक आवास बने हैं।
0: मुख्यमंत्री ने कल ही गोरखपुर के चिलुआ ताल में 20 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से पर्यटन विकास और सौंदर्यीकरण कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ताल और पोखरों की उपेक्षा होती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार ताल और पोखरों का संरक्षण करती है। अपने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन मुख्यमंत्री आज गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण करेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल आगरा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि एक शुद्ध मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनावों की नींव होती है। उन्होंने मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे अपना वोटर आईडी कार्ड अवश्य बनवाएं और चुनाव में अपना वोट डालें।
3: आगे आने वाले चुनाव भी पारदर्शी और ट्रांसपेरेंट होंगे। शुद्ध मतदाता सूची ही पारदर्शी चुनावों की आधारशिला है। आइए अपना वोट जरूर बनवाइए और चुनावों में वोट जरूर करिए।
0: मुख्य चुनाव आयुक्त ने अपने 2 दिवसीय आगरा दौरे के दौरान कल वहां के कैलाश मंदिर में विधि विधान के अनुसार भगवान शिव की पूजा अर्चना भी की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। देश भर की 42 उत्कृष्ट पंचायतों को ये पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसमें प्रदेश के आगरा जिले के बिरहरू ग्राम पंचायत को भी नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का पुरस्कार मिलेगा। बिरहरू ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान भूरी सिंह परमार आज नई दिल्ली में यह सम्मान ग्रहण करेंगे। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए

0: सरकार और ग्राम पंचायत का विशेष आभार जताया।
1: ये गांव की जनता का पूरा सहयोग रहो, सरकार का भी बहुत सहयोग रहो। पहली बार मैं प्रधान बनूं और लोगों के हिसाब से सरकार को सहयोग और सब गलियां पक्की, इंटरलॉक, सीसी सब कराई गई। बाकी पंचायत घर, सचिवालय, आरआरसी सेंटर, लैब, लाइब्रेरी, ऐसे बहुत से कार्य कराई गई। सरकार को बहुत धन्यवाद।
0: वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। क्षेत्रीय सांस्कृतिक अधिकारी वाराणसी डॉक्टर राम नरेश पाल ने बताया कि प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में हुए प्रयासों को लेकर प्रस्तुत है एक विशेष रिपोर्ट।
2: साल 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत लाखों महिलाओं को बिना किसी गारंटी के ऋण मिल रहा है, जिसके कारण उन्हें अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने में मदद मिली है। वहीं प्रधानमंत्री जनधन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और भूमिनिया जैसी प्रमुख योजनाओं ने महिलाओं की बैंकिंग, बचत और उद्यमिता से जुड़ने की क्षमता को मजबूत किया है। जनधन योजना के तहत अब तक 58 करोड़ से अधिक खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से लगभग 33 करोड़ खाते महिलाओं के नाम पर हैं। मोदी सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल लखपति दीदी है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। वहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कारण राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2014-15 के 918 से बढ़कर वर्ष 2024-25 में 929 हो गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मौसम विभाग ने इस सप्ताह के दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली के सेवा अनुबंध से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक सदस्यीय समिति का किया गठन। 1 माह के अंदर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अपनी रिपोर्ट देगी यह समिति। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में 424 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, डबल इंजन सरकार ने तैयार किया विकास, सुरक्षा और रोजगार का नया वातावरण। नई दिल्ली में आज आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार समारोह। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित होगी आगरा जिले की बिरहरू ग्राम पंचायत। और वाराणसी में कल से शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक। संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे 11 देशों के प्रतिनिधि। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाएं हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान। सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद। अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त। यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन। यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक।

0: यही बने आपकी रक्षक। जब भी आप चलाएं कोई वाहन, ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।
1: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ। नमस्ते लखनऊ में, अब समय है शास्त्रीय संगीत का। आज सुनिए सुशांत मुखर्जी का राग अहीर भैरव और राग बसंत मुखारी में वायलिन वादन। पहले सुनिए सुशांत मुखर्जी का राग अहीर भैरव में वायलिन वादन। विलंबित छपताल में निबद्ध है, मध्य लय एक ताल और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। तबले पर संगत प्रमोद कुमार मिश्र ने की है।

अभी आप सुशांत मुखर्जी का वायलिन पर बजाया राग अहीर भैरव सुन रहे थे। अब सुनिए सुशांत मुखर्जी का ही राग बसंत मुखारी में वायलिन वादन, विलंबित तीन ताल में निबद्ध है द्रुत तीन ताल में।

अभी हमारी श्रोता सुशांत मुखर्जी का वायलिन पर बजाया राग बसंत मुखारी सुन रही थी। तबले पर संगत कर रहे थे प्रमोद कुमार मिश्र। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का एक कार्यक्रम अब समाप्त हुआ। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम भी यहीं समाप्त हो रहा है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी देर में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी के शिवकुमार आज दोपहर कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। और महिला क्रिकेट में मेजबान इंग्लैंड ने तीसरे और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत को 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 2-1 से अपने नाम की। अब समाचार विस्तार से। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च

0: स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। एक रिपोर्ट।
1: भारत और वेनेजुएला के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, विशेषकर ऊर्जा और व्यापार के क्षेत्र में। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा कई क्षेत्रों में सहयोग और गहरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के दौरान दोनों पक्ष आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा करेंगे, जिनमें ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, दवाएं, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, दवा और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी सुविधाओं का दौरा करेगा। इस यात्रा का उद्देश्य सहयोग के अवसर को तलाशना और भारत की तकनीकी तथा औद्योगिक क्षमताओं के बारे में जानकारी हासिल करना है। दीपेंद्र और ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। 8 बार के विधायक डीके शिवकुमार बेंगलुरु के लोकभवन स्थित ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ कुछ कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेंगे। 28 मई को सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस विधायक दल ने 64 वर्षीय डीके शिवकुमार को अपना नेता चुना था। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और रणदीप सिंह सुरजेवाला सहित कई प्रमुख नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याणकारी पहल अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इस योजना का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: पहले चरण में लाभार्थियों को बैंक खाते में आज से ही 3,000 रूपए भेजना शुरू होगा। इस योजना से लगभग 2 करोड़ महिला उपभोक्ताओं को लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। नवन्न में दोपहर 12:30 बजे उद्घाटन समारोह में महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग की मंत्री अग्निमित्रा पल उपस्थित रहेंगी। साथ ही राज्य की सभी ब्लॉक, नगर पालिकाएं और कलकत्ता नगर निगम क्षेत्र में वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका से जुड़ा रहेगा। पूरे कार्यक्रम को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए जिला अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। उद्घाटन के बाद प्रत्येक ब्लॉक और नगर पालिका क्षेत्र में चुने गए 100 अन्नपूर्णा योजना लाभार्थियों को अनुमोदन पत्र प्रदान किया जाएगा। काशफिन नाहर, आकाशवाणी संवाद, कोलकाता।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
3: वहीं आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है, जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
5: लगभग 1 साल से दवाई ले रहा हूँ, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जनऔषधि से दवाई खरीदे।
3: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40 लाख करोड़ रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं।

0: भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्रीय शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ये आयोजन जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। राष्ट्रपति बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। विदेश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की पहली प्रत्यक्ष तकनीकी बैठक आज ओडिशा के पुरी में शुरू होगी। 3 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य और साझेदार देशों के प्रतिनिधि, नीति निर्माता और आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ भाग लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि विवाहित बेटियों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि परिवार की परिभाषा से विवाहित बेटियों को बाहर रखना स्पष्ट रूप से अनुचित और संवैधानिक रूप से गलत है। न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आराधे की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक आदेश को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की। जम्मू कश्मीर में पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य चुनाव आयोग की 2 दिन की उच्च स्तरीय बैठक आज से शुरू होगी। बैठक की अध्यक्षता राज्य चुनाव आयुक्त शांत मनु करेंगे। सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक WPI को धीरे धीरे समाप्त करने और उसकी जगह एक व्यापक उत्पादक मूल्य सूचकांक PPI प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय देश की मुद्रास्फीति और मूल्य निर्धारण डेटा संरचना को आधुनिक बनाने और इसे वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि WPI के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने की मंजूरी दी गई है। संशोधित थोक मूल्य सूचकांक और नया उत्पादक मूल्य सूचकांक 15 जून को जारी किया जाएगा। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। उनका कार्यकाल इस वर्ष सितंबर से शुरू होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्हें 99 वोट मिले। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देश कल 2027-28 कार्यकाल के लिए सुरक्षा परिषद के 5 नए अस्थायी सदस्यों का भी चुनाव करेंगे। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने डॉ खलीलुर रहमान को अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी है। डॉ जयशंकर ने कहा है कि वे भारत और बांग्लादेश की साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए डॉ रहमान के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। जर्मनी से होकर हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त हो गई है। भारत ने इस फैसले का स्वागत किया है। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस नई व्यवस्था से भारत और जर्मनी के बीच लोगों के आपसी संपर्क बढ़ेंगे और संबंधों को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच इस वर्ष जनवरी में भारत यात्रा के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। और बात खेलों की, तीसरे और अंतिम महिला 2020 क्रिकेट मैच में भारत को इंग्लैंड से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। इंग्लैंड ने श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। इंग्लैंड के टॉन्टन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 181 रन का लक्ष्य दिया। इंग्लैंड ने 18 ओवर 3 गेंदों में 4 विकेट पर 184 रन बनाकर मैच जीत लिया। एलिस कैप्सी प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई, साथ ही प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब भी उन्हीं को मिला। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, गुजरात, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में गरज चमक के साथ आंधी चलने की चेतावनी जारी की है। विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक केरलम और माहे में अत्यधिक वर्षा का अनुमान भी व्यक्त किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद विशाल। सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद के बीच केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई आज के सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। अमर उजाला की सुर्खी है, सीबीएसई चेयरमैन और सचिव हटाए गए, ओएसएम टेंडर की जांच के लिए समिति गठित, 1 महीने में देगी रिपोर्ट। वहीं जनसत्ता ने लिखा है, पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर साइबर हमला, सीबीएसई ने कहा सेवाओं को बाधित करने का प्रयास। नेपाल से सीमा विवाद सुलझाने में तीसरे पक्ष की भूमिका का सवाल ही नहीं, विदेश मंत्रालय का ये बयान दैनिक जागरण में है। विवाद सुलझाने में चीन और ब्रिटेन को शामिल करने की नेपाल की मांग, भारत ने की खारिज। शिक्षा की शक्ति से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें युवा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये आह्वान वीर अर्जुन में है। एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने कहा, जब युवा शिक्षा और प्रौद्योगिकी की शक्ति के बल पर आगे बढ़ेंगे तो एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में टूट की आशंका को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है। पंजाब केसरी ने लिखा है, तृणमूल के 50 विधायकों का बगावती रुख, विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकते हैं प्रस्ताव। इस खबर पर राजस्थान पत्रिका ने संपादकीय में लिखा है, राजनीतिक दलों से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को आज आत्ममंथन की जरूरत है। सत्ता जाते ही उन्हें न विचारधारा की चिंता रहती है और न ही अनुशासन की। बीते 15 वर्ष में पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज रही तृणमूल कांग्रेस में अब जो कुछ हो रहा है वो खुली बगावत की तरह है। दुश्मन की वायु रक्षा को तबाह करेगी रुद्रम 2 मिसाइल। अमर उजाला के अनुसार रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और वायुसेना ने हवा से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार आज दोपहर बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होगी अन्नपूर्णा योजना, पात्र महिलाओं को हर महीने मिलेगी 3,000 रुपए की सहायता। बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी बधाई। और जर्मनी ने हवाई मार्ग से यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए ट्रांजिट वीजा की अनिवार्यता आज से समाप्त की। भारत ने कहा इससे दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क बढ़ेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:15 और 8 सेकंड हुए हैं। आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम यंग बरेली। श्रोताओं नमस्कार, आदाब। प्रोग्राम यंग बरेली में हमारे सभी लिसनर्स का बहुत बहुत वेलकम है। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मौसम भी अब थोड़ा सुधार की ओर है। गर्मी कम पड़ रही है लेकिन फिर भी जून का महीना शुरू हो चुका है, इसमें अपने आप को अवेयर रखने की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि मौसम हमारे ऊपर दुष्प्रभाव डाल दे, तो इसलिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और साथ साथ हमारे प्रोग्रामों को भी इंजॉय करते रहिए। ऑनली ऑन 100.4 FM आकाशवाणी बरेली पर। और श्रोताओं, यंग अचीवर में आज हमने लिया है शुभम पाल को। कहते हैं साथियों के प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती, देर सवेरी सही लेकिन वो सबके सामने आई जाती है। आज हमने ऐसे ही यंग अचीवर को अपने प्रोग्राम यंग बरेली में शामिल किया है, जिन्होंने एशिया सिख गेम ताइक्वांडो में सिल्वर मेडल जीतकर बरेली शहर का मान बढ़ाया है। तो आइए आपसे मुलाकात करवाते हैं शुभम पाल की। प्रोग्राम यंग अचीवर में आप सभी लिसनर्स का बहुत बहुत स्वागत है और आज हमारे साथ एक ऐसे ही यंग अचीवर इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, जिन्होंने एशिया सिख ताइक्वांडो में सिल्वर जीता है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम?
4: शिवम पाल।
3: शिवम पाल जी, प्रोग्राम यंग बरेली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हमारे श्रोताओं को आप ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं?
4: जी मैं सुभाष नगर बरेली का रहने वाला हूँ।
5: और अभी आपकी स्कूलिंग में क्या चल रहा है?
4: मैं 10th क्लास में हूँ।
5: अच्छा 10th क्लास में हैं आप, तो जो अभी आपको एशिया सिख ताई कमांडो में जो सिल्वर आपने जीता है उसके विषय में हमारे श्रोताओं को बताएं कि आपने ये अचीवमेंट किस तरह से प्राप्त किया।
4: जी ये टूर्नामेंट सिख गेम्स ताइक्वांडो सिख गेम्स गेम फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया गया था सालकदा स्टेडियम दिल्ली में 30-31 जनवरी 2025।
5: अच्छा ये अचीव किया था आपने, तो इसके लिए आपने कोई मतलब ट्रेनिंग वगैरह ली थी, और ट्रेनिंग अगर ली थी तो कहाँ पर ली थी आपने?
4: जी इसकी फाइट की ट्रेनिंग मैं अपने घर पे ऊपर अकेडमी बनी हुई है पूरी, मैच वगैरह पड़ी हुई है, मैं वही प्रैक्टिस करता हूँ।
5: अच्छा, जैसे कि हम देखते हैं कि ताई कमांडो में बहुत सारी बेल्टें होती हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को बताएं कि कौन कौन सी बेल्ट मिलती है इस प्रतियोगिता के अंतर्गत इस गेम में।
4: सबसे पहले व्हाइट बेल्ट होती है, उसके बाद येलो, येलो वन, ग्रीन, ग्रीन वन, ब्लू, ब्लू वन, रेड, रेड वन, और लास्ट ब्लैक बेल्ट।
5: क्या बात है, तो इस वक्त आपके पास कौन कौन सी बेल्टें हैं?
4: मेरे पास भी ब्लैक बेल्ट पर ग्रीन
5: है। अच्छा, हमारे श्रोताओं को आप ये बताएं कि कौन कौन सी प्रतियोगिताओं में आप अब तक हिस्सा ले चुके हैं, वहाँ पर आपने पार्टिसिपेट किया है?
4: मैंने एशियन सिख गेम्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है। मेरी सबसे पहली चैंपियनशिप 2018 में थी, साल 2018 में चंद्रवती बैंकेट हॉल में फर्स्ट बरेली कप
5: जी।
4: उसके बाद मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट, 2 स्टेट और 1 नेशनल खेली है।
5: अच्छा क्या बात है, चलिए हम तो
4: और 1 सीबीएसई चैंपियनशिप नॉर्थ सोल।
5: हमारी यही कामना है कि आपका इस गेम में भविष्य उज्जवल हो, तो हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
4: जी मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि कोई भी अगर बच्चा स्पोर्ट कर रहा है तो उसे रोकिए मत, वो आगे आके भारत का ही नाम रोशन करेगा।
5: जी बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस गेम में जिसकी रुचि हो उस गेम में उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, और जो आज आपको सफलता मिली है इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, अपने गुरुजनों को या अपने माता पिता को?
4: इसका श्रेय मैं अपने गुरुजनों को और माता पिता सभी को देना चाहूंगा, सभी ने अपनी कुछ ना कुछ भूमिका निभाई है।
5: जी शिवम पाल जी, आपने अपने शहर के लिए सिल्वर जीतकर बरेली का मान बढ़ाया है, और हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए।

0: ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: जी हां दोस्तों, 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यंग बरेली। श्रोताओं, कल 2 जून को, जी हाँ, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी बरेली में कवि सम्मेलन और मुशायरा हुआ, जिसमें रामकुमार कोहली, मनोज सक्सेना, डॉक्टर अखिलेश कुमार गुप्ता, ऋषि कुमार शर्मा, सत्यवती सिंह सत्या, कमलकांत श्रीवास्तव, अंजलि वर्मा ने अपनी काव्य रचनाओं से श्रोताओं को भावभोर किया। और शायरों में मुख्तार अहमद तिलहरी, शुजात हुसैन, आरफिन जहां, अलीम हुसैन, शाकिर हसन, अफसर अली, अनवर अली ने अपने कलाम से सबको लुत्फानंदोज किया। इस अवसर पर समस्त अधिकारी और कर्मचारीगण और श्रोता बंधु उपस्थित रहे। और कार्यक्रम के अंत में कार्यक्रम प्रमुख श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी ने सभी का आभार प्रकट किया।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: जी हाँ दोस्तों, आज विश्व साइकिल दिवस है। हर साल 3 जून को मनाया जाने वाला विश्व साइकिल दिवस लोगों को फिटनेस, दैनिक यात्रा, प्रदूषण कम करने और सतत जीवन शैली के लिए साइकिल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विश्व साइकिल दिवस 2026 का विषय है हरियाली भरे भविष्य के लिए साइकिल चलाना। यहाँ साथियों, साइकिल चलाने से एक तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहता है, पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता और हम लोग स्वस्थ रहते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, जब आप सुबह के वक्त में पेड़ पौधों के नजदीक जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये आपसे बातें कर रहे हों। साथियों, रोजाना 30 मिनट साइकिल चलाना संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन और लो इम्पैक्ट व्यायाम है। ये हृदय स्वास्थ्य को सुधारने और मानसिक तनाव कम करने में अत्यंत लाभकारी है। नियमित रूप से साइकिल चलाने से अतिरिक्त कैलोरी वर्न होती है, जो वजन घटाने और स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करती है। साथियों, ये पैरों की मांसपेशियों की बहुत अच्छी कसरत है जो उन्हें मजबूत बनाती है। साइकिलिंग करने से हृदय गति बढ़ती है और रक्त संचार बेहतर होता है। ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में काफी मददगार है। साइकिल चलाने से एंड्रोफिन यानी कि खुशी का हार्मोन रिलीज होता है, जो तनाव, चिंता और डिप्रेशन को कम करने में सहायता करता है और साथ ही जोड़ों और फेफड़ों के लिए सुरक्षित। दौड़ने की तुलना में साइकिल चलाने से घुटनों और कूल्हों पर कम दबाव पड़ता है, साथ ही ये फेफड़ों की कार्य क्षमता को भी बढ़ाता है। तो है ना दोस्तों, साइकिल चलाने के कितने फायदे। तो उम्मीद करते हैं कि इस विश्व साइकिल दिवस पर आप एक एक पौधा लगाएंगे और साथ ही अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए साइकिल का सेवन जरूर करेंगे, साइकिल को जरूर चलाएंगे और साथ ही पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे।

0: जब किया इरादा पता के मैं हूँ आदमी सड़क।
1: क्या मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
2: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
3: जी दोस्तों, 100.4 FM पर आकाशवाणी की बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यंग बरेली। अब एक नजर बरेली की खबरों पर। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट इसी माह होगा स्थापित। अग्नि सुरक्षा जागरूकता अभियान आज से। इंडस्ट्रियल और आवासीय योजना के लिए 126 हेक्टेयर भूमि खरीदी। ICCC से जुड़ेंगे पंत, CI गांधी उद्यान पार्क, नहीं होगी चोरी। जून में भी रेलवे के ब्लॉक से बिगड़ेगी ट्रेनों की चाल। मुर्गी फार्म में अमोनिया का स्तर बताएगा रुई, हल्दी और पट्टी का पाउच। अब रुद्रावनम में बनेगी भगवान शिव की ध्यानमग्न प्रतिमा। बुजुर्गों ने सच कहा कि एक पेड़ 100 पुत्र समान। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बरेली कॉलेज के पर्यावरण विज्ञान विभाग में 7 दिवसीय महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। पोलिट्री बीट का खाद के रूप में करेगा उपयोग। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI की ओर से जागरूकता कार्यक्रम में ये आह्वान किया गया है। लगातार पसीना आने से त्वचा की परतों में नमी से होता है संक्रमण। ग्रीष्म अवकाश में OTS कराएंगे परीक्षा। और साथ ही विनीता गुर्जर ने 1500 मीटर दौड़ में जीता स्वर्ण पदक। साथियों, नवाबगंज में 30 करोड़ से बनेगा मॉडल स्कूल। बरेली फाइटर टीम ने किंग्स को 8 रन से हराया। साथियों, 16 जून से होगी अंडर-19 UP स्टेट बैडमिंटन प्रतियोगिता। बरेली को मिले 3 ADO पंचायत, 1 का तबादला। और साथ ही मंदिरों में रही भीड़, गूंजे बजरंग बली के जयकारे।

और दोस्तों इसी गीत के साथ प्रोग्राम यंग बरेली से हमें इजाज़त दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ साथ हमारे प्रोग्रामों को इन्जॉय करते रहिए। नमस्कार।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम यंग बरेली 100.4 FM पर। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है और श्रोताओं आइए अब सुनते हैं लोकगीतों का कार्यक्रम। पहला लोकगीत आइए सुनते हैं योगेश कुमारी के मधुर स्वर में।

योगेश कुमारी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे यह प्यारा सा लोकगीत, और इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं स्वदेश 94 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 8:59 हुए हैं। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम, जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

स्वानंद किरकिरे का लिखा गीत, शांतनु मोइत्रा का संगीत, ईशान और श्रेया घोषाल की आवाजों में आपने सुना पीके फिल्म से। चित्रलोक कार्यक्रम में अभी वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए आपको सुनवाते हैं दबंग 2 फिल्म का गाना। सोनू निगम और तुलसी कुमार की आवाजें हैं, इरफान कामिल के बोल हैं, साजिद वाजिद का संगीत।

0: कहिए।
1: सुनिए एक खुशखबरी।
0: कहिए ना।
1: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
1: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
3: इस संदेश के पहले आप सुन रहे थे जिला गाजियाबाद फिल्म का गाना। मोहित चौहान, तुलसी कुमार और नदीम खान की आवाजों में शब्बीर अहमद के बोल थे और अमजद नदीम का संगीत था। और अब आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दिलवाले का गाना। अरिजीत सिंह, अंतरा मित्रा की आवाजें हैं, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल और प्रीतम का संगीत।

अंतराल के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। आइए सुनते हैं हाईवे फिल्म का गाना सुल्ताना और ज्योति नूरन की आवाजों में। इरशाद कामिल ने लिखा है, AR रहमान ने धुन बनाई है।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं फिल्म तमाशा का गाना, अलका याग्निक और अरिजीत सिंह का गाया हुआ। इरशाद कामिल ने लिखा है और AR रहमान ने धुन बनाई है।

ऐसा ही कुछ लगता है अपनी साइकिल के लिए। वैसे साइकिल जिंदगी का सबसे पहला एडवेंचर बन जाती है अक्सर। सीखते वक्त चोट लगे या गिरकर साइकिल में टूट फूट आए, लेकिन साइकिल चलाना सीखकर एक अलग ही रोमांच होता है। बचपन में साइकिल खिलौनों में सबसे ज्यादा प्यारी होती है, फिर 2-4 साल की उम्र वाली छोटी साइकिल का अलग ही आनंद होता है, और धीरे धीरे साइकिल का उपयोग स्कूल जाने के लिए भी होता है। कई लोग साइकिल से अपने काम पर भी जाते हैं। वक्त के साथ साइकिल की उपयोगिता भी और महत्व भी अब बदल गया है। अब साइकिल एक्सरसाइज के तौर पर काफी प्रयोग होती है। हम साइकिल के बारे में इतनी सारी बातें कर रहे हैं क्योंकि आज ही है साइकिल दिवस। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय साइकिल दिवस घोषित किया गया था, और इसे मनाए जाने का ख्याल सबसे पहले आया था अमेरिका के मॉन्टगोमरी कॉलेज के प्रोफेसर लेसेक सिब्लिस्की को, जिन्होंने अपने साथियों के साथ साइकिल का खूब प्रचार प्रसार किया। इसके बाद इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया। साइकिल सबसे सस्ता वाहन है, इसके लिए एक नहीं अनेक फायदे हैं। पेट्रोल की खपत नहीं होती, पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सुरक्षित है, एक्सरसाइज करने के लिए बेस्ट है, और इम्यूनिटी भी बढ़ती है, और विशेषज्ञों की माने तो इससे बीमारी का खतरा भी कम होता है। साइकिल चलाने से दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है और सक्रियता बढ़ती है सोचने विचारने की, ऐसा भी कहा जाता है। तो भाई, विश्व साइकिल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।

फिल्म खामोशियां का ये गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में। रश्मि सिंह ने ये गीत लिखा था और जीत गांगुली का संगीत था। इस गीत के साथ ही अब आज का चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करती, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम में एक ऐसी कलाकार जिन्होंने अपने अभिनय से सबको खामोश कर दिया।
1: मैं इस विशाल भारतवर्ष के प्रांत बिहार के एक शहर पटना में पैदा हुआ था। सिन्हा परिवार ने पूरी रामायण को जन्म दिया। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, यानी मैं।
2: और मैंने पूनम से शादी की। आज मेरे दो बच्चे हैं जुड़वा, लव और कुश, और मेरी एक बिटिया है। यानी कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अब आप किससे प्रेम करते हैं। मैं कहता हूँ जीवन में

0: एक बड़ी सुंदर सी, अच्छी सी, छोटी सी और थोड़ी मोटी सी लड़की है जिससे मैं प्रेम करता हूँ, और कोई लड़की जीवन में नहीं है। ये बात दूसरी की, जो लड़की मेरे जीवन में है वो मेरी बेटी है और उसका नाम है सोनाक्षी सिन्हा।
1: दोस्तों, आप सोच रहे होंगे जिनकी आवाज आपने सुनी वही है आज के फनकार। अरे नहीं भाई, ये तो उनके पिता की आवाज है जिन्हें अभिनय विरासत में मिली है, जिन्होंने पाई है बहुत कम समय में ढेर सारी कामयाबी और जो है बड़ी दबंग।

0: अब तो आप समझ ही गए होंगे दोस्तों, आज की फनकार है सोनाक्षी सिन्हा।
1: चमक छल्ला छल छबीली, कहते हैं मुझको रस रसीली।
0: दोस्तों शत्रुघ्न सिन्हा जब अपने कामयाबी के परचम लहरा रहे थे, उन दिनों उन्हें ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि उनकी बिटिया सोनाक्षी एक दिन उन्हीं की तरह फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम रोशन करेंगी। अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म इंडस्ट्री में शुरुआत ही बड़े धमाकेदार हुई है। बहुत कम फिल्मों के बावजूद चोटी की अभिनेत्रियों में सशक्त अभिनय करने वाली अदाकारा के रूप में सोनाक्षी का नाम शुमार हो गया।

हीरोइनों की पौध में सोनाक्षी सिन्हा एक ऐसी अदाकारा हैं जिनमें देसी लुक भी है और पश्चिमी मॉडर्न लड़की के किरदार में भी वे खूब जचती हैं। अभिनय की बारीकी तो उनके रग रग में है। अभिनय का कौशल उन्हें अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा से विरासत में मिला है। फिल्म ओ माई गॉड में इस गाने को विशेष तौर पर शामिल किया गया था और इस गाने ने खूब धूम मचाई।

जून 1987 में जन्मी सोनाक्षी सिन्हा के करियर की शुरुआत हुई फिल्म दबंग से, जिसमें थे बॉलीवुड के सुपर हीरो सलमान खान, और ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई।

सोनाक्षी सिन्हा ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की। शुरुआत में उन्होंने कई फैशन शो में हिस्सा लिया। सोनाक्षी बड़ी उम्दा फैशन डिजाइनर भी रही हैं। उन्होंने 2005 की फिल्म दिल लेके देखो के लिए कॉस्ट्यूम भी डिजाइन किया। लेकिन दोस्तों, सोनाक्षी का सपना था

आज के फनकार कार्यक्रम में हम बातें कर रहे हैं अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा की। आइए उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों के गाने सुन लिए जाएं। ये फिल्म है राउडी राठौड़, जिसमें उन्होंने निभाया पारो का किरदार।

सोनाक्षी सिन्हा की कुछ महत्वपूर्ण फिल्में और भी हैं, जैसे कि वेलकम टू न्यूयॉर्क, हैप्पी फिर भाग जाएगी, मिशन मंगल, दबंग 3।

0: दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का था। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:19 हुए हैं और आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दीवाने में एक विशेष कार्यक्रम। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर शुभकामना संदेश दे रही हैं माधुरी कश्यप।
1: मेरा नाम माधुरी कश्यप है और मैं बरेली की रहने वाली हूँ। आकाशवाणी के 90 इयर्स पूरे हो रहे हैं, इस बात की बहुत बहुत बहुत सारी बधाइयाँ पूरी टीम के लिए। और अगर इसकी यादों की कहा जाए या इससे जुड़े रहने की कहा जाए तो मैंने तो बचपन से सुना है, तो ये एक्चुअली बचपन से जो काम आप करो ना वो आपके हैबिट में शामिल हो जाता है। तो मैंने आकाशवाणी को बचपन से सुना। हमें याद है हमारे पापा के पास इतना बड़ा और इतना चौड़ा सा एक रेडियो हुआ करता था, और जब हम थाने में रहते थे क्योंकि मेरे पापा पुलिस से हैं, तो फिर वो सुबह स्टार्ट हो जाता था और वो दिन भर चलता था जब तक कि चालू रहता था। उसके बाद जब प्रोग्राम बंद हो जाते तो फिर बंद हो जाता था, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता था। तो हमें याद है कि उस वक्त मैं, क्योंकि मुझे कुकिंग का बचपन से शौक है, तो कुकिंग की अगर कोई चीजें जानकारी आती तो मैं कॉपी में नोट डाउन करती थी। इवन भजन गीत छंद ये सब मैं कॉपी में लिख लेती थी, ताकि क्योंकि उस समय यूट्यूब वगैरह तो हुआ नहीं करता था, तो यही था एक मनोरंजन का साधन। तो हम ये कॉपी में नोट कर लेते थे, फिर जब कीर्तन वगैरह कुछ होता था तो हम गाते थे। मेरे पास आज भी वो नोट डाउन है। तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट है उससे, और बहुत सारी महिलाओं से रिलेटेड प्रोग्राम की जानकारियां होती हैं वो भी हमें यहीं से मिलती थी। और आज के टाइम में तो यूथ के लिए काफी अच्छे काम कर रहे हैं, नई नई जानकारियां देना या बच्चों को किन चीजों से दूर रखा जाए, कौन सी चीजें दी जाए, इस तरह की जानकारियां देना। आज भी मेरे पापा को तो मतलब अभी भी हमारे घर में एक इतना बड़ा सा एक, आजकल तो नए नए तरीके के आने लगे हैं, तो एक FM है, सुबह से स्टार्ट हो जाता है और जब वो सोने जाते हैं, जब वो सोने लगते हैं तब, जब 11 बजे के आसपास जब बंद होता है प्रोग्राम तभी उनका वो ऑफ होता है। तो हमको रोज पता चलता रहता है कि आज किसकी ड्यूटी है, क्योंकि आवाज ही पहचान में आने लगी है। तो इसलिए लगातार हम सुनते हैं और हमको बहुत खुशी है कि 90 इयर्स पूरे हो रहे हैं, क्योंकि पहले इतना लोकल FM नहीं हुआ करते थे, तो सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ही सुना जाया करता था, और जिसमें महिलाओं के प्रोग्राम आते थे जैसे ममता सखी, तो उनको बचपन से सुना है तो उनकी आवाजें, उनका बोलने का तरीका भी एकदम जहन में अच्छे से ताजा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसी तरक्की करता है आकाशवाणी और बहुत सारी
2: आकाशवाणी के दीवानों के लिए एक हम छोटा सा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ, आप अगर आकाशवाणी के दीवाने हैं, आप सब में दीवानगी है आकाशवाणी के प्रति, तो आप मोबाइल उठाइए, अपना वीडियो बनाइए और वीडियो में बताइए कि आपने पहली बार आकाशवाणी को कब सुना, और अपनी एक यात्रा के बारे में बताइए कि कब कब सुनते रहे, किन हालातों में सुने, रेडियो का कौन सा सेट आपने इस्तेमाल किया, और भी बहुत कुछ आप बता सकते हैं। लेकिन हाँ, ड्यूरेशन आपके वीडियो की 2 मिनट होनी चाहिए, और जो लोग वीडियो नहीं बना

0: आ पाए वो ऑडियो भी भेज सकते हैं, क्योंकि हमारा तो माध्यम ही है रेडियो। तो आपकी जो वीडियोस हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ेंगे, जो भी चुनिंदा अच्छे अच्छे वीडियो होंगे। तो और कहाँ भेजना है ये भी नोट कर लीजिए, akashvanibareilly@gmail.com, आकाशवाणी में AKSHVANI बरेली BARREILLY, akashvanibareilly@gmail.com। इस ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है, मात्र 2 मिनट का वीडियो शूट करना है, सेल्फी ले सकते हैं या फिर किसी से रिकॉर्ड करवा लीजिए सामने से। तो जल्दी से जल्दी आप अपने वीडियो भेजिए, हमें आपके वीडियोस का इंतजार है, क्योंकि आकाशवाणी की दीवानगी चारों तरफ फैल रही है और उसके दीवाने लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नमस्कार।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
2: श्रोताओं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम में आपने सुना आकाशवाणी के दीवाने, और आज शुभकामना संदेश दे रही थी माधुरी कश्यप।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं स्वदेश शिमला प्रचार FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:05 हुए हैं और आइए अब सुनते हैं सोशल मीडिया पर आधारित आपके पसंद के गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। कुछ रिश्ते जहां में खास होते हैं, हवा के साथ जिनके एहसास होते हैं, ये दिल की कशिश नहीं तो और क्या है कि आप लोग इतने दूर दूर होकर भी हमारे दिल के पास होते हैं। श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम आपकी पसंद में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। आकाशवाणी के फेसबुक पेज पर हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी पसंद का गीत सुनने के लिए हमें कमेंट किया है। आइए शुरुआत करते हैं इस पहले कमेंट के साथ। गांव नाईवाला, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान से बेद मिड्डा, अलका मिड्डा और इनके परिवार के सभी लोग, आपने सुनना चाहा है दाग फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और मीनू पुरुषोत्तम की आवाज में। गीत है साहिर लुधियानवी का और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। ढेरों कमेंट हमारे पास आए हुए हैं, शामिल करते हैं अपने इस प्रोग्राम आपकी पसंद पे। मोहल्ला हलवाइयान, शेरकोट, जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर, आप हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और इनके परिवार के सभी लोग। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया और इनके परिवार के सभी लोग। जिला मुरादाबाद ग्राम महेशपुर खेम से हमारे श्रोता हैं तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी और सिद्दीकी परिवार के सभी लोग। विनीश कुमार, रागनी और मुस्कान निकट बैंक सेंटर चैरिटी बरेली से ये कमेंट हमें किया है। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज पर गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, घनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का और इनके सभी परिवारजन। हमारे ये श्रोता हैं गांव लोडड्डा, जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनीश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, जितिन, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी, करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। जिला मुरादाबाद ग्राम दूलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहनी, ऋतिक, बलवीर सिंह और परिवार के सभी लोग। आप हैं रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान, हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से आपने ये कमेंट किया है। आप हैं आदर्श नगर मलोड पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा, मैंडी शर्मा और शर्मा परिवार के सभी लोग। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना और इनके परिवार के सभी लोग। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजबी निसार अंसारी, बेटी नुजरत फातिमा, अबरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, इस्लामुद्दीन उर्फ बन्ने भाई और पप्पू भाई अंसारी। आप हैं जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नासमा बेगम सिद्दीकी, रियाज

वक्त मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन, माहिरा नूर और परिवार के सभी लोग हरिनगर कोहका भिलाई उत्तम से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार जंगेल, अमित अजित कुमार जंगेल, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल, दमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंगेल, हमारे और भी बहुत सारे श्रोता, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब और आप हैं, हमारे श्रोता भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार, बहड़ी से अंजुमबाई खालिदा बेगम और इनके परिवार के सभी लोग, ग्राम कोटा मक्खन बरेली से अफरोज अंसारी, फारूक अंसारी, पुराना तालाव डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, आसमानाज अंसारी, शबनम बानो, जेल रोड बक्सर से राज एस डी अंसारी, फातिमा नाज, चमन पार्क दिल्ली से सोनम और अदीबा, आप हैं हमारे श्रोता दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और साथ में हैं डब्बू और बब्बू और इनके परिवार के सभी लोग, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु, अरलब आनंद, सत्यम आनंद, बोहड़ागांछी, पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत और परिवार के सभी लोग, आप हैं हमारे श्रोता पद्मा टाकिस ने बनगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह, पूजा रेडियो श्रोता संघ पलेरा हाल टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव यादव, संजीव यादव और यादव परिवार के सभी लोग, सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर एक जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानबल कश्यप, संजय अनमोल, अंश, करिश्मा और मुस्कान कश्यप, ये हमारे श्रोता हैं। पहांदा पलारी छत्तीसगढ़ से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, लखनलाल देवांगन, सावित्रीबाई देवांगन, देवांगन परिवार के सभी लोग, गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। तो आइए सुनते हैं फिल्म दाग का ये गीत लता मंगेशकर व साथियों की आवाज़ में।

0: जी हाँ श्रोताओ, 100.4 FM पर आकाशवाणी की बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद। श्रोताओं, आज रात्रि 8 बजे से रात्रि 8:45 तक आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कवि सम्मेलन और मुशायरे का आप आनंद ले सकेंगे।
1: 90 बरसों का ये सफर शाद रहे,
2: 90 बरसों का ये सफर शाद रहे,
1: ये मरकज़े फन इल्म की बुनियाद रहे। 90 बरसों का ये सफर शाद रहे, ये मरकज़े फन इल्म की बुनियाद रहे। अल्लाह करे बढ़ता रहे इसका वकार, अल्लाह करे बढ़ता रहे इसका वकार, मुख्तार दुआ गो है ये आबाद रहे।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: सागर लखनऊ मध्य प्रदेश से लाडला जी चौबे, लाडली जी चौबे, रिमझिम चौबे, सक्षम चौबे और इनके परिवार के सभी लोग, आपने सुनना चाहा है फिल्म ब्रह्मचारी का ये गीत। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने, और भी बहुत सारे हमारे श्रोता जो इस गीत को सुनना चाहते हैं। हमारे ये श्रोता हैं बिजना मुरादाबाद से राजवीर सिंह यादव, कुणाल यादव, हर्ष यादव, अनिश यादव, अंशिका यादव, यूनुस खान, सोफिया खान और परिवार के सभी लोग। आप हैं राजधानी रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार और सभी परिवार के लोग। वारसी क्लब सिंधौली, मीरगंज, बरेली से जी

शानवारसी इमरान शेख, रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान और इनके परिवार के सभी लोग आप हैं। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और इनके परिवार के सभी लोग आप हैं। हमारे श्रोता नागपुर महाराष्ट्र से कमल सुहाने, अफजाल मलिक, संदीप मकड़, रामगढ़ कैंट झारखंड से निपी सुहाने और परिवारीजन। ये कमेंट हमारे पास आया है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनीजा, पूनम गगनीजा, दिशानी और निमित आहूजा का। आप हैं दादा बाबू रोड गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफरा नवाज, बीबी चाहत सादिया और परिवार के सभी लोग। आप हैं राजकमल रेडियो श्रोता आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से सैयद यूनुस, सैयद नुमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाव तांदले, दूतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते और परिवार के लोग। राजधानी रायपुर से ही ये कमेंट हमारे पास आया है। आप हैं वंदना कुमार, विट्टू कुमार और साथी धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशाद सलमान, बेबी आलिया, अयान बाबू और परिवार के सभी लोग। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इसाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ, नीलूफर फातिमा और इनके परिवार के लोग। आप हैं ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी जिला रामपुर से अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश। रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद बंडलकर, बीड़ा, विविधा और परिवार के लोग। आप हैं हमारे श्रोता सेक्टर नंबर 2 आवास विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौड़, सुयेश गौड़, आशीष गौड़, तन्मय और अपूर्वा और इनके परिवार के सभी लोग। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरार, नरगिस खातून और परिवार के लोग। इंदिरानगर आप हैं गांव हांडी खेड़ा से इंदिरा शर्मा, राधेश्याम शर्मा और परिवार के लोग। नैला छत्तीसगढ़ से प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु बबली और प्रियांशी साहू। कस्बा उगहती से धीरज कुमार गुप्ता, पंकज बजाज, देवेंद्र गुप्ता, डी के हिटलर और परिवारीजन। इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं कला नौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, अमनदीप कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज और परिवार के सभी सदस्य। और ये कमेंट हमारे पास आया है। भेजने वाले हमारे श्रोता हैं जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना, उमाराज, दिव्य भारती, बेताब रेडियो लिसनर क्लब बिहार से वसीम अकरम, बेबी जोई और गुड़िया खातून, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत, कौशिकी, दीपाली, युवान और आरके राजा। आप हैं पदमपुर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा और परिवार के सभी लोग। ऊपरकोट मोहल्ला चौकुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत, परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन, सुहान, अरजान, अवान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं ब्रह्मचारी का ये गीत मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ और इनके परिवार के सभी लोग। आपने सुना चाहे फिल्म प्रेम रोग का ये गीत लता मंगेशकर, सुरेश वाडेकर की आवाज में। गीत है आमिर कजलवाश का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा रामटेके, श्रव्या रामटेके और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं हमारे श्रोता अद्भुत कुमार दीक्षित मणिनाथ बरेली सिटी से, करुणा मीना अश्वनी और विपुल कांबड़े जवाहर नगर दुर्ग से, और साथ में हैं आरसी कांबड़े और इनके परिवार के सभी लोग। ग्राम धुर्रा बांदा भाटापारा छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार साहू, युवराज साहू और परिवार के सभी लोग। शाहजी नगर देगलोर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं श्रीरामपुर भोकर महाराष्ट्र से हरिभाऊ बिडवे, अनिकेत सोनवड़े, शुभांगी श्रावण और अनिता बिडवे। ये हमारे श्रोता हैं। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक और परिवार के सभी सदस्य। आप हैं हमारे श्रोता। गांव टोरवाल जिला नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमार थांदी, प्रियंका थांदी, प्रशांत प्रियतम, बामिका वाड़ी और इनके परिवार के सभी लोग। पारसमणि रेडियो श्रोता क्लब से ये हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगरी से बाबूराम जयपाल, खलीफों की बावड़ी से खुदाबख्श खलीफा और इनके परिवार के सभी लोग। उदयपुर से बाबू भाई, भारती देवी, रमेश नाचनी, विनीत और परिवार के लोग। ये कमेंट हमारे पास आया है। हमारे श्रोता हैं विष्णु मस्कीन, रितिका वाणी, आरब चंद्रकला, काशीनाथ गणेश, संगीता आरोही, प्रियांशी, दयानंद भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से। आप हैं हमारे श्रोता। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और परिवार के लोग। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा और इनके परिवार के सभी लोग। महेश गेट नावा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरब, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु और इनके परिवार के लोग। बनबघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा, आशा सारवा, नीरज, नीलेश, अंजलि और रोशनी सारवा। अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सभिया, अनस और रेहान। श्रीगंगानगर से सतीश शर्मा, रोशनी, भावना, गरिमा, हिमाचल।

वंशी शर्मा हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से आप हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा तारा देवी सोनाली सोनम आशीष और इनके परिवार के सभी लोग शनि बाजार कस्बा उगैती से प्रभाकर गुप्ता अवधेश गुप्ता सचिन गुप्ता देव गुप्ता प्रियाल गुप्ता कायरव गुप्ता और गुप्ता परिवार के सभी लोग कटरचंद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य सुंदर देवी मौर्य प्रकाश मौर्य रिंकी मौर्य कपिल मौर्य वेदराम मौर्य कैलाश मौर्य सुनील मौर्य खुशबू मौर्य आरोही मौर्य स्वाति मौर्य ग्राम दलपतपुर दलपुरा तहसील फरीदपुर से पातिराम दिवाकर सूरजमुखी दिवाकर खुशबू दिवाकर सुशांत दिवाकर मानसी दिवाकर प्रियांशी अक्षर और दिवाकर परिवार के सभी लोग आप हैं हमारे श्रोता ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोडाने अर्चना ताई गोडाने हीरामल शेंडेजी प्रणय प्रसिद्धि और इनके परिवार के सभी लोग बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान संक्रांति चौहान रितेश कुमार राजेश्वरी उत्कृष्ट चौहान अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर मध्य प्रदेश से चंद्रेश गौहर श्रीमती वंदना गौहर मयंक गौहर तन्वी जयपाल यादव और इनके परिवार के सभी लोग सालपुरा जिला बारा राजस्थान से सतीश श्रीवास्तव श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव हिमांशी हर्षिता अभिषेक श्रीवास्तव अब हैं मुकेश राजपूत ग्राम कुमारपुर से गांव हीरावाली फजलिका पंजाब से सुभाष गोदारा विमला गोदारा इंद्रू पार्वती हिमांशु गोदारा और परिवार के सभी लोग ग्राम चांदुर बिस्वा जिला बुलठाणा महाराष्ट्र से किशोर बानखेड़े उषा बानखेड़े विशाल और ग्राम राजूर तहसील मोताला महाराष्ट्र से राज गवई राजवीर गवई और इनके परिवार के सभी लोग आप हैं हमारे श्रोता आरवी सिंह अर्जित यादव प्रशांत यादव उदित यादव अभय यादव थाने के सामने अल्लाहगंज जनपद शाहजहांपुर से बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव सार्थक नामदेव समर्थ नामदेव शौर्य नामदेव और इनके परिवार के सभी लोग तो आइए सुनते हैं फिल्म प्रेम रोग का ये गीत सुरेश वाडिकर और लता मंगेशकर की आवाज में

0: श्रोताओं, आज रात्रि 8 बजे आप आनंद लेंगे मुशायरे का, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में।
1: 90 बरसों का ये सफर शाद रहे,
2: 90
1: बरसों का ये सफर शाद रहे, ये मरकज़े फन इल्म की बुनियाद रहे। 90 बरसों का ये सफर शाद रहे, ये मरकज़े फन इल्म की बुनियाद रहे। अल्लाह करे बढ़ता रहे इसका वकार, अल्लाह करे बढ़ता रहे इसका वकार, मुख्तार दुआ गो है ये आबाद रहे।
3: मेहरबान कदरदान, बच्चे बूढ़े और जवान, सौ बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
4: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
0: जी हाँ दोस्तों, 100.4 FM पर आकाशवाणी की बरेली केंद्र से आप आनंद ले रहे हैं प्रोग्राम आपकी पसंद का। बनकारा मंदिर, BDA कॉलोनी, करघना बरेली से बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, राजेश कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्य भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमपति भारती, खनक, नकुल, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश, प्रताप सिंह, राजकुमार और इनके परिवार के सभी लोग। आपने सुना चाहे फिल्म राजकुमार का ये गीत सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा का ये कमेंट हमारे पास आया है। आप हैं मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक और इनके परिवार के सभी लोग। आप हैं हमारे श्रोता, ये कमेंट हमें भेजा है शगुन बारासा, रोशनी बारासा, विकास, विशाल, विनोद, गांव खोकरावाली से। आप हैं हमारे श्रोता जयश्री महत्रे, नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, बीड शहर महाराष्ट्र से, और साथ में अंजलि करवा, बाला साहब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय, पीवी कुलथे और सभी परिवारीजन और मित्रगण। जमनिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल और परिवार के लोग। आप हैं मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुन निशा, शविस्ता पलक, लुबना और यश मंसूरी। आप हैं हमारे श्रोता एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन निशा, शकील अहमद, शाहनवाज खान और दानिश, संजय नगर, ऐशबाग, लखनऊ से। ईश्वर लाल मेहर, सुमित्रा मेहर, रेहांश मेहर, सृष्टि मेहर और पूरा मेहर परिवार, गांव भटूनी, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से आपने ये कमेंट हमें किया है। तेजपाल सिंह प्रजापति, अनुराधा शमा, शिवी मधुवाला प्रजापति, चिट्ठा मंदिर रोड, यमुनानगर से। आप हैं मारारा दरवाजा से नवेजन अब्बासी, अनम, यशव शाहनवाज, नवैद हसन, सोहेल हसन और रसीद बारसी। पटेल नगर मलोट से रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया और गुडू। आप हैं बठिंडा रोड मंडी डवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग।

तानिया रंग और परिवार के लोग, जिला किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, आशा देवी और परिवार के सभी लोग। ये कमेंट हमारे पास आया है अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल, दीपिका गाव्या, सुच्चा सिंह पाठक और साथ में जयपाल विनोदपुरी। आप हमारे श्रोता गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा, नितिन विश्वकर्मा, सावन कुमार, सचिन और शक्ति, हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, राहुल और ऋषि, रेडियो फरुखाबाद मोहल्ला साहबगंज चौरा यूपी से सुरेश चौरसिया, श्रीमती सरोज चौरसिया, सुबोध सलोनी, संजू लल्ला चौरसिया, साथ में हैं योगेंद्र नायक, नवाबगंज कानपुर से श्रीमती सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया, पीहू और दिया, बिचपुरी गांव से अर्जुन मौर्य, करण मौर्य, प्रेमपाल मौर्य, गोधन मौर्य, खुशबू मौर्य, साक्षी मौर्य और इनके परिवार के सभी लोग, बड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा और इनके परिवार के सभी लोग, कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गारवी, बीबी बाय हिमाश। आप हैं लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू और इनके परिवार के सभी लोग। गांव खाम गांव तहसील नेवासा अहिल्यानगर महाराष्ट्र से अनंत रासने, अरुण रासने, बालाजी रासने, आकाश, पवन, भावना, श्रद्धा व मेरा। आप हैं हमारे श्रोता सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानन एले, नवदीप एले, विश्वदीप एले, नीलेश एले और परिवार के सभी लोग। ग्राम पंचायत बठेना पाठन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से प्रहलाद बालकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, मुरली और इनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं राजकुमार फिल्म का ये गीत।

मैं राहुल शर्मा और इनके परिवार के सभी लोग, आपने सुनना चाहा है ये प्यारा सा गीत। फिल्म का नाम है मौसम, आवाज़ मदन मोहन की, गीत गुलजार का, संगीत मदन मोहन का। और भी हमारे बहुत सारे श्रोता हैं, श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से अजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनीता, विनायक सिंह, मोहनी, मोहित सिंह एवं प्यारी प्यारी कोको और इनके परिवार के सभी लोग, आप हैं हमारे श्रोता। ग्राम कोलासर, तालुका नांदुरा, महाराष्ट्र से प्रमोद बगाडे, वर्षा प्रतीक, संकेत बगाडे और परिवार के लोग। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, जिवियम जैन और परिवार के लोग। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से आप हैं सैयद मसरू, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम और परिवार के लोग। मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौर ने ये कमेंट हमें किया है। पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचित खुराना, केशु रिधान खुराना और इनके परिवार के सभी लोग। मोहाली पंजाब से बबल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा और परिवार के लोग। आप हैं गांव कवनपुर कोलापुर महाराष्ट्र से रेवड़, अनीता और राहुल। मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वानिया, इंदिरा कॉटेज, तल्लीताल, नैनीताल से कमेंट किया है। उगति बदायूं उत्तर प्रदेश से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता, निर्भय गुप्ता और परिवार के लोग। आप हैं शमजुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान, गंज डुंडवारा से। विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युधव। आप हैं कलाना राजस्थान से। उड़ीसा से आप हैं सुरेश अग्रवाल और इनके सभी प्रियजन। पीपरपारा, पालचुबा, मुंगेली, छत्तीसगढ़ से उत्तम दिवाकर, परमेश्वरी, भानुप्रिया, योगिता दिवाकर, नितिन दिवाकर, वंशिका दिवाकर। गांव जलालपुरा, जिला सहारनपुर उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम आर्यन, लव लविश, मुनीश देवी प्रजापति और परिवार के लोग। शाहरुख खान, हाशिम खान, फैजल खान, तिगड़ी कस्बा शीशगढ़ से साथ में है अरहम बाबू, फैलीन खान और किश्वा नूर। आप हैं ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा, ए के राजपूत, अनिल कुमार राजपूत, कैलाश रामेश्वर, सत्यपाल वर्मा, भगवान दास राजपूत, रवि कुमार वर्मा, श्रीपाल यादव, मनोज कुमार सक्सेना, राम गुलाम राजपूत, पप्पू भैया और प्यारी सी छोटी सी गुड़िया चंचल कुमारी। जिला पीलीभीत डकिया केसरपुर से ये कमेंट हमें किया है। ग्राम पारवाला, जिला बदायूं से सुपाली सिंह राजपूत, महिपाल सिंह राजपूत, शिवम कुमार राजपूत, रिंकू वर्मा, निर्मल वर्मा और कुमारी रानी वर्मा। दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनीज सकीना और हसीना दिलशाद। मुबारकपुर, ऊंची तकिया, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से ये कमेंट हमारे पास आया है। सदर बाजार कोरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा और परिवार के लोग। तो आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म मौसम से मदन मोहन की आवाज़ में।

गढ़ी कुटाहा जिला पंचकुला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा अंसारी, उमर अंसारी, समीना अंसारी और इनके परिवार के सभी लोग। आपने सुना चाहे क्रांति फिल्म का ये गीत नितिन मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में। इसी गीत को सुनने के लिए ये कमेंट हमें किया है ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक कुमार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद शाकिब पवार, अलमास बानो पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। आप हैं नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नहापकर, निर्मला विशाल सोपान ताइडे, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष मुहर्रेकर और इनके परिवार के सभी लोग। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना सोलकर, पिंकी सोलकर, आर्यन कृष्णा और पीहू सोलकर। आप हैं हमारे श्रोता कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय और परिवार के सभी लोग। ये कमेंट हमें किया है गांव देवगांव तालुका पूर्ण महाराष्ट्र से सदाशिव थोरात, कविता, श्रेया थोरात, बंटी थोरात और परिवार के सभी लोग। एटा रोड गंजुंडवारा से मुशीर अहमद कुरैशी, हसीन अहमद कुरैशी और इनके परिवार के लोग। आप हैं हमारे श्रोता। ये कमेंट हमें किया है संगीता सलोजा जनकपुरी नई दिल्ली से। आप हैं हमारे श्रोता भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर चावला, श्रीमती बानी चावला और लोकेश जोशी, पायल जोशी, बीबी वैदेही जोशी, हंसिका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी, अनूपपुर मध्य प्रदेश से श्रीमती जयवंती कैवेट जी और परिवार के लोग। दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल, कुणाल मेहरा और मेहरा परिवार के सभी लोग। गुरमीत सिंह मीता साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से आपने ये कमेंट किया है। आप हैं ग्राम मजुआ गंगापुर भोजीपुरा बरेली से हसमुख जी, हसान समज, इनाया और शाहनूर, फलक नूर, ताज और मोहम्मद अवानूर गुप्ता जी, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना कांट रोड लदावली से आपने ये कमेंट किया है। नई बस्ती गंजुंडवारा से मोहम्मद यासीन, हाशमी, नाजमा बेगम, तौसीफ, तैमूर, कलीम अंसारी और परिवार के लोग। आप हैं हमारे श्रोता गांधीनगर गुजरात से सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल निशा और परिवार के लोग। गांव जाखोज से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, योगेश कुमार, दीपक कुमारी, पूजा खटक और परिवार के सभी लोग। ये कमेंट हमारे पास आया गंजुंडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान अनाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और इनके परिवार के सभी लोग। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया और परिवार के लोग। श्रीगंगानगर राजस्थान से सर्वजीत सिंह जोशन, सर्वजीत कौर जोशन, गुरमन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से आदर्शपाल सिंह जोशन और बेंकुबूर कनाडा से रोबन सिंह जोशन। आप हैं कस्बा मीरगंज के पास ग्राम हल्दी खुर्द से शकील अहमद, मिसबाह उल हक और साथ में हैं शजर समसुन निशा और इनके परिवार के लोग। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हदीब मीका, बलविंदर बिरक, जितेक बिरक और मीका बिरक।

जिला बुलठाणा महाराष्ट्र से आप हैं राजू माठे, गजानन संजय माठे, ज्ञानेश्वर माठे, शेनगांव से संतोष एसकाले, गजानन सलोलकर, सुरेश नागपुर मानेवाड़ा रोड से देवेंद्र जी भटकर और इनके परिवार के सभी लोग, आप हैं हितेंद्र दास आसाम से, आपने ये कमेंट हमें किया है। हमारे श्रोता हैं करनाल से विनोद लखनपाल और इनके परिवार के लोग, ये कमेंट हमारे पास आया है। छत्रपति सामाजी नगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से सुषमा बोरगांवकर, प्रकाश प्रांजलि सोहम, सदानंद स्वीट, अंशुमन बेबी ओबी और इनके परिवार के लोग, आप हैं ओखला संगमपुर बिहार दिल्ली से रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार से, साथ में चांदनी कुमारी, नंदनी कुमारी, मुन्नी कुमारी और परिवार के सभी लोग, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख और इनके परिवार के सभी लोग, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदा जिंदा, जसबी जस्सी, सीता और गीता, आप हैं हमारे श्रोता। संबलपुर काकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, यशस्वी यादव और परिवार के लोग, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से जयराम खोरवाल, सचिन अमन, दीपांशु और इनके परिवार के सभी लोग, आप हैं आकाश करवा, आकांक्षा करवा महाराष्ट्र से और ये कमेंट हमारे पास आया है। रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानू, एरिजा नयाब और लड्डू का, भगवान सिंह यादव, अर्पित यादव, देव सिंह यादव, मझरा दौलतपुर औला जिला बरेली से, उत्तम नगर दिल्ली से कमला रानी, बोधराज खोरवाल, भानु खोरवाल, गीतिका खोरवाल और परिवार के सभी लोग, ये कमेंट हमें भेजा है। धरदेई सरगांव छत्तीसगढ़ से चंदूलाल पटवा, सुनीता पटवा, हर्ष कुमार, विनीता, विनीत कुमार पटवा, कुमारी सृष्टि पटवा और आप हैं आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, शारिक अली खान, सादिक अली खान, कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत यूपी से और ये कमेंट हमारे पास आया है। हमारे श्रोता हैं चनोरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता राम और श्याम, रवि आर्यन, रंजीत कुशवाहा, रामानंद कुशवाहा और साथी, तो आइए सुनते हैं क्रांति फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम आपकी पसंद का सफर बस यहीं तक। आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा? जी हाँ श्रोताओं, अपनी प्रतिक्रियाएं आप हम तक जरूर भेजिएगा। आप चाहें तो खत के माध्यम से भी हमें लिख करके भेज सकते हैं, या फिर आप मेल करके भी अपनी प्रतिक्रिया भेज सकते हैं। हमारा पता है, कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र बरेली, और हमारा पिन कोड है 2403000।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 104 FM पर। श्रोताओं आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सबरंग। सबरंग में ये पहला गीत फाल्गुनी पाठक के स्वर में।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: श्रोताओ 100.4 एफएम पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरंग। आइए सुनते हैं ये कव्वाली कैसर आजाद बदायूं ने वास साथियों की आवाज में।

0: बरेली केंद्र है 104.4 FM पर।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 104.4 FM पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 11:30 हुए हैं और आइए अब सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: चंदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार, जिसे हमें भेजा है अकोला महाराष्ट्र राधेनगर से राजेश पी कारिया जी ने। लिखते हैं,
2: गलत लोग आपकी अच्छाई से भी नफरत करते हैं और सही लोग आप में बुराई जानकर भी आपसे प्यार करते हैं और यही मानव संबंध की विडंबना है।
1: बहुत सुंदर संदेश राजेश पी कारिया जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू का।
2: महाराष्ट्र से प्रशांत रमेश पाटिल।
1: और धमधा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी का।
2: कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका और मन्नत।
1: और साथ ही साथ हमें संदेश मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का।
2: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रसिद्ध शीत मरुस्थलों की।
2: इस क्रम में कल हमने चर्चा की थी अंटार्कटिक के शीत मरुस्थल की और जाना था इससे जुड़ी रोचक बातों को। आज हम चर्चा करेंगे एक और अनोखे शीत मरुस्थल की और वो है गोभी का मरुस्थल। तो अजीत जी, चर्चा को विस्तार दीजिए।
1: जी विमलेश जी, आइए चर्चा को विस्तार देते हैं। तो श्रोताओं, आपको हम बताना चाहते हैं कि अंटार्कटिक का शीत मरुस्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से पृथ्वी का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है
2: जी।
1: लेकिन यदि एशिया महादेश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है गोभी। इसका क्षेत्रफल है 13 लाख वर्ग किलोमीटर। विमलेश जी, अब आपकी बारी।
2: जी श्रोताओं, ये मरुस्थल मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। स्थानीय भाषा में गोभी को गोब कहते हैं, जिसका अर्थ है निर्जल स्थान। एक बात और आपको बता दें कि ये रेत का नहीं लेकिन पत्थरों का मरुस्थल है, क्योंकि इसका अधिकांश भाग चट्टानी और पथरीला है, केवल 5% भाग ही रेतीला है।
1: तो श्रोताओं, अब बात करते हैं इस मरुस्थल के तापमान की। जहाँ तक तापमान का प्रश्न है, यहाँ तापमान बहुत कम होता है
2: जी।
1: सर्दियों में ये -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि गर्मी के मौसम में यहाँ का तापमान 45 से 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुँच जाता है।
2: यानी एक ही मरुस्थल में कड़कती ठंड भी और झुलसाने वाली गर्मी भी
1: जी।
2: लेकिन इसे शीत मरुस्थल इसलिए कहा जाता है कि यहाँ अधिकांश समय सर्दियों का ही होता है। अजीत जी, एक बड़ी विशेष घटना हुई है जिसके कारण गोभी का मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हुआ है। क्या थी वो घटना?
1: विमलेश जी, वो घटना थी जब वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में डायनासोर के अंडे और जीवाश्म मिले
2: जी।
1: यहाँ और भी कई दुर्लभ प्राणियों के जीवाश्म मिले हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और संचार माध्यमों ने इसे प्राचीन जीव जगत के खजाने की संज्ञा दी है।
2: अजीत जी, अब श्रोताओं को जरा यहाँ रहने वाले लोगों की जानकारी दे दें।
1: जी हाँ जरूर
2: श्रोताओ, गोभी मरुस्थल में रहने वाले अधिकांश लोग आज भी घुमंतू जीवन यानी नोमेडिक लाइफ जीते हैं। मंगोल परिवारों का पारंपरिक घर गोलाकार का होता है, जिन्हें यर्ट कहते हैं। इन घरों की सबसे दिलचस्प बात यह है कि आसानी से खोले और दूसरी जगहों पर ले जाए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग यहाँ मौसम को देखते हुए जगह बदलते हैं। वैसे गोभी मरुस्थल के बाहरी इलाकों में आधुनिक शहर भी हैं।
1: तो श्रोताओं, आपको ये भी बता दें कि आज के आधुनिक वाहन यहाँ बहुत कम मिलते हैं। यहाँ के ऊंट 2 कुबड़ वाले होते हैं
2: जी,
1: जो अत्यधिक ठंड और गर्मी दोनों सह सकते हैं। एक बात और आपको बता दें कि ठंड के समय ये ऊंट बर्फ खाकर अपनी पानी की जरूरत को पूरा करते हैं
2: जी।
1: घुड़सवारी

0: यहाँ के प्रतिदिन के लोक जीवन का हिस्सा है और घुड़दौड़ है यहाँ का प्रिय खेल और मनोरंजन का माध्यम।
1: जी अजीत जी, क्योंकि उमंग रेडियो कार्यक्रम है तो ये बताना तो बहुत ही प्रासंगिक होगा कि गोबी मरुस्थल के दूर दराज के इलाकों में भी आज भी टेलीविजन की पहुंच बहुत कम या नहीं के बराबर है।
0: जी
1: यहाँ लोग रेडियो सुनकर ही मौसम का हाल जानते हैं, समाचार सुनते हैं और मनोरंजन भी करते हैं। अब आधुनिकता के दौर में पर्यटन बढ़ गया है, सैलानी देश विदेश से आते हैं और यहाँ के घुमंतू परिवारों के साथ होम स्टे करते हैं।
0: श्रोताओं, यहाँ की दिनचर्या भी बहुत मजेदार और गतिविधियों से भरी हुई है। सुबह उठकर दूध दुहना महिलाओं का काम है, जबकि पुरुष मवेशी चराने का काम करते हैं।
1: जी
0: दिन भर की मेहनत के बाद शाम को पूरा परिवार एक साथ भोजन करता है और कहानियों और गीतों के द्वारा मनोरंजन करता है। ये गाते हैं, बजाते हैं।
1: बजाने के लिए इनके खास वाद्य यंत्र हैं, जैसे मोरिन खोर।
0: ये किस प्रकार का वाद्य यंत्र है?
1: ये दो तारों वाला वाद्य यंत्र है। एक और बहुत लोकप्रिय वाद्य यंत्र है लिम्बे, ये बांसुरी जैसा वायु वाद्य यंत्र है। एक रोचक बात ये है कि यहाँ लोग अपने संगीत को ऊंट, घोड़े और प्रकृति से जोड़ते हैं। कई धुनें यहाँ ऐसी होती हैं जो जानवरों को बुलाने और शांत करने के लिए बनाई गई हैं।
0: बहुत सुंदर जानकारी विमलेश जी। सचमुच गोबी का शीत मरुस्थल जीवन की कठिनाइयों और उसे सुंदर ढंग से जीने का अनूठा उदाहरण है।
1: तो श्रोताओं, ये थी रोचक जानकारी गोबी के शीत मरुस्थल की।
0: अब आज का प्रश्न सुनिए आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है, गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गोबी मरुस्थल के उन घरों को क्या कहते हैं जो खोलकर एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाए जा सकते हैं।
0: श्रोताओं, आप प्रश्नों के उत्तर और संदेश हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर या हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं।
1: जी।
0: हमें आपके संदेशों का इंतजार रहेगा।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें। और हाँ, NCERT की पाठ्य पुस्तकों की ध्वनि पुस्तकें यानी ऑडियो बुक्स आप दीक्षा या NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा आज का पहला कार्यक्रम है दोस्त की पहचान।
1: कक्षा 4 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस लोक कथा में बताया गया है कि एक सच्चे मित्र की पहचान कैसे की जाती है। संदेश दिया गया है कि सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय काम आए।
2: एक जंगल से दो दोस्त गुजर रहे थे।
3: कितने बड़े बड़े पेड़ है यहाँ तो।
4: हाँ, बहुत बड़े पेड़ हैं।
3: अरे देखो देखो, कितने अच्छे पक्षी हैं यहाँ पर। अरे वो देखो चिड़िया।
4: अरे वो देखो बंदर। ओह, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है।
3: मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है।
4: हाँ, ये तो सही कह रहे हो। अरे कोई जानवर आ गया तो क्या करेंगे हम?
3: क्या करेंगे, देखेंगे जब जानवर आएगा तब।
2: अचानक
4: ओ, ये तो रीच की आवाज है। अरे अरे, मुझे तो लगता है रीच आ रहा है। ओ, अब हम अपनी जान कैसे बचाएंगे?
3: क्या करें, क्या करें? जल्दी सोचो क्या करें।
4: मुझे तो बहुत डर लग रहा है।
3: अरे मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता है।
2: रीच को देखकर उनमें से एक दोस्त झट से दरख्त पर चढ़ गया।
3: ओ, ऐसा करता हूँ, पेड़ पर चढ़ जाता हूँ।
2: और दरख्त की टहनियों में छुपकर बैठ गया। दूसरा दोस्त नीचे अकेला रह गया।
4: ओ, अब मैं क्या करूं? मैं
2: जब उसको कुछ नहीं सूझा,
4: मैं ऐसा करता हूँ, जमीन पर लेट जाता हूँ और अपनी सांस रोक लेता हूँ, तभी जान बचेगी।
2: तो वो सांस रोककर चुपचाप जमीन पर लेट गया। रीच उसके करीब आया, उसने उसे सूंघा।
4: ये रीच तो मुझे सूंघ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, सांस रोक के लेटा रहता हूँ, तभी जान बच पाएगी।
2: और मुर्दा समझकर छोड़ दिया।
4: बच गए, लगता है रीच चला गया।
2: रीच जब चला गया तो दूसरा दोस्त,
3: अरे रीच तो चला गया, अब मैं पेड़ से नीचे उतर सकता हूँ।
2: और अपने साथी से जाकर पूछा,
3: एक बात तो बताओ, रीच ने तुम्हारे

0: अरे कान में क्या कहा?
1: पहले दोस्त ने जवाब दिया,
2: मेरे कान में कहा, ऐसे दोस्त से दोस्ती मत करो जो मुसीबत के समय काम न आए और तुम्हारा साथ छोड़ दे।
1: पंचतंत्र की कहानी मश्क। सोचिए और बताइए,
3: महफूज तरीके से जंगली जानवरों को कैसे देखा जा सकता है? जंगलों में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, उनकी फेहरिस्त बनाइए। अगर आप उन दोस्तों में होते तो दोस्त की मदद कैसे करते? दोस्त की पहचान। अभी आप सुन रहे थे ये प्रोग्राम, अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक, रिकॉर्डिंग मंजू कुमारी, फनकार फरहान अली नकवी, बाल कलाकार सोहम और वान्या, हिदायतकार विमलेश चौधरी, पेशकश कुसुमलता। ये प्रोग्राम CIET NCERT नई दिल्ली भारत के जरिए पेश किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम दोस्त की पहचान।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम गौरा देवी।
2: इस कार्यक्रम में एक सुंदर नाट्य प्रस्तुति के द्वारा चिपको आंदोलन की जानी मानी नायिका गौरा देवी के जीवन और उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है।
3: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
4: लाटा गांव के ग्रामीण खेतीबाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे।

0: दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
2: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
3: अरे इंकार भी नहीं लगी।
4: अरे
2: नहीं लगा ना, लाओ लाओ, रुको रुको रुको। अरे मैं
4: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
2: हा?
4: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
2: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
4: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
3: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
4: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
2: बड़ी आई रोकने वाली। वही करेंगे।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
0: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
0: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
5: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
6: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
5: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
7: लेकिन मेरा आदमी तो भी काम ही पे नहीं जाता।
5: आप तो काम करती है ना?
7: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
5: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
0: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400

0: सौ पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांव के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
1: नहीं करने देंगे,
2: बिल्कुल नहीं करने देंगे।
3: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
0: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
3: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
4: गौरमा,
5: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
4: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
5: कौन लोग आ रहे हैं?
4: अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो। गौरमा,
5: हाँ,
4: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
5: क्या?
4: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
5: अच्छा, तो ये बात है। बहनों,
6: हाँ गौरमा,
5: चलो हम सब तैयार हो जाएं।
7: बिल्कुल,
5: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
6: हाँ, हाँ, हाँ, सब तैयार हैं।
1: हम बिल्कुल तैयार हैं।
2: पेड़
1: नहीं कटने देंगे।
4: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
0: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
5: ये है जंगल के उपकार,
6: मिट्टी पानी और बया,
5: मिट्टी पानी और बया,
6: जिंदा रहने के आधार।
3: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
5: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे? जिस जंगल ने तुझे पाला, पोसा, बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
8: सुनो, आगे बढ़ो।
7: अरे कहां से
8: तुम इनकी बातों में बताओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। हो जाओ शुरू,
7: पैरों से चिपक जाएंगे, चिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
5: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
4: नहीं लगाने देंगे।
5: बहनों, आगे बढ़कर चिपक जाओ पेड़ों से।
6: हाँ, हम चिपक जाएंगे।
8: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर यह सूचना गांव

0: के पुरुषों तक पहुंचा दी।
1: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
2: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
0: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में यह आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
1: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
0: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
1: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
3: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
0: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: तो श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, और इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर,
4: 104 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपके सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें

0: तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareilicbs@gmail.com।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
2: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 104.4 FM पर। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे FM रेनबो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
3: अवगत कराती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य है। उन्होंने कहा कि चीनी, आलू, दूध, एथेनॉल आदि में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केमिकल, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड को न्यूनतम स्तर पर लाने और कृषि को प्राकृतिक स्तर पर लाने के लिए खरीफ गोष्ठी लाभदायक सिद्ध होगी। श्री योगी ने कहा कि आज किसान अपने खेत में तीन तीन फसलें ले रहा है। सरकार ने MSP बढ़ाकर किसानों की आय बढ़ाने में सहयोग किया है। उत्तर प्रदेश TGT परीक्षा का आयोजन आज और कल प्रदेश के 36 जिलों के 614 केंद्रों पर दो पालियों में होगा। बदायूं में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक TGT परीक्षा जिले के 13 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा हो रही है। खाद्य एवं रसद तथा नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज कुमार पांडे ने प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता, पारदर्शी वितरण और उपभोक्ता हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कल लखनऊ में पेट्रोलियम कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों और खाद्य एवं रसद विभाग के प्रमुख सचिव व अन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में श्री पांडे ने नेपाल एवं बिहार की सीमाओं से जुड़े जनपदों में पेट्रोल, डीजल की जमाखोरी और कालाबाजारी की प्राप्त शिकायतों पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने पेट्रोलियम कंपनियों के अधिकारियों एवं जिला पूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ऐसे मामलों की तत्काल जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। माध्यमिक शिक्षा विभाग के नवनियुक्त निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने कहा कि माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ावा देते हुए डिजिटल शिक्षा, स्मार्ट कक्षाओं और तकनीकी आधारित शिक्षण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। मंगलवार को पदभार ग्रहण करने के बाद विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में उन्होंने योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। सरकार ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन जमा करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला एवं संस्कृति तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बताया कि नामांकन केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।

12:04 और 28 सेकेंड हो चले हैं, प्रोग्राम शुरू हो चुका है शत्रुपा। और शत्रुपा में आज क्या है खास बात, सोचिए जरा। हर दिन कुछ नया होता है और हर दिन कुछ

खास होता है। तो आज है वेडनेसडे। जी हाँ, आज हम स्वाद लेकर आते हैं आप तक, और बल्कि केवल स्वाद नहीं, साथ ही साथ हेल्थ का भी ध्यान रखते हुए, और कुछ ऐसी चीजों से भी आपको रूबरू कराते हैं जो शायद आजकल के जो पीढ़ी है या आजकल के जो बच्चे हैं वो जानते ही नहीं, ये क्या होता है, ये कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता था, इसकी क्या खास बात है। तो स्वाद के साथ हम उस खास बातों से भी आपको जानकारी पहुंचाएंगे। और वैसे बताइए, गर्मी का मौसम आते ही क्या याद आता है? दादी नानी की रसोई है ना, जहां पर मिट्टी के घड़े का पानी हुआ करता था, बेल का शरबत बिना बताए जबरदस्ती, नहीं थोड़ा सा पी लो, थोड़ा सा पी लो, सत्तू का शरबत, अरे बच्चा थोड़ा सा पी लो, जब बाहर घूमी करने जाओगे तो लू नहीं लगेगी। शायद आज कहीं वो गुम सा हो गया है, लगता है आपको? चलिए, हम उन बातों को नहीं दोहराने वाले हैं, यादों को अपनी यादों तक रखते हैं। और एक चीज और आप सोचिए, दादी नानी क्या और पिलाती थी हम सभी को, जिससे कि हमारा शरीर ठंडा रहता था, जी गर्मी से बचाता था, बहुत खास था उस समय। अब शायद बहुत सारे लोगों को उसका नाम ही नहीं पता, तो हम बताते हैं ना, गोंद कतीरा। जी हाँ, गोंद कतीरा। अब ये दो नाम नहीं है, ये एक नाम है। हम वो वाला गोंद जानते हैं जिसे हम रवा के लड्डू में इस्तेमाल करते हैं, कई सारे डिशेस में इस्तेमाल करते हैं, उसे भून के उसे फोड़ कर खाया जाता है, वो भी हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं गोंद कतीरा की। बहुत सारे लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोग इससे कई अच्छी अच्छी डिशेस भी बनाते होंगे। तो जो सुन रहे हैं और जो जानते हैं, डिशेस बनाते हैं, वो हमें भी बताएं कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। हमें मेल कर सकते हैं fmakashwani@gmail.com पे। और जो हम बता रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए, ये जानकारी आपके लिए और औरों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन हम केवल जानकारी ही नहीं देते, हम आप तक प्यारे गाने भी पहुंचाते हैं। तो सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक, उसके बाद करेंगे और भी बातें गोंद कतीरा से रिलेटेड, क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या जरूरी है। जी हाँ, सब कुछ। तो बस सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की शालिनी के साथ।

11:15 और 2 सेकंड हो चले हैं और बहुत सारे लोगों ने ये सोच लिया होगा कि गोंद कतीरा से क्या क्या हम बनाते हैं और क्या मैसेज करें, और लेकिन सोचा ही आपने अभी तक मैसेज नहीं किए, और जिन लोगों के मैसेज आ रहे हैं वो हमारे इस प्रोग्राम से रिलेटेड नहीं है, तो क्या किया जाए भाई, कर दीजिए ना फटाफट, तो अच्छा लगता है। और अगर हम गोंद कतीरा की बात करें तो आज के समय में भी बहुत सारे लोग इसके बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन इसके फायदे क्या हैं और इसके कुछ नुकसान भी हैं। हाँ, अभी आप कहेंगे ना कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, और जो हमें हम किधर से देख रहे हैं ये हमारा नजरिया होता है, हमें दोनों देखना चाहिए, और हर एक चीज का अगर फायदा है तो दोस्तों नुकसान भी होता है, इसका ध्यान रखना है। और गोंद कतीरा तो एक प्राकृतिक गोंद है जो कि कुछ विशेष पेड़ों और झाड़ियों से निकलता है, और ये देखने में छोटे छोटे एकदम ट्रांसपेरेंट टुकड़े होते हैं ना, पारदर्शी होते हैं, जिसे आर पार देखा जा सकता है, और जब इसे हम पानी में भिगोते हैं और उसके बाद इसका इस्तेमाल करते हैं, जब भिगोते हैं ना तो ये फूल कर जेली की तरह ज्यादा सा हो जाता है। पुराने समय की अगर हम बात करें तो इसे गर्मियों में इस्तेमाल किया जाता था, जब गांवों में खेतों में लोग काम करने जाते थे या किसी लंबी यात्रा के लिए जाते थे, जब तेज गर्मी में मजदूर काम कर रहे होते थे तो इसका शरबत जरूर पीते थे और इसे अलग अलग तरह से इसका इस्तेमाल करते थे। तो चलिए इस गाने के बाद हम आपको बताएंगे इसका इस्तेमाल कैसे और कब करना चाहिए।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: दोस्तों सच में आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शत्रुपा, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं गोंद कतीरा की। और ये सोचिए कि हम अभी जैसे ही हम बता रहे हैं और आप बना लेंगे तो ये पॉसिबल नहीं होगा। तो आज आपको सही से ध्यान पूर्वक सुनना है और हर एक बात को गांठ बांध लेनी है। कहते हैं ना कि इस बात को गांठ बांध लीजिए तो सारी चीजें याद रहेंगी और उसके बाद आपको, हमें नहीं लगता है कि जो जो चीजें हम बताने वाले हैं उसमें से आपके पास घर में किचन में बहुत सारी चीजें ना हो, सारी चीजें होंगी सिवाय गोंद कतीरा के, जो कि आपको मार्केट से लाना होगा, रात में भिगो के रखना होगा। नेक्स्ट डे आप जो जो चीजें हम बताएंगे हर एक चीज का इस्तेमाल कर सकती हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, गर्मी में क्या मन करता है? हाँ, ठंडा ठंडा शरबत पीने का मन करता है, लेकिन सभी लोग हेल्थ को लेकर काफी सीरियस हैं। जी हाँ, सफेद चीजें बंद कर रहे हैं ना, चाहे वो शक्कर हो, चाहे वो मैदा हो, और यहाँ तक कि तेल वगैरह भी। तो चलिए, अच्छी बात है, और जब जागे तभी सवेरा है कहते हैं। तो शरबत में ये जरूरी नहीं है कि आप शक्कर का इस्तेमाल करें, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। वो वहाँ पर आप जी जो जैसे कहते हैं शहद है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, धागे वाली मिश्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, मजे की बात। तो नींबू का शरबत बनाते हैं। आज हमने रात में गोंद कतीरा को भिगो दिया, उसके एक दो पीस, दो तीन पीस लेने होते हैं और ढेर सारा पानी डालते हैं। जैसे एक ग्लास पानी में, बड़ा ग्लास जो होता है उसमें दो तीन टुकड़े डालते हैं और भिगो के रख देते हैं, वो पूरा फूल जाता है और जेली की तरह हो जाता है। और इसको क्या करना है, एक तरफ जैसे भी आप शरबत बनाते हैं नींबू ऐड करते हैं, उसमें पुदीने की पत्ती ऐड करते हैं, आपको थोड़ा सा खट मीठा चाहिए तो आप उसमें जीरा पाउडर भी

डाल सकते हैं, काला नमक डाल दीजिए उसमें। आपने शहद डाल दिया और उसके बाद थोड़ी सी बर्फ डालनी है, आइस क्यूब डालने हैं, और फिर गोंद कतीरा 1 से 2 चम्मच लेना है और पूरी तरह से मिला देना है, और फिर क्या वाव गटागट पी जाना है। और हाँ, इसमें अगर और भी कुछ ऐड करना चाहते हैं तो सब्जा सीड्स भी ऐड कर सकते हैं। उसको सो करने के लिए आपको 3-4 से 5 घंटे लगते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और गोंद कतीरा के साथ सब्जा सीड्स का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो फ्रेंड वाला है। जैसे दो बढ़िया वाले फ्रेंड होते हैं, पक्की वाली दोस्ती, तो कई सारी चीजें उससे भी मिलाकर बनती हैं। तो जब आप मार्केट जाएंगे गोंद कतीरा लेने के लिए, तो सब्जा सीड्स भी थोड़ी सी ले लेंगे, तो भी और भी अच्छी डिशेस बन जाएंगी। और

के लिए आपको 3-4 से 5 घंटे लगते हैं, तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी हेल्थ के लिए अच्छी होती है। और गोंद कतीरा के साथ सब्जा सेठ का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो फ्रेंड वाला है, जैसे दो बढ़िया वाले फ्रेंड होते हैं, पक्की वाली दोस्ती, तो कई सारी चीजें उससे भी मिलाकर बनती हैं। तो जब आप मार्केट जाएंगे गोंद कतीरा लेने के लिए, तो सब्जा सीड्स भी थोड़ी सी ले लेंगे, तो भी और भी अच्छी डिशेस बन जाएंगी। और अब बारी है जब नींबू की बात कर देते हैं ना, तो निमोड़ा निमोड़ा गाना बिना सुने रहा नहीं जाता। सुनते हैं प्यारा सा ट्रैक।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
4: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
5: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
6: दोस्तों 12:32 और 50 सेकंड हो चले हैं प्रोग्राम शत्रुपा, जिसमें शालिनी लेकर आई है आज गोंद कतीरा की ढेर सारी बातें और अलग अलग डिशेस। तो अभी शरबत की बात करिए, और शरबत तो घटाघट पीते चले जाते हैं, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती ना बनाने में मेहनत लगती है। अगर अब इस शरबत को थोड़ा सा और कि कुछ बीच बीच में चीजें खाने के लिए भी आ जाएं और बढ़िया सा टेस्ट भी और बढ़ जाए, उसकी बात करने वाले हैं। इसके लिए आपको ना सब्जा सीड्स रखनी है अपने पास में, साथ ही साथ वाटर मेलन यानी कि तरबूज के छोटे छोटे से टुकड़े करके रख लेने हैं, थोड़ा सा दूध लेना है, और अगर आप शुगर ऐड करना चाहते हैं तो रख कर सकते हैं, नहीं तो आप उसकी जगह शहद गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़े से छोटे छोटे से टुकड़े बर्फ के भी आपके पास भी होने चाहिए। करना क्या है आपको, रात में भीगा हुआ जो गोंद कतीरा है वो मॉर्निंग में आपको 2-4 चम्मच एक बाउल में रखना है। छोटे छोटे से जो टुकड़े आपने तरबूज के काट के रखे हैं वाटरमेलन के, वो आपको उसमें मिलाने हैं। सब्जा सीड्स को उसी में ऐड करना है, दूध थोड़ा सा डालना है, और थोड़ा सा आइस क्यूब जो छोटे छोटे से टुकड़े हैं बर्फ के वो भी आपको डालने हैं, और अगर आप शुगर ऐड करना चाहते हैं नहीं तो शहद डाल दीजिए और उसे अच्छे से मिला लीजिए। जस्ट लाइक पीना भी है और कुछ बीच बीच में खाना भी है, तो ये बहुत अच्छा वाला टेस्ट बन जाएगा। और आप इसे जो भी नाम देना चाहते हैं, कुछ भी नाम, जो डिशेस होती है ना कुछ स्पेशल, कहीं कुछ कहा जाता है कहीं कुछ कहा जाता है, प्यार मोहब्बत कुछ भी नाम आप इसे दे सकते हैं और इसे एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों गोंद कतीरा हो या बेल का शरबत हो या ठंडी ठंडी लस्सी, भारतीय खान पान में जो मिठास और ताजगी है ना वो हमेशा ही खास रही है, और इसी मिठास के साथ ये अगला गाना आप सबके लिए।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात रंग का इंद्रधनुष है,
3: सात सुरों की सर

12:46 और 20 सेकंड का वक्त हो चला है। प्रोग्राम शत्रुपा में आप शालिनी के साथ हैं, ठंडी ठंडी वाली बातें लेकर आज हम हैं आपके साथ। गूंद कतीरा देसी ठंडक का खजाना है या सिर्फ आजकल ट्रेंड, तो आप बताइए। ये तो सच बात है ना, देसी ठंडक का खजाना है ना। कहते हैं कि जब सूरज आग बरसा रहा हो और जो हमारा शरीर है वो थक कर जवाब देने लगे, तब कई घरों में गोंद कतीरा देसी ठंडक बनकर सामने आता है। जी, गर्मी में डिहाइड्रेशन यानी कि शरीर में पानी की जो कमी होती है, जो कि होना आम बात है, ऐसे में बहुत सारे लोग किसी डायरेक्ट शरबत में, दूध में, लस्सी में, दही में मिलाकर खाते हैं। ठंडाई में भी मिलाकर, मतलब खाते क्या पीते हैं, और फलूदा में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको पता है, बिना ऑयल का, बिना गैस का जो रेसिपी कई सारी बनाई बताई है ना अभी, जैसे हमने शरबत बताया है आपको, वाटरमेलन वाला शरबत और उसके टुकड़े डालकर बताए हैं तैयार करने के लिए। अब आप फ्रूट सलाद में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने फ्रूट्स आप इकट्ठा कर सकते हैं, जो खाते हैं आप, रेगुलर लेते हैं, सारे ले लीजिए। हाँ, उसमें सब्जा सीड्स का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, उसको भी सोख करके रखिए और उसको भी ऐड करिए। और ये गोंद कतीरा भीगा हुआ 2-3 चम्मच आप उसमें मिलाइए और अच्छे से पूरा मिक्स कर दीजिए और उसके बाद खाइए। देखिए क्या मजा है। जी हाँ, टेस्ट कहते हैं ना कि दोगुना हो जाता है, तो सच में। और पार्टी अगर करनी है आपको तो इस तरह वाली भी करिए, जरूरी नहीं है पार्टी में बहुत स्पाइसी और अलग अलग चीजें हों, इसकी भी पार्टी की जा सकती है, खासकर गर्मी में जहां पर बस ठंडक का एहसास और हेल्थ का ध्यान हो।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टिसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: दोस्तों 12:53 और 33 सेकंड हो चले हैं और ये वक्त कह रहा है कि शालिनी अब प्रोग्राम शत्रुपा को करना होगा फाइंड अप। लेकिन चलते चलते एक प्यारी सी डिश जिसे खास हमारी फ्रेंड ने हमें कल ही टेस्ट कराई और खिलाई भी। जी हाँ, दलिया और ड्राई फ्रूट्स के साथ भी गोंद कतीरा का इस्तेमाल किया जा सकता है। जी हाँ, जैसे नॉर्मल आप दलिया बनाते हैं ना दूध वाली, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड करिए और थोड़ा उसे ठंडा होने के लिए रख दीजिए और जब ठंडा हो जाए तब उसमें गोंद कतीरा 1-2 चम्मच मिला दीजिए और उसके बाद जब आप सर्व करते हैं तो भी ऊपर से थोड़ा सा डाल सकते हैं, दे सकते हैं और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऊपर से डाल सकते हैं, तो देखिए क्या टेस्ट आएगा। और मुझे लगता है कि अब सब लोग इसका इस्तेमाल करेंगे और इसके बारे में और लोगों से को भी लोगों को भी बताएंगे और इसके बहुत सारे फायदे हैं। दोस्तों ये शरीर को ठंडक पहुंचाता है, शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है, पेट में भी राहत मिलती है, जैसे किसी को कब्ज की या जलन की शिकायत होती है, कमजोरी और जैसे कमजोरी है हमें तो एनर्जी देता है और स्किन भी हमारी ग्लो करती है जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान देने वाली बात है, बिना भिगोए इसे कभी नहीं खाना चाहिए और अगर आप डायबिटिक हैं या प्रेग्नेंट हैं तो भी डॉक्टर की सलाह लेने के बाद इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और वैसे भी कहा गया है ना, जिस चीज की जितनी जरूरत हो उतना ही इस्तेमाल करें और जरूरत से ज्यादा

किसी भी चीज का जो सेवन होता है वो नुकसान ही करता है। कई लोग सोचते हैं कि देसी चीज है तो जितना खाएंगे उतना फायदा होगा, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। जरूरत से ज्यादा गोंद कतीरा खाने से पेट भारी भी लगने लगता है, गैस बनने लगती है, पाचन तंत्र जो है आपका वो खराब हो सकता है। हर देसी नुस्खा जो है ना फायदेमंद जरूर होता है, लेकिन सही मात्रा में। तो मात्रा का ध्यान आपको जरूर रखना है। तो बस इसी के साथ शालिनी करती है इस प्रोग्राम से टाटा बाय बाय। नेक्स्ट प्रोग्राम ऑटो पे तेरी बात में आज हम बात करने वाले, आपने क्या चीजें अपने दादा दादी नाना नानी से संजोकर अभी भी रखी है और उसका इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे उनकी बात का हो, चाहे उनके कपड़े का हो, चाहे उनके संस्कार के हो, कौन सी वो चीजें हैं, आदतें हैं। तो बस बता डालिए हमें FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पे।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं स्वदेश 94 FM पर। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे FM रेनबो आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। दोपहर के 1 बज चुका है और आइए अब सुनते हैं आपके खतों पर आधारित फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम अनुरोध गीत। बफा में इतना असर तो आए, बफा में इतना असर तो आए, जिन्हें ढूंढती है नजर वो नजर तो आए। हम आएंगे पलक झपकने से पहले, आपने याद किया ये खबर तो आए। नमस्कार, आदाब। कार्यक्रम अनुरोध गीत में हमारे सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। ढेर सारी खत हैं और उस खतों में है आपकी फरमाइश के गीत। शुरुआत करते हैं इस पहले खत से। पीर बहोड़ा बरेली से आजाद खान, दिलशाद खान, मुस्तकीम, तबस्सुम और इनके परिवार के सभी लोग, आपने सुना चाहा है राजपूत फिल्म का ये गीत किशोर कुमार व साथियों की आवाज में। गीतानंद बख्शी का संगीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से फजलुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई और इनके परिवार के सभी लोग। ये खत हमारे पास आया है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह ठाकुर, अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। आप हैं संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से वारिस अली खान, शकील अहमद, जावेद अली, अल्फिशा खान, हमजा खान और इनके परिवार के सभी लोग। शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरीसी, नाजरा इदरीसी, नईम और नदीम इदरीसी। गांव लोहड्डा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, मास्टर अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन और इनके सभी परिवार के लोग और मित्रगण। मालवा रेडियो श्रोता संघ प्रमिलागंज आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से आप हैं बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल, प्रियांश और ऋषि वर्मा। ग्राम अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, गुड़िया ठाकुर और इनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं फिल्म राजपूत का ये गीत आपके रेडियो साइट पर।

श्रोताओं, ये खत हमारे पास आया है निकट बिजली घर कस्बा मीरगंज बरेली यूपी से। भाई कल्लू मिस्त्री, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद नसीम, अनाबिया फातिमा, बाबर अजीम हमजा और इनके साथ में हैं आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, यशपाल दिवाकर, उमेंद्र पुरी, मुकेश गिरी, राजीव पुरी गोस्वामी। आपने सुना चाहे फिल्म नदिया के पार का ये गीत जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज में। इसी गीत को सुनने के लिए ये खत हमारे पास आया है रामपुरा किसानान मजरा सिमरिया तहसील मीरगंज बरेली यूपी से। राम कुमार वर्मा, भगवान दास वर्मा, रविंद्र वर्मा, तेज प्रकाश वर्मा, सोमपाल वर्मा, शशि कुमार वर्मा, नथुलाल वर्मा, ननकी सिंह वर्मा, एच एल वर्मा, छोटे से विवेक और हिमांशी वर्मा और इनके सभी परिवारीजन। आप हैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा और परिवार के लोग। मनकारा मंदिर बीडी कॉलोनी करगना बरेली से पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, रूबी भारती, रचना भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, ममता चौधरी, श्रीमती ओमपति भारती, बेटी कनक, नकुल नैन्सी और सारांश। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तबरेज अंसारी, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार और मस्तान बाबा। गड़िया बरेली मस्जिद के पास से मोहम्मद कैसर शमशी, अजीम शमशी, सलीम शमशी, नवैस शमशी, रजिया शमशी और शमशी परिवार के सभी लोग। आप हैं गंगवार रेडियो श्रोता संघ ग्राम दलपतपुर पोस्ट चटिया जिला बरेली से ओमपाल गंगवार, अनीता गंगवार, इनके मम्मी पापा। ग्राम पिपरिया पोस्ट नगरिया सोबरनी जिला बरेली से अमन गंगवार, आशा गंगवार, संध्या गंगवार, छोटेलाल गंगवार और परिवार के सभी लोग। रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत शमरीन, परवीन मोहम्मद रेहान, माहिरा नूर, जसपुर उत्तराखंड से ये खत हमें भेजा है। इंद्रा बिहार रायगढ़ से वसीम अकरम नूरजहां, डब्लू अकरम, वली अकरम, उल्ला अकरम नूरजहां, राजनाथ गांव से याकूब, आसमा, यूसुफ, इमरान, इरफान, जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम अदीबा और इनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं फिल्म नदिया के पार का ये प्यारा सा गीत जसपाल सिंह और हेमलता की आवाज़ में।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: श्रोताओं, 100.4 FM पर आकाशवाणी की बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम अनुरोध गीत। मौला हलवाइयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वखार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी खान, बिट्टू भैया, साजदा रानी, आलिया रानी, आप हैं मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर जिला पिलवीज से विमल वर्मा, विनय वर्मा और इनके परिवार के सभी लोग, गांधी पार्क मनपुरा तहसील पिछार जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से मनोज नामदेव, मंची नामदेव, शिवम, राहुल, नरेंद्र, धांसू नामदेव, छोटेयू नामदेव, मिन्नी, सपना, खुशबू, रीना, रेखा, ममता नामदेव और समस्त नामदेव परिवार के लोग, करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप कोगलानी, जगमोहन प्रजापति, आप हैं दिल्ली शहर मोरी गेट से कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी, आकाश कुमार, खमरिया बिलासपुर से साबित खान, सावित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति और प्रतीक कुमार, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से गुरविंदर सिंह पांडा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनप्रीत, मनविंदर और इनके सभी साथी, परमवीर हाउस आदर्श नगर भटिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति पवनीत, विक्रमजीत ग्रोवर, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेराज जहां, आजाद नगर लक्सर, हरिद्वार से ये खत में भेजा है, ऊंची मस्जिद उज्जैद से चांद मियां, तबस्सुम, असद सत्तार, शाहजहां, अलीबाबा, मर्जीना, अलबख्श, गंजंडवारा उत्तर प्रदेश से एम एच लला, एन बी मिर्जा, मुनव्वर हुसैन, नसरीन बेगम, कहकशा बेगम, अनवर मियां, गुमनाम शाह, बेनाम शाह, नामालूम शाह, आप हैं मसरूर खान, नखासा रोड उसैद बदायूं से, साथ में अमन अब्बासी, सुहेल अंसारी, भरत यादव, अनस मंसूरी और रेखा कश्यप और इनके परिवार के और मित्रगण सभी लोग, बरेली जंक्शन से गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, बिक्की भारद्वाज, अमान जैद, इसरार भाई, पदम भारद्वाज, सुंदर भाई, प्रदीप पाल, नमन, उमाशंकर और परिवार के सभी लोग, आइए सुनते हैं फिल्म हमारा खानदान का ये गीत मोहम्मद अजीज और अनुराधा पौडवाल की आवाज में।

खुर्जा यूपी से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। आप हैं फूलबाग छावनी। जिला बरेली से विशन दत्त भारद्वाज, शिव दत्त भारद्वाज, गंगा दत्त भारद्वाज, विक्की भारद्वाज, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देवकी देवी भारद्वाज, शिप्रा, नीलम भारद्वाज, मुन्नी देवी भारद्वाज, श्री राम राठौर। शीतल रेडियो श्रोता संघ ग्राम बहरामपुर टेमा, जिला खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, मास्टर समर राज, आर्यन वर्मा, बीबी आरोही, ईशिका वर्मा, अंजलि, श्वेता वर्मा। आप हैं कस्बा शीशगढ़ मोहल्ला गौड़ी से गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी। ग्राम शंकरपुर पोस्ट ओसाबा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव, आनंद, अमन, अंकिता, सुनीता, सूरज, शरीस, अनीता, विनीता, सोनी यादव, सनोज और पुष्पेंद्र यादव। वजीरगंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से

प्रेम कमल वाशने, सुशीला कमल, प्रभात कमल, अमरीश कमल, सलोनी कमल, सचिन कमल, नीरू कमल, देविका कमल, कार्तिक कमल, वेदरिचा कमल और ऐश्वर्या कमल वाशने। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जतेक बिरक और मीका बिरक। यादव मोहल्ला सनाबत मध्य प्रदेश से दिलीप मालाकार, योगेश, सुनीता, मुस्कान और इनके परिवार के सभी लोग। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल और कुणाल मेहरा। मोहम्मद तारिक अंसारी, महफूज अंसारी, आरिफ अंसारी, आसिफ अंसारी, वार्ड नंबर 6 औला बजरिया से। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धंजे, राहुल कुमार धंजे, विशाल कुमार धंजे, शीला धंजे, गायत्री धंजे। हुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतू वैद और इनके परिवार के सभी

श्रोताओं 100.4 एफएम पर आकाशवाणी की बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अनुरोध गीत। और अगला अनुरोध किया है कटरा चंद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, एरोई मौर्य, स्वाति मौर्य और मौर्य परिवार के सभी लोग। आपने सुना चाहे फिल्म बगावत का ये गीत मोहम्मद रफी व साथियों की आवाज में। इसी गीत को सुनने के लिए ये खत हमारे पास आया है कस्बा सिंधौली मीरगंज से, जीशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख, करोला मुरादाबाद से। आप हैं हमारे इरम गुड़िया और इनके परिवार के सभी लोग। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा। लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, रतरंगी से भागवत वर्मा, रमेश चंद्र यादव, मुस्कान यादव, सुशीला कुंज, प्रिया, पवन विहार बरेली से, ग्राम पजौनिया तहसील कोच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सतेंद्र चंसौलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक आराध्या और चंसौलिया परिवार के सभी लोग। बहेड़ी से अंजुमबाई, खालिदा बेगम, कैकशा, दानिश आदिल, शबक, बिलराम गेट काजगंज से एम एस अलम सैफी, जैबुन्निशा बेगम, अकरम सैफी, आवाद खान। नगरिया कला जिला बरेली से ये खत हमारे पास आया है मोहम्मद अकरम अंसारी, बरकत अली अंसारी, जमील अहमद अंसारी और इनके परिवार के सभी लोगों का। तो आइए सुनते हैं बगावत फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी व साथियों की आवाज़ में।

0: गगन को डोर समझ रहा है? नादान, मौत आई है तेरी।
1: मौत? इतनी हसीन, अये ये नागन डसले तो क्या कहना।

श्रोताओं 100.4 FM पर आकाशवाणी के बरेली केंद्र से आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत। श्रोताओं आज रात 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मुशायरे का आयोजन किया जाएगा। करूला मुरादाबाद से अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान, आप हैं विमल ठाकुर, सरिता ठाकुर, शुभ लब, गुनगुन, अमर सिंह, नीलू, रीना, नीरज बक्सीना दातागंज बदायूं से, आप हैं मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुआड़कर, राही सरिता गुआड़कर, सिद्धांत प्रिंस, एकांश गुआड़कर, सुखी विश्वकर्मा नगर नागपुर से, शैलेश, वैशाली, श्वेता, सुमित, ध्वनि और गुआड़कर परिवार के सभी सदस्य, आप हैं बालकरण, अंजलि वर्मा, कुमारी ज्योति वर्मा, बठेना से चटौदा, सारा गांव से हैं सुजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा, फजलिका पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, ट्वांसी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, आरबी खेड़ा, लाडी खेड़ा, जीवन सिंह और खेड़ा परिवार के सभी लोग, कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिबे, रमाताई डोंगर दिबे, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई, राहुल डोंगर दिबे, आप हैं बक्सर बिहार से शरबुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अक्रम अंसारी, अल्ताफ अंसारी, डुमराव बिहार से डब्लू अंसारी, सोनम अदीबा, दानिश अंसारी, सरीमपुर बक्सर से आसमा खातून अंसारी, राज एच डी अंसारी, मेहताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी और मीराज अंसारी। तो आइए सुनते हैं मजदूर फिल्म का ये

फिल्म का नाम है आशा, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और अनुरोध किया है आप सभी ने। गांव चौलैदा बागपत से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, मुस्कान और कुणाल, परिमहल काजगंज से आबाद खान, नवील खान, असलम सैफी, ए ई खान, गंजुंडवारा से शमशुल कमर राही, जाहिद अली, अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, आशीष मल्होत्रा, स्वीट बेबी काव्या, जयपाल यादव, कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश

बत्ता नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू निहारिका और वंश बत्ता। राज पैलेस मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊनाथ भंजन, उत्तर प्रदेश से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, रितेश, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। जिला बदायूं ग्राम दूनीनगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सतेंद्र कुमार कठेरिया, गुड्डू विशाल, संगम, विभू, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरिता और अंतिमा। आप हैं तहसील जाफराबाद जिला जालना हुन से श्री सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, जगुताई, संचित प्रथमेश, सोहम, प्रणाली सानवी। आप हैं रजत कुमार भूल बरेली से, गणेश शर्मा, शगुन शर्मा, कार्तिक शर्मा, पवन शर्मा, युवराज शर्मा, इशिता शर्मा, पंकज शर्मा, वीर शर्मा, संदीप शर्मा, चंचल शर्मा, चिंकी शर्मा, सूरज शर्मा और इनके सभी साथी पुराना होली चौक ग्राम करघना बरेली से, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा, झाविंद्र कुमार वर्मा, टिंकू भाई उर्फ भास्कर भाई, शुभम कुमार, मोहित माथुर, योगेंद्र माथुर, कुमार पाल माथुर, रूपेंद्र माथुर, नीटू शर्मा, के शर्मा, चौप सिंह, शाक, आशीष शाक, रमेश साहू, मोनिका माथुर, अनिश्का माथुर। आप हैं ग्राम बुटला दौलत पोस्ट उजहानी जिला बदायूं से, यूनुस खत्री, शबी खत्री, इदरीस, नूर मोहम्मद खत्री, इरफान मीना, कासिफ मीना, हाशिम मीना, कासिम कॉलोनी सनाबत मध्य प्रदेश से, करगना बरेली से निसार अहमद अंसारी, निसार अहमद अंसारी, मजबी निसार अंसारी और इनके परिवार के सभी लोग। तो आइए सुनते हैं फिल्म आशा का ये गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी नगमा, फिल्म का नाम है दहलीज, आवाज़ भूपेंद्र और महेंद्र कपूर की, और अनुरोध किया है आप सभी ने, आप हैं राम प्रसाद शर्मा और वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, रीता देवी, विनोद वंश, कनिष्का, छावनी अशरफ खान होली चौक बरेली से, रघुनाथपुरा श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। ये खत हमारे पास आया है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिया नेवादा गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, शिरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय। आप हैं पप्पू भाई, सलीम भाई, ये खत हमें भेजा है राजेंद्र नगर निकट तालाब के पास डेला पीर जिला बरेली से, दौलतबाग मुरादाबाद से जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली, बिरडी से हुकुम करम कर सुनीता, हार्दिक, प्राची और तनु। आप हैं हमारे श्रोता शिवाजी चौक राजम छत्तीसगढ़ से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव। अमरपुर पिंडरा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशी लाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। आप हैं सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलढाणा महाराष्ट्र से नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति, आकांक्षा और आकाश कुमार। एक खत हमें भेजा है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, मुश्तबा खान, राहू भाई, शाहिद भाई, गांधी चौक अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। आप हैं ग्राम बगबुड़वा पथरिया से नरेंद्र नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका, उत्कर्ष नेताम। ये खत हमें भेजा है मिराज भी, मुस्कान भी, मोहम्मद रेहान, अलशिफा भी, मन्नत भी, निकट मोती मस्जिद कस्बा नवाबगंज जिला बरेली से, श्रीमती रामदुलारी प्रजापति, राम शरण प्रजापति, चंद्रेश चंद्रकांचा प्रजापति, बुड़गहन छत्तीसगढ़ से, ठेकेदार रहमान अलवी, अनोखी बेगम अलवी, फिरासत अलवी, गुलशन बेगम अलवी, आनवी अलवी, हानविया अलवी, नज़ाकत अलवी, शाहीन अलवी, आलिया बाबू अलवी, आदिल अलवी, मोहल्ला वार्ड नंबर 5 बिलसी जिला बदायूं से, पंडित दंगला बाईपास मुरादाबाद से अख्तर हुसैन, असलम हुसैन, बीबीपुर से महमूद हुसैन, बैडला सिरसी से मकसूद हसन। आप हैं औरंगाबाद से राजेश सावले, शीतल राजेश, राजीव राजेश, राशि राजेश। आइए सुनते हैं भूपेंद्र और महेंद्र कपूर की आवाज़ में ये गीत, हर एक जज्बात को जुबा नहीं मिलती, हर आरजू को दुआ नहीं मिलती, मुस्कान बनाए रखो तो दुनिया साथ है, आंसुओं को तो आँखों में भी पनाह नहीं मिलती।

अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम रस रंग। रस रंग में आइए सुनते हैं सबसे पहले ये कव्वाली।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: आज सुनते हैं सपना शर्मा के स्वर में लोकगीत।

0: और इसी के साथ रंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए मुंबई से सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में।

हम सुन रहे थे समाधि फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, अमीर बाई और साथियों की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल और सी रामचंद्र के संगीत के साथ। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। और आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है श्री 420 फिल्म से। मन्ना डे और साथियों की आवाजें हैं, शैलेंद्र के हैं बोल और शंकर जयकिशन का है संगीत।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं,
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार न

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं न्यू दिल्ली फिल्म का ये गीत, किशोर कुमार की आवाज में, शैलेंद्र के बोल हैं और शंकर जयकिशन का है संगीत।
1: मिलते ही नजर, मिलते ही

हम सुन रहे थे सीआईडी फिल्म का यकीत गीता दत्त की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और ओपी नैयर के संगीत से सजा हुआ। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे का अगला गीत, जो कि है फिल्म साथी से। लता मंगेशकर की आवाज है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल है और नौशाद का है संगीत।

हम सुन रहे थे बरात बिरादरी फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। कुमार ने इसे लिखा और शौकत दिलवी नौशाद ने इसे संगीतबद्ध किया। आइए सुनते हैं अगला गीत। आज के कार्यक्रम का यह अंतिम गीत होगा और जो गीत है फिल्म अनुभव से, गीता दत्त की आवाज़ है, गुलजार के बोल हैं, करुण रॉय का संगीत है। इसके साथ ही आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे से मुझे यानी विधि जैन को नमस्कार।

0: सखी सहेली सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
1: मेरा यानी चंचल वर्मा का
0: प्यार भरा नमस्कार। क्या बात है चंचल, आज बड़ी महक रही हो और खूब कपड़े भी हरे भरे पहने हुए हैं। और जब मैं तुम्हारा लंच बॉक्स देख रही थी तो काफी हरी हरी सब्जी लेकर आई थी, क्या बात है।
1: वैसे तो हरी सब्जियां भाई इस मौसम में मिलना मुश्किल होता है, लेकिन अगर कभी मिल जाए ना तो अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए जरूर खा लेनी चाहिए। और बात हुई हरे भरे की, तो थोड़ी सी हरियाली आप में भी है। और ये जो उत्सव का सा माहौल है ना, कल से ही जो चल रहा है, आज भी जब हम आए स्टूडियो में तो वो सजावट देखकर लगा कि कल के उत्सव की जो रौनक महक है
0: वो आज भी है, खुशबू है ना आज भी हमारे बीच में महसूस हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह कि हर उत्सव को जब हम खुशी के साथ मनाते हैं तो वो कई दिनों तक हमारे दिलो दिमाग पर असर करता है।
1: तो चलिए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे सभी सुनने वालों को बताते हैं कि आज हमारे सखी सहेली के पिटारे में कौन कौन सी जानकारी है या मनोरंजन है और किस चीज पर हम चर्चा करने वाले।
0: तो बताइए आज क्या क्या विषय लेकर आई हैं आप।
1: तो देखिए, सखी सहेली का रिश्ता यानी कि 22 साल पुराना रिश्ता, और कोई भी रिश्ता मजबूत कब बनता है, जब वहां पर प्यार हो, खुशियां हो,
0: विश्वास हो, सम्मान हो।
1: तो रिश्तों की जो मजबूती है उसका आधार क्या है, इस पर हम बात करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और आज बुधवार का दिन है तो साड़ियों की भी कुछ बात होती है। जब उत्सव का समय होता है ना तो भाई जो महिलाएं हैं वो बड़ी सजी धजी नजर आती हैं, और साड़ियों के बिना कहाँ श्रृंगार पूरा होता है।
0: तो भाई हम अपनी अलमारी खोलते हैं ना जब उत्सव के दिन की आज हमें खास साड़ी पहननी है, तो चंचल लगता है जैसे हमारे पास कुछ है ही नहीं। बहुत कुछ होते हुए भी लगता है कुछ नहीं है, क्या पहना जाए क्या पहना जाए। तो लगभग ये सभी महिलाओं की कमजोरी होती है ना।
1: तो आज जो साड़ी है वो है घर चोला साड़ी, जिसके बारे में बात होगी। और शब्द हमारा विचार आपके, तो हमारे सुनने वालों को जिस शब्द के बारे में अपने विचार भेजने हैं वो शब्द है नियोजन।
0: अरे वाह, बहुत सुंदर शब्द है ये नियोजन जी। तो इस पर हमारे श्रोता जो हैं अपने विचार लिखें कि नियोजन का अर्थ क्या है और आपने इसको किस तरह से किस अर्थ में अपने जीवन में उतारा है।
1: और 3 जून का दिन होता है विश्व साइकिल दिवस। अरे वाह, साइकिल से जुड़ी हुई अपनी यादें भी आप साझा कर सकते हैं।
0: हाँ, ये बता सकते हैं कि जब आपको पहली साइकिल मिली आपकी जिंदगी में, जो पहली साइकिल थी, चाहे वो छोटी सी थी, चाहे वो बड़ी थी या वो उससे बड़ी थी, तो आप उसका जिक्र कर सकते हैं कि वो साइकिल हमारे लिए कितना मायना रखती थी उस जमाने में, है ना।
1: और आज कई घरों में हमने देखा है कि चाहे दोपहिया वाहन है या चौपहिया वाहन है, उनके घर में बड़े बड़े वाहन खड़े हैं लेकिन एक साइकिल जरूर रखते हैं, क्योंकि लोग अपने स्वास्थ्य को लेते हुए बहुत जागरूक हो रहे हैं। तो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक जाने की बजाय वो साइकिल लेके
0: नजर आते हैं
1: ताकि उनकी सेहत पर कोई बुरा असर ना पड़े। तो साइकिल एक घर का परिवार के सदस्य की तरह वो हिस्सा होती है।
0: बिल्कुल सही कहा। और आजकल इसका प्रचलन जो थोड़ा कम हुआ है ना, उससे हमारी सेहत में बहुत बुरा असर भी पड़ा है, क्योंकि हमने हर जगह दोपहिया वाहन या चार पहिए के वाहन को कार को लेके जाना सीख लिया। थोड़ी सी दूर पर हम सामान लेने जाते हैं और अपनी गाड़ी स्टार्ट करके ले जाते हैं, तो हम हिलना डुलना ही नहीं चाहते हैं, तो हमारे स्वास्थ्य पर इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर आपने साइकिल चलानी नहीं छोड़ी है तो यकीनन आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा।
1: तो साइकिल चलाने के क्या फायदे हैं, इस पर भी आप हमें लिख कर बता सकते हैं। और गर्मियों की बात हो रही है तो गर्मियों में जैसे हमने शुरू में ही कहा ना कि हरी सब्जियां बड़ी मुश्किल से देखने को मिलती हैं, और सिर्फ हरी सब्जियां नहीं, बाकी सब्जियां भी बाजार में बड़ी कम दिखती हैं। ले देखे कुछ गिनी चुनी सब्जियां हैं, तोरी है, टिंडे हैं, भिंडी है, कद्दू है,
0: लौकी है,
1: जिसमें से बहुत सारी सब्जियां तो बच्चे पसंद नहीं करते खाना, तो महिलाओं के सामने बड़ी समस्या है कि बनाएं क्या।
0: सुनो चंचल, बहुत सारी सब्जियां बनाने पर जो पति देव है ना

0: हमारी सखियों के वो मुंह फुला लेते हैं, ये क्या बना दिया आज, मैं नहीं खाता हूँ।
1: तो एक बड़ा अच्छा ऑप्शन होता है बिना सब्जी के सब्जी बनाने के लिए बेसन, और बेसन से जाने कितनी तरह की सब्जियां बनाई जा सकती है। तो हमारी सखियां बेसन से कौन कौन सी सब्जी बनाती हैं, जैसे अगर मुझे कुछ याद है तो कड़ी बन जाती है, गट्टे बन जाते हैं, पितौड़ की सब्जी,
0: अरे सारा मत बताओ,
1: और इसके अलावा कौन सी सब्जियां हैं और उनकी रेसिपीज भी हमारी सखियां साझा करें। तब तक ये गीत सुन लेते हैं सखियों के,
0: सुन लेते हैं। तो अपनी सखियों से हम कहते हैं कि फटाफट तैयार हो जाइए, और बेसन की इन गर्मियों के दिनों में आप क्या सब्जी बनाती हैं हमें भी बताइए
1: जी।

0: हाँ तो चंचल, जब हम बेकरार होते हैं कब होते हैं बताओ? जब हम किसी के साथ मजबूती से किसी रिश्ते में बंधे होते हैं, है ना?
1: और पता है, जब किसी से रिश्ता बहुत मजबूत होता है, कई बार हम उनके साथ ना हो तो भी उनका जो एहसास है वो हमारे साथ होता है,
0: बिल्कुल सही
1: और ये
0: कहा,
1: उसी रिश्ते की मजबूती को दिखाता है।
0: बिल्कुल। तो रिश्तों की मजबूती के लिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, वही हमारे सफल जीवन का आधार है। अगर इस बात
1: बिल्कुल
0: को हम जान लेंगे तो हमारे रिश्ते मजबूत होंगे, वरना स्वार्थी रिश्ते तो हर जगह मिलते ही हैं।
1: बिल्कुल, मतलब ही रिश्तों का तो कहते हैं ना कि हर जगह लोग अपना मतलब साधने में ही लगे रहते हैं, लेकिन जीवन में रिश्तों की कीमत को साधारणतया बहुत कम लोग समझ पाते हैं
0: बिल्कुल
1: मंदाकिनी जी।
0: बिल्कुल
1: लेकिन जो इस बात को समझ आते हैं कि रिश्ते हमारी ताकत होते हैं, और इसलिए जरूरी है कि जो भी रिश्ते हमारे साथ हैं और वो हमें मजबूती दे रहे हैं, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्तों की जो नींव है वो प्यार और त्याग पर ही टिकी होती है। प्यार के धागे में ही रिश्ते पिरोए जाते हैं और त्याग से उन्हें हम प्रगाढ़ता देते हैं, मजबूती देते
0: बिल्कुल
1: हैं।
0: सही कहा। और अपने से बड़ों के साथ अगर हमारे रिश्ते हैं तो विनम्र होने चाहिए, और विनम्रता ही हमारे जीवन पथ पर आगे हमें ले जाती है।
1: जी
0: अहंकार और

0: अक्कड़ से भरा जो व्यक्तित्व होता है वो कभी भी रिश्तों को सही ढंग से नहीं निभा पाता चंचल, और
1: हाँ
0: इसलिए ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रहना भी नहीं चाहता। और क्या होता है, धीरे धीरे वो व्यक्ति अकेला रह जाता है।
1: लेकिन हम अपने लिए अगर मान सम्मान चाहते हैं ना मंदाकिनी जी, तो सभी जो भी हमें मिलते हैं, बड़े हैं छोटे हैं, सबके साथ सरल सहज रहने की कोशिश हमें जरूर करनी चाहिए। जो जैसा है बस उसे वैसे ही अगर हम स्वीकार कर लें, उसके साथ अपना तालमेल बिठा लेते हैं, तो अगर विपरीत स्वभाव वाला भी कोई व्यक्ति है उसके साथ भी हम सामंजस्य बिठा सकते हैं, और ऐसा जब होगा तो कभी भी मुश्किलें आएंगी ही नहीं हमारे जीवन में।
0: बिल्कुल सही कहा। परिवार के साथ हम जिन रिश्तों से जुड़े होते हैं वो तो हमें जन्मजात मिलते हैं, मतलब वो भगवान की देन है, ऐसा हम मानते हैं,
1: हाँ
0: ठीक है। और उनमें कोई बदलाव भी नहीं हो सकता। भाई माता पिता हैं, भाई बहन है, ये
1: जी
0: हमारे रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। बदलाव लाना है तो अपने स्वभाव में लाना होता है, और प्रेम पूर्ण होकर संबंधों को निभाने का जो प्रयास है वही आपके जीवन को खुशियों से भरता है।
1: बिल्कुल। और एक सफल और संतुष्टिदायक जीवन अगर जीना है तो रिश्तों को मजबूत बनाना भी जरूरी हो जाता है हम सबके लिए। विश्वास, संवाद, सम्मान, सहानुभूति, प्रतिबद्धता को प्राथमिकता देकर हम सार्थक संबंध बना सकते हैं और उनको हमेशा के लिए कायम भी रख सकते हैं, और यही व्यवहार हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को समृद्ध करने में भी मंदाकिनी जी
0: सही
1: बहुत मदद
0: बोले
1: होता
0: हैं,
1: है।
0: बिल्कुल।
1: दोस्त बनाने की कोशिश हम जरूर करें, लेकिन अच्छे दोस्त बनाने पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्त हमारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं और वो हमारे बहुत बड़े राजदार भी होते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ऐसे दोस्त चंचल बहुत कम मिलते हैं।
1: जी
0: ज्यादातर लोग दोस्ती करते तो वे कहते हैं भी हमारा कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब आप उनसे दोस्ती करते हैं तो वही आपके साथ क्या करते हैं ये हम
1: बिल्कुल
0: कह नहीं सकते हैं। रिश्ते जो होते हैं हमारे अंदर की अच्छाई या बुराई को उजागर करके हमें बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, और इसीलिए किसी भी नए रिश्ते में कदम रखते समय बस थोड़ा सा सावधानी जरूरी होती है।
1: बिल्कुल। हमारे आसपास परिवार के लोग जो भी होते हैं, ये इनके साथ हमारे रिश्ते बहुत भावनात्मक होते हैं, और ऐसी दुनिया में सच्चे संबंध से लेकर तेजी से ये जो रिश्ते हैं मूल्यवान होते जा रहे हैं। मजबूत रिश्ते बनाने की कला में जो महारत हासिल करनी है अगर आपको, तो भाई आपके अंदर प्यार होना बहुत जरूरी है।
0: सबसे बड़ी बात है कि आप प्यार दें, सम्मान दें, विश्वास दें, है ना। और इसके अलावा मजबूत रिश्ते सुखी और संतुष्टिपूर्ण जीवन की आधारशिला माने जाते हैं। चाहे अगर हम व्यक्तिगत बात करें जैसा कि आपने कहा, या व्यवसायिक स्तर पर बात करें, अगर हमारे व्यवहार में कड़वाहट है तो कोई भी हमें पसंद नहीं करेगा।
1: अब देखो ना, हमारे सुनने वालों का एक संदेश मैं पढ़कर सुनाती हूँ। ये लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल और संतुष्ट जीवन का वास्तविक आधार है। मजबूत रिश्ते जीवन में भावनात्मक सुरक्षा, मानसिक शांति, कठिन परिस्थितियों में संबल प्रदान करते हैं। अकेले कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। सार्थक और गहरे संबंध ही जीवन को सही मायने में खुशहाल बनाते हैं। सफल जीवन में मजबूत रिश्तों की मानसिक चुनौतियां और उतार चढ़ाव के समय परिवार दोस्तों के साथ तनाव करने में मदद करता है। अच्छे रिश्ते आपको नई सीख, दृष्टिकोण और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं और आपके व्यक्तिगत रूप से आपको बेहतर बनाते हैं।
0: बिल्कुल। वही एक श्रोता ये भी लिखते हैं चंचल कि रिश्ते जो हैं जीवन की सबसे अनमोल पूंजी होते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा जीवन को सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन सच्ची खुशी और मानसिक संतोष रिश्तों की मजबूती से ही प्राप्त होता है। परिवार हो, मित्र हो, समाज हो, इनसे जुड़े जो रिश्ते हैं वो हमारे जीवन को प्रेम देते हैं, विश्वास देते हैं और अपनत्व से भर भी देते हैं। तो ये जो रिश्ते हैं हमें कठिन समय में संबल देते हैं और सफलता के क्षणों को और अधिक आनंदमय बना देते हैं। इसलिए रिश्तों को समय दें, उन्हें सम्मान दें, प्रेम से सींचे, क्योंकि रिश्तों की मजबूती ही सफल और सुखी जीवन का सच्चा आधार होती है।
1: और भाई बातें तो भी बहुत सारी करनी है, संदेश भी पढ़ने हैं, लेकिन साथ में गीत सुनते हुए आगे बढ़ते हैं।
0: चलिए

0: तो देखा आपने कितनी इल्तिजा कर रही थी कि दूरी मत होना, दूर नहीं होना, और ये रिश्ते हमें निभाने हैं, है ना।
1: और रिश्तों में ही तो कई बार हम प्यार से सोना वगैरह भी कहते हैं।
0: वही मैं कहने वाली थी, कितना प्यार से हम किसी को कहते हैं ओह मेरे सोना रे, है ना, ये प्यार है। और ये रिश्ता बना रहे उसके लिए हम इस तरह का भाव रखते हैं मन में। तो एक श्रोता लिखते हैं चंचल की, रिश्तों की मजबूती किसी इमारत की नींव की तरह होती है, जो दिखती तो नहीं है पर सब कुछ उसी पर टिका होता है। रिश्तों में संवाद के दौरान बोलने से ज्यादा सुनने पर फोकस करना पड़ता है, तर्क वितर्क करने पर बहस की स्थिति बन जाती है। जबरन अपनी बात मनवा लेना किसी रिश्ते की जीत नहीं होती, वो बात अपनी पसंद दूसरे पर थोपना भी नहीं होता। रिश्तों में बहुत सी गलतफहमियां बन जाती हैं जो चुप्पी से लंबे समय तक रह सकती हैं, उन्हें आपसी बातचीत और सहमति से हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी में सामने वाले की अच्छाइयों के साथ कुछ छोटी छोटी कमियां भी होती हैं, उसे स्वीकार करें, माफी मांग लेना, माफ कर देना, वो ज्यादा अच्छा होता है।
1: और यही बात हमारे एक श्रोता ने पहले भी लिखी थी, जो जैसा है वैसे अगर उसे स्वीकार कर लिया जाए तो रिश्तों में कहीं कोई बनावट नहीं होती या कहते हैं कि तनाव नहीं रहता। ये चीजें बड़ी जरूरी होती हैं। इसी तरह से हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि भाई मेरे जीवन का आधार मेरी धर्मपत्नी है और उनके आने से दो कलियां मेरे जीवन में खिली, और पैरालिसिस होने पर भी उन्होंने मेरा सारा साथ दिया और सहारा बनकर पूरे परिवार को संभाल लिया। आज उसी वजह से मैं स्वस्थ हो सका हूं। और इसीलिए कहते हैं कि सही समय में जीवन साथी बनी वो मेरी और

0: का वो आधार है।
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: बात
1: है,
0: है,
1: बहुत सुंदर बहुत सुंदर। और इसके लिए हम आपने जो आपकी धर्म पत्नी है उन्हें सैल्यूट करते हैं
0: जी
1: कि उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मजबूत रिश्ते एक सुखी और सफल जीवन गहरे में और आत्मीय संबंध जीवन के तनाव को कम करते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। जहाँ एक ओर अकेला व्यक्ति संघर्षों में टूट जाता है, वहीं मजबूत पारिवारिक और सामाजिक संबंध उसे चट्टान जैसा सहारा देते हैं।
0: क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये चट्टान और मजबूत होगी अगर आप उसे प्यार से हमेशा सींचते रहेंगे।
1: बिल्कुल
0: इसी तरह से हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि रिश्तों की मजबूती हमारे लापरवाह होने पर कमजोर पड़ जाती है। मैं स्वयं के अनुभव से ये बता रहा हूँ कि नौकरी में रहते हुए हम कभी बच्चों पर ध्यान ही नहीं दे पाए, माँ के संरक्षण में ही रहे तो सब अपने मन के हो गए। जब घर आते तो सब सामान्य दिखते थे लेकिन करते वो अपने मन की थे। एक ने तो बीए तक कर लिया, जूनियर हाई स्कूल खत्म कर दिया है उसने, दूसरे ने, और आज बुढ़ापे में घर में पड़े उन दिनों की ढिलाई का परिणाम हम भुगत रहे हैं। अनुशासन जब सिखाना चाहिए था जब सिखाया नहीं गया, और अब वो सब अपने अपने परिवार में मस्त हैं। पत्नी रही नहीं तो अब सब होते हुए भी सारे रिश्ते बेमानी से लगते हैं और बस मुश्किल के दिन उनके गुजर रहे हैं। तो कई बार हमने जब अगर रिश्तों पर हम ध्यान नहीं दे पाते तो सिर्फ ये अफसोस और काश हमारे जीवन में रह जाते हैं। इसीलिए समय पर वो बच्चों को जो हम कहते हैं संस्कार देना, या बच्चे जो है ना हमारे व्यवहार से ही सीखते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो सबसे अच्छा तरीका यही है आप अपने व्यवहार में वो सारी अच्छाई या
1: बच्चों को दें,
0: जी
1: बिल्कुल, ताकि बच्चे भी बड़े होकर वही आपको दें, है ना।
0: जी
1: ये तो है ही कि टिट फॉर टैट होता ही है। अगर आपने अपने माता पिता को दुख दिया है तो आपके बच्चे भी फिर आपको बड़े होकर दुखी देंगे, ऐसा माना जाता है। क्योंकि
0: जी
1: उन्होंने जो देखा है वही उनके मन में, उनके जो बीज है भीतर वही तो
0: हाँ
1: उत्पन्न हुआ है ना, वही फलता फूलता है। इसलिए हमेशा खुद को, जब तक हम एक प्रेरणा का स्रोत नहीं बनाएंगे, बच्चों के लिए आइडियल नहीं बनेंगे, बच्चे भी नहीं बन पाएंगे। एक श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों की मजबूती सफल जीवन का सबसे प्रमुख आधार है। ये भरोसा, सम्मान और त्याग के धागों से बंधा होता है, जो न केवल व्यक्तिगत खुशी लाता है बल्कि कड़े समय में भावनात्मक संबल भी प्रदान करता है। गहरा और सच्चा रिश्ता ही सफलता का सफर है, असली प्रेरणा है। समर्पण और प्रेम से सींचा जाना चाहिए सफल जीवन के रिश्तों का महत्व। भावनात्मक स्थिरता, मजबूत रिश्ते तनाव कम करते हैं और मानसिक शांति हमें प्रदान करते हैं। वहीं वो कहते हैं साथ ही कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए कुछ सूत्र है, विश्वास, ईमानदारी, जिससे कि हमारे रिश्ते जो है टिके रहते हैं। संवाद, मधुर संवाद होने चाहिए। त्याग और स्वीकृति की भावना होनी चाहिए। एक दूसरे को समय देना चाहिए, समय निकालना चाहिए। अहंकार और अक्कड़ रिश्तों के लिए सबसे बड़े बाधक होते हैं, जो व्यक्ति को अकेला कर देते हैं। और सच्चा वैवाहिक जो जीवन है तभी सफल होता है जब आप दोनों मिलकर रहते हैं।
0: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते अगर मजबूत हैं तो जीवन सफल होता है। अगर हमारे जीवन में रिश्ते हमने नहीं कमाए तो समझिए कि काम जीवन कुछ भी काम नहीं आया और वो रिश्ते सफल नहीं होंगे। इसीलिए अपने रिश्ते अगर हम मजबूत रखेंगे तो किसी भी जरूरत के समय वो हमें उनसे मदद मिलेगी, और वो आपके अगर साथ होंगे तो यही आपकी सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। और आगे छोटा सा संदेश है हमारे श्रोता का, हम भी रिश्ते निभाते हैं और बनाते भी हैं, और ये हमें बहुत अच्छा लगता है, हम परिवार में ही रहते हैं।
1: बिल्कुल, तो अब एक गीत सुन लिया जाए।
0: जी

0: हाँ चंचल, देखिए जीवन से भरी जब आंखें होती हैं ना, तो आपके व्यक्तित्व पे चार चांद लगा देती हैं, है ना। और ऐसे में जब महिलाएं खास तौर से खूबसूरत साड़ियां पहनती हैं, तो फिर उनको तो देखते मन ही भरता नहीं है कि क्या बात है।
1: और आपने बात की भाई किसी खास मौके की, तो शादी एक ऐसा मौका होता है ना जब हमें अपना कल्चर उसे दिखाने का और उसमें लुत्फ उठाने का जब मौका मिलता है, तो उसे महिलाएं खासतौर पे बिल्कुल गंवाना नहीं चाहती। शादियों में रीति रिवाज के अलावा सबसे ज्यादा खास होता है पारंपरिक खाना और पारंपरिक
0: पहनावा।
1: पहनावा।
0: और शादी किसी भी लड़की के लिए उसके जीवन के सबसे खास मौकों में से तो एक होता ही है। दूल्हा दुल्हन के कल्चर और रीति रिवाज शादी के मौके को और भी खास बना देते हैं। हर जगह का अपना कल्चर होता है, अपने नियम होते हैं और उनका अपना खास महत्व भी होता
1: तो
0: है।
1: आज हम गुजरात के कल्चर की एक खास साड़ी के बारे में बात कर रहे हैं मंदाकिनी जी, और जिसे कोई लड़की शादी में पहनकर अपने जो भी उसके लुक्स हैं उसे वो और भी ज्यादा निखार सकती है, यानी कि हम बात कर रहे हैं घरचोला साड़ी की।
0: क्या बात है, घटचोला साड़ी इतनी सुंदर लगती है चंचल
1: जी
0: कि पूछो मत। तो घटचोला साड़ियां गुजराती शादियों का बहुत खास हिस्सा है और इन्हें जो खास दुल्हन की साड़ी के रूप में चुना जाता है। घटचोला साड़ी के चेकर्ड ग्रिड में प्रत्येक वर्ग दुल्हन और उसके वैवाहिक घर के लिए आशीर्वाद का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा माना जाता है।
1: और ये दुल्हन की सुंदरता में चार चांद लगा देती है, तो वहीं इस साड़ी की जो खूबसूरती है और इसकी तरह ही इसका मतलब भी बड़ा खास होता है। घट चोला यानी कि नाम में दो गुजराती शब्दों को मिलाया गया है, घर
0: घर
1: जिसका मतलब होता है
0: घर
1: और चोला इसका मतलब है कि
0: पोशाक।
1: पोशाक, और दुल्हन अपने पैतृक घर से यानी कि पिता के घर से वैवाहिक घर में जाने को इस चीज के बारे में दर्शाया जाता है। इसका मतलब होता है कि दुल्हन का नया घर और उस चोले को पहनकर ये लड़की उस नए घर में प्रवेश
0: प्रवेश
1: करती।
0: करती है, बिल्कुल बहुत सुंदर तरीके से इस बात को रखा गया है। और वैसे तो घटचोला एक साड़ी होती है, लेकिन आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता है।
1: और देखिए ना, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि एक छोटे से अंतराल का समय हो गया है। बातें हम
0: बिल्कुल
1: जारी रखेंगे, लेते हैं अंतराल।

0: खूब इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसे दुल्हन अपने सिर पर ओढ़ती है और ये कॉटन या सिल्क से बना होता है, जिस पर जरी का काम किया जाता है। घटचोला साड़ियों में पारंपरिक रूप से जरी की बुनाई के साथ चेकर्ड ग्रिड डिजाइन होता है और अक्सर मोर, कमल, फूल पत्तियां जैसे शुभ चिन्ह भरे होते हैं।
1: जब आपने दुपट्टे का जिक्र किया तो मुझे याद आया, सिर्फ महिलाएं ही नहीं पहनकर सचती संवरती, जब कुर्ता पायजामा मर्द पहनते हैं तो जो हमारे पुरुष साथी है ना, वो भी घटचोला का दुपट्टा लेना बड़ा पसंद
0: में रख लेते हैं वो
1: जी।
0: हाँ।
1: और हम बात कर रहे थे साड़ी की, जो आपने बताया चेकर डिजाइन होते हैं, फूल पत्तियों के चिन्ह होते हैं इस पर, और क्योंकि ये एक पारंपरिक विवाह में पहने जाने वाली साड़ी है तो इसमें वर्गों की जो संख्या है अनुष्ठानिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। वर्गों की संख्या 9, 12, 92 के गुणांक में होती है और ये पहले कपास से बनी होती थी लेकिन अब रेशम का भी इसमें उपयोग किया जाने लगा है।
0: हाँ, हालांकि घटचोला साड़ी में क्या है कि बांधनी साड़ियों की जैसा मिश्रण होता है चंचल, जिसमें घटचोला के जरी ग्रिड पैटर्न के भीतर बांधनी टाई डाई को शामिल भी किया गया है।
1: घटचोला बनाने की शुरुआत गुजरात के खंबात जिले में हुई थी और तब से लेकर आज तक गुजरात में साड़ियों, ये जो साड़ी है वो शादियों में बहुत अहम हिस्सा मानी जाती है। इस साड़ी की सबसे खास पहचान है ग्रिड पैटर्न और ये साड़ियां पारंपरिक रूप से विवाह जैसे खास अवसरों पर ही पहनी जाती हैं। इन साड़ियों में गुजरात की पारंपरिक खास साड़ी है ये, खास तौर पर जामनगर, राजकोट इलाकों में इनका बहुत ही ज्यादा चलन देखने मिलता है।
0: बिल्कुल, और सास की तरफ से बहू को जब आशीर्वाद दिया जाता है ना, तो घटचोला दूल्हे के परिवार की तरफ से दिया जाता है, जिसे ओढ़कर दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है और ये नए परिवार की स्वीकृति और आशीर्वाद का प्रतीक भी होता है। और जब दुल्हन अपने नए घर में स्वागत के लिए पानेत्र साड़ी के ऊपर जो है घटचोला साड़ी डालती है, तो इस बात का प्रतीक माना जाता है कि शादी के बाद दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन का हमेशा ख्याल रखेंगे।
1: इनमें से बहुत सारी बातें हमारे श्रोताओं ने भी हम तक लिखकर पहुंचाई हैं, उन्हें हम धन्यवाद कहते हैं। और घटचोला जो है वो दुल्हन को अपने सिर और कंधे दोनों पर वो ओढ़कर आती है, जिसे फेरों के समय दूल्हे को के दुपट्टे के साथ में बांध दिया जाता है। ये पति पत्नी के अटूट संबंध और इस जोड़े के बीच के पवित्र रिश्ते और उसकी मजबूती को दर्शाता है, इसलिए भी शादी में इस साड़ी का बहुत
0: महत्व होता है। बिल्कुल, और घटचोला साड़ी एक सदाबहार फैशन है जो कभी फैशन से बाहर नहीं जाता। इसे शादी के अलावा आप दूसरे फंक्शंस में भी पहन सकते हैं। देखा है बहुत सारी महिलाओं को चाव से पहनकर जाती हैं, ज्यादातर लाल है, गुलाबी है, हरा है, पीला है, ये रंग इसमें बेहद खास लुक देता है। और इसके दुपट्टे को लहंगे के साथ भी अलग अलग स्टाइल तरीके से, स्टाइलिश तरीके से हम पहन सकते हैं, जो खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं।
1: तो भाई कुछ गाने भी सदाबहार होते हैं साड़ियों की तरह, सुन ले।
0: बिल्कुल, जो हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगा देते हैं।

0: विविध भारती पर इस समय चल रहा है कार्यक्रम सखी सहेली। मैं हूँ आपके साथ चंचल वर्मा।
1: और मैं हूँ आपके साथ मंदाकिनी जोशी।
0: बात कर रहे थे हम साड़ी की।
1: बिल्कुल, साड़ियों की बात हो और हम भूल जाएं, ऐसा कभी होता है चंचल? तो हम बात कर रहे थे कि आजकल शादियों में इसके दुपट्टे का भी

0: कुछ तुम कहो और कुछ हम कहें, यानी बात हम करेंगे अब विश्व साइकिल दिवस की। कुछ हम कहेंगे, कुछ हमारे श्रोता तो कह रहे, कुछ नहीं बहुत कुछ कह रहे
1: कहेंगे
0: हैं।
1: बिल्कुल ही, इतना प्यारा विषय है साइकिल, हमारा इतना प्यारा एक ऐसा
0: याद है
1: याद, हमारा अभिन्न मित्र हुआ करता था एक जमाने में, जब हमें
0: जी।
1: पहली साइकिल मिली थी तो आज भी भुलाई नहीं भूलती।
0: और 3 जून को ये दिन हम मनाते हैं, और इसका उद्देश्य है लोगों को साइकिल चलाने से जो लाभ होते हैं उसके बारे में जागरूक करना। और ये दिन इसलिए भी खास है मंदाकिनी जी, क्योंकि साइकिल एक ऐसा परिवहन साधन है जो वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद करता है और पर्यावरण को भी बचाने में मदद करता है।
1: बहुत बड़ी बात। और ये परिवहन का एक सबसे सस्ता, सरल और टिकाऊ और सुलभ साधन है चंचल। इसे हर वर्ग के लोग आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन दिनों साइकिलिंग को एक स्वस्थ और किफायती परिवहन विकल्प के रूप में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। साइकिल चलाना सामाजिक समावेशन और शांति की संस्कृति को बढ़ावा भी देता है।
0: विश्व साइकिल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अप्रैल 2018 में मनाने की घोषणा की थी, और ये दिन साइकिल के महत्व पर बहुत सारी बातें हमें बताता है। और हम सब भली भांति इस बात को समझते हैं कि साइकिल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है, और पर्यावरण के नजरिए से भी अच्छा कदम है, ये हम बता ही चुके
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल सही बात। और इस दिन का समर्थन करने वाले भी मानते हैं कि साइकिल का उपयोग विकास को बढ़ावा देना, बच्चों और युवाओं के लिए शरीर को मजबूत करना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और बीमारियों की रोकथाम करने के साधन का एक साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
0: अब देखो ना, हमारे जो साथी हैं वो क्या लिख रहे हैं। साइकिल कभी मध्यम वर्गीय परिवार की आन बान शान हुआ करती थी। जो साइकिल चलाता था या जिसके दरवाजे पर साइकिल होती थी, समझिए कि वो समाज में एक सम्मानित व्यक्ति हुआ करता था। और
1: बिल्कुल
0: इसी तरह कहानी में कोर्स की किताब भी पढ़ी है हमने। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा साइकिल की सवारी के लेखक सुदर्शन हैं पंडित बद्रीनाथ भट्ट। इन प्रेरणादायक कहानी में आदर्शवादी संदेश होता था, और ये कहानी हास्य से भरपूर है। इसमें लेखक साइकिल सीखने की प्रबल इच्छा और इसके दौरान उनके द्वारा किए गए मजेदार प्रयासों के बारे में वर्णन करता है। तो अगर किसी ने ये कहानी नहीं पढ़ी है तो
1: उसे
0: जरूर
1: पढ़नी चाहिए,
0: पढ़िए।
1: बहुत सुंदर जिक्र किया है इन्होंने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब मैंने पहली बार साइकिल पर कदम रखा तो मेरे मन में धुकधुकी थी, कहीं मैं गिर न जाऊं। संतुलन बनाने की कोशिश में शुरुआती कुछ पलों में हैंडल कांप रहा था और मुझे पैडल मारने में डर लग रहा था। कुछ बार लड़खड़ाने और गिरने के बाद मैंने संतुलन बनाना सीखा। हवा का एहसास जैसे ही मैंने पैडल पर पूरी ताकत लगाई और साइकिल आगे बढ़ी तो चेहरे पर ठंडी हवा का सुखद एहसास था।
0: और हमारे एक अन्य श्रोता का संदेश है कि जब मैंने पहली बार पापा को साइकिल के लिए कहा तो उसके 2 साल बाद मेरी साइकिल आई। यानी कि पहले के माता पिता भी ऐसे होते थे कि तुरंत आपकी फरमाइशें पूरी नहीं करते थे,
1: बिल्कुल
0: सही समय आने पर ही वो ला कर देते थे।
1: बिल्कुल
0: आगे इन्होंने लिखा है कि जब भी पापा से पूछो कब आएगी तो वो कहते एक टायर बन रहा है, फिर कहते हैंडल बन रहा है, फिर कभी कहते कि सीट बन रही है, और इस तरह उन्होंने 2 साल
1: निकाल
0: दिए।
1: कितनी अच्छी बात है। और वहीं आजकल के माता पिता 2 मिनट भी नहीं लगाते, अगर बच्चे ने कह दिया मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, तो 2 मिनट में आ जाता है। एक श्रोता लिखते हैं कि साइकिल की बात चली है तो आपको बता दूं, 1999 में कक्षा 10वीं पास करने पर मेरे को मिली थी, उसकी खुशी मैं बयां नहीं कर सकता। और आज दो दो दुपहिया वाहन है, किंतु साइकिल की बात कुछ और ही है। मेरी वो साइकिल आज भी मैंने संभाल कर रखी है। मैं चली देखो प्यार की गली, ऐसा ये गाना भी सुनना चाहते थे।
0: और भाई ये गाना नहीं सुना कि गाना कोई दूसरा सुनवा दे, गाने सभी अच्छे हैं।
1: बिल्कुल।
0: और संदेश बताइए क्या है।
1: ये लिखते हैं कि एक अन्य श्रोता कि दोपहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल तब चला सकते हो जब आप साइकिल चलाना सीख गए हो। मतलब दोपहिया वाहन चलाने से पहले साइकिल चलाना आना जरूरी है। भाई वो तो बेस है आपका, है ना, वो तो सबसे पहले आप नहीं सीखेंगे तो उसके बाद दूसरी चीजों पर जब आप

0: हाथ साफ करेंगे तो आपको डर लगेगा, आप सीख ही नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात भी होती है चंचल कि साइकिल चलाने के साथ घुटने टूटने का जो है ना, घुटनों में चोट लगने का जो एक सबसे बड़ा नजर आता है, वो उसके लिए तैयार रहना चाहिए।
1: एक और बात बहुत सारे श्रोताओं ने लिखकर भेजी है कि नियमित साइकिल चलाने से हृदय, फेफड़े, मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है और इसी वजह से हृदय संबंधी बीमारियां, मोटापा, गठिया, मधुमेह, कैंसर, बहुत सारी बीमारियों के खतरे को हम कम कर सकते हैं। साइकिलिंग तनाव को भी कम करती है और मानसिक कल्याण को भी बढ़ावा देने में ये सहायक है। तो चले अब गाना सुन ले।
0: नहीं, एक मेरे पास बहुत अच्छा मैसेज आया है,
1: तो पढ़िए ना।
0: हाँ, ये लिखते हैं कि मेरे लड़के ने पूरी पढ़ाई साइकिल कॉलेज लेकर जाकर की है और इस साल फाइनल पढ़ाई होगी, अभी भी वो साइकिल चलाता है।
1: क्या बात है।

0: हाँ तो चंचल, वक्त तो तब गुजरेगा ना जब आप वक्त का ध्यान रखेंगे। और कैसे ध्यान रखेंगे कि आपके पास घड़ी होगी। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि हम लोग जब हाई स्कूल पास करते थे तो लड़कियों को हाथ की घड़ी दिया करते थे हमारे माता पिता, और हम लड़कों को साइकिल मिला करती थी।
1: तो भाई ये भी एक तरह का नियोजन है, यानी कि प्लानिंग है।
0: हाँ।
1: कि लड़कियों को क्या देना है, लड़कों को क्या देना है। उस समय पहले की अगर बात जब चल रही है ना, तो लड़कियों को भाई वाहन चलाते समय कहीं गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, उन्हें थोड़ा नाजुक समझकर इस तरह के उपहार नहीं दिए जाते थे। और लड़कों को क्योंकि बाहर जाकर ही सारे काम करने हैं,
0: इसलिए उन्हें साइकिल दे दी जाती थी। लेकिन
1: दोपहिया वाहन या मोटरसाइकिल का इतना फैशन नहीं था।
0: हाँ, आज उल्टा है चंचल। आज लड़कियों को कमजोर नहीं मानते हमारे माता पिता भी, और उन्हें यहाँ तक की चार पहियों वाली गाड़ी भी दिलाने में कोई परहेज नहीं करते हैं।
1: और बिल्कुल इस बात का नियोजन भी अब सब माँ बाप करते हैं। और नियोजन पर ही बात हो रही है। नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना या फिर प्लानिंग करना। और दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया है शब्द, मतलब बहुत सारे शब्द इसमें।

0: इसके जो अन्य शब्द हैं, योजना, आयोजन, प्रबंध, व्यवस्था, रूपरेखा या फिर रणनीति,
1: इस अर्थों में भी इनको समझा जा सकता है, इन शब्दों से भी। और नियोजन एक प्रबंधन प्रक्रिया है जिसमें भविष्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक यानी जरूरी कार्यों और संसाधनों का निर्धारण किया जाता है, और ये प्रक्रिया लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करती है।
0: बिल्कुल, नियोजन में की जो प्रक्रिया है बहुत सारे चरण शामिल होते हैं, जिसमें विकल्पों का मूल्यांकन, योजना का चयन, उसका क्रियान्वयन और नियोजन में भविष्य में आने वाले जो भी जोखिम है या अनिश्चितताएं हैं उनका पहले से ही एक अनुमान निकालकर क्या समाधान हो सकता है, इसकी तैयारी की जाती है।
1: बिल्कुल, और नियोजन में किसी भी पूर्व निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की एक रूपरेखा तैयार की जाती है। इसे हम यूं भी समझ सकते हैं कि ये निर्णय लेने की एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो तय करती है कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है।
0: इसीलिए हमारे श्रोता लिखकर हमें बता रहे हैं कि नियोजन प्लानिंग का सामान्य अर्थ योजना बनाना है। ये किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने की बौद्धिक प्रक्रिया होती है। इसमें यह तय किया जाता है कि काम कब करें, कैसे करें, कहां करें, किसके द्वारा किया जाएगा और उपलब्ध साधन का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित कर लेना ताकि जो लक्ष्य है उस तक आसानी से पहुंचा जा सके। ये सब वैसा ही है जैसा हम अपने घर का बजट बनाया करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा, और अगर सरल शब्दों में हम इसे समझें तो वर्तमान और भविष्य के बीच की खाई को कम करना भी नियोजन है, और ये तय करना कि आने वाले समय में हमें किस दिशा में काम करना है। किसी स्पष्ट लक्ष्य को ध्यान में रखकर जो योजना बनाई जाती है वही नियोजन है, और ये योजना वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के अनुमानों के आधार पर बनाई जाती है।
0: और बिल्कुल मंदाकिनी जी, समय, धन, उपलब्ध संसाधन, इन सब का बेहतर उपयोग भी जिस तरह से किया जाएगा ये नियोजन ही बताता है हमें। जब हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं तो उनमें से किसी सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना भी नियोजन का मुख्य हिस्सा होता है।
1: और नियोजन का यानी जो है विभिन्न तरीकों में से जो सबसे उपयुक्त और प्रभावी मार्ग का चयन करना वही नियोजन कहलाता है।
0: तो ये भी एक नियोजन है ना कि बातों के बाद गाना सुनवाना है।

0: बहुत सुंदर गीत था
1: बहुत सुंदर गीत था, और सुनने के बाद एक मन में अलग सा
0: जी
1: नशा आ गया है।
0: जी
1: और चंचल, हम बात कर रहे थे ना कि भाई आजकल गर्मी का मौसम है, क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या सब्जी बनाएं, क्योंकि महिलाओं की खास तौर से ये सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो
0: और वो इसलिए
1: हमारे
0: होती है क्योंकि बच्चे बड़े चूजी होते हैं, वो बहुत सारी सब्जियां खाने के लिए मना कर देते हैं। जब भी उन्हें बोलो टिंडे की सब्जी बनेगी तो उनका मुंह बन जाता है, लौकी बनाओ तो उसे वो खाना पसंद नहीं करते। तो कितने कितने जतन करती हैं महिलाएं कि वो सब्जियां उनको
1: खिला
0: उन
1: दी जाए
0: हाँ
1: किसी भी तरह से,
0: ताकि उनका पोषण मिले।
1: लेकिन तुम मुझे माफ करना, बच्चों को तुम बहुत ज्यादा बदनाम कर रही हो, है ना। देखा जाए तो हमारी सखियों में से भी कुछ सखियां ऐसी हैं जो हर तरह की सब्जी खाना पसंद नहीं करती हैं।
0: तो भाई ऐसे में बहुत अच्छा आपके पास एक विकल्प है कि बेसन की तरह तरह की सब्जियां बना सकती हैं। उसके लिए बेसन, सिंधी बेसन की टिक्कियों की सब्जी, इसके बारे में हमारे श्रोता ने लिखकर बताया है कि इसके लिए सबसे पहले बेसन को कम पानी से टिक्कियां बनाना है। इसमें अनारदाना और हरा धनिया भी डालते हैं। फिर तवे पर बहुत कम तेल में इनको सेका जाता है। प्याज लहसुन अपनी इच्छा के अनुसार, अदरक हरी मिर्च, इन सबको डालकर आप पेस्ट बना लीजिए। एक अच्छी स्वादिष्ट सी ग्रेवी बनाना है, उसमें नमक लाल मिर्च स्वाद के अनुसार डाल लीजिए। आप अन्य मसाले भी स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। थोड़ा गरम मसाला डालकर बेसन की टिक्कियों को डालकर थोड़ी सी आंच पर इसे पकाना है और सिंधी बेसन की टिक्कियों वाली सब्जी तैयार हो जाती है।
1: बहुत स्वादिष्ट सब्जी होती है ये। हमारी एक सहेली थी, वो सिंधी थी, उनके यहाँ मैंने ये सब्जी खाई भी है।
0: जी
1: हाँ, वही एक श्रोता लिखती है कि बेसन की चीले वाली सब्जी, क्या बात है। बेसन को नमक, हल्दी, अदरक, मिर्ची का पेस्ट के साथ चीले की तरह घोल लें और तवा पर चिली को सेक लें, मतलब चिली को सेक लें, इस दोनों तरफ से फोल्ड कर लें, फिर इन्हें चाकू से काट के टुकड़े के रूप में बना लें। ग्रेवी के लिए धनिया पाउडर पिसा हुआ, पीला सरसों, लहसुन, जीरा, मिर्च, इन सभी को बारीक पीस लें। कड़ाही में तेल डालें, राई का तड़का दें, बारीक कटा प्याज भून लें, पिसें पिसे हुए टमाटर डाल दें, मतलब अगर आपने टमाटर को भी पीस लिया है। साथ ही मसाले, जो भुने हुए मसाले हैं, उनकी ग्रेवी तैयार होने पर बेसन के टुकड़ों को डाल दें, 5 मिनट तक इसे पकाएं। स्वादिष्ट जो है सब्जी आपकी तैयार है, और बहुत सारे लोग इसे शाकाहारी मछली भी बोलते हैं।
0: क्या बात है। तो चलिए अब एक गीत सुन लेते हैं।

0: हाँ तो जन जल रहे ना रहे हम यूं ही महकते रहेंगे और ये कार्यक्रम
1: जी
0: यूं ही चलता रहेगा। और अब ही सखी सहेली से हमें इजाजत लेनी होगी क्योंकि
1: जी
0: वक्त हमें और इजाजत नहीं दे रहा है।
1: जी तो
0: तो कार्यक्रम
1: चलिए
0: समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी
1: और
0: और
1: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। अभी तक आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के संदेश।
2: मैं अर्चना वर्मा, महापौर शाहजहांपुर। आकाशवाणी बरेली को 90 वर्ष पूर्ण होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देती हूँ।
3: आकाशवाणी को 90 साल हो गए और 90 साल में आकाशवाणी ने जो देश की सेवा की है वो अपने आप में एक स्मरणीय है। आकाशवाणी के स्वास्थ्य कार्यक्रम, मनोरंजन कार्यक्रम, न्यूज, बच्चों के खेल के, लोगों को टेक्निकल एजुकेशन देने के लिए, एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए।

0: जितने कार्यक्रम आते हैं उसमें मैं यहाँ के जो कंपेयर करने वाले हैं या उद्घोषणा करने वाले हैं वो बड़ी मेहनत से काम करते हैं। मैं आकाशवाणी में कार्य करने वाले सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ।
1: मेरा नाम मनोहर लाल मंडलपुरी, श्रम सेवा एवं राज्य मंत्री हूँ। आपके आकाशवाणी बरेली में जो 90 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। पूरे देश में आपका नाम रोशन हो, धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दीवाने में आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों के संदेश। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
3: नमस्कार,
2: आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
3: यस सर, वंदे मातरम।
2: वंदे मातरम, कौन बोल रहे हैं?
3: मैं बनिया पारा धमतरी छत्तीसगढ़ राज्य से बोल रहा हूँ सर, रामचंद्र मखीजा काफिर भाई। आज का विषय है शुभकामनाएं, दुआ बद्दुआ पर है ना सर?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: तो मेरा यही कहना है, जिस तरह से सूर्य में तपत है, चंद्रमा में ठंडकता है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में दुआएं और बद्दुआएं काम करती हैं, क्योंकि ये हमारे मना स्थिति के ऊपर रहता है
2: जी।
3: और दूसरी बात, सकारात्मक सोच जो है वो हमारे को ऊर्जा प्रदान करती है, शक्ति प्रदान करती है। माँ की दुआ हमारे लिए रक्षक कवच रहती है और हम मंदिरों मस्जिदों में जाते हैं ताकि हमारे मन की शुद्धि हो। तो दुआओं का असर और बदुआओं का असर हमारे जीवन में पड़ता है।
2: हाँ, किसी गरीब को ना सताना चाहिए और किसी का शोषण नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसकी बदुआएं भी हमारे जो है ना बड़ी बड़ी सल्तनतों को खा गई है।
3: हाँ हाँ, दुआ बद्दुआ ऐसी चीज है कि उसमें राजा रंक, रंक से राजा, राजा से रंक हो जाता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
3: और ऐसा नहीं कि भाई हम इंसान ही हैं, जो निर्जीव प्राणी है उनके में भी आत्मा है, जीव है, उनकी भी हमको नजर भी एक प्रकार की बद्दुआ है, नजर और लगना वगैरह भी।
2: ठीक है, आज आपने फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे?
3: हाँ सर, आज आप सुनिएगा, दुआ बद्दुआ दे ये मुमकिन नहीं, मेरे दोस्त तू क्या दे ये मुमकिन नहीं, बस हक दोस्ती का अदा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। इसको सुनाएंगे सर, यारा ने फिल्म का है।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
2: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ, कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
4: जी मैं मेघा बात कर रही हूँ, बरेली से।
3: मेघा क्या करती हैं आप?
4: जी मैं पढ़ाई करती हूँ।
3: अच्छा, आज का विषय पता है आपको?
4: जी मुझे आज का विषय पता है कि दुआओं से रिलेटेड है कुछ।
3: क्या शुभकामनाएं और बद्दुआएं हमारे जीवन पर असर डालती हैं?
4: जी मैं इस टॉपिक पे यही कहना चाहूंगी कि दुआएं भी लगती हैं और किसी किसी के तो बद्दुआएं भी लग जाती हैं।
3: हाँ, अच्छे काम करें आप, जो बाद इंसान खुश हो जाता है। माँ बाप हो या बड़े भाई बहन हो, वो खुश हो जाते हैं, मन से दुआ दें। या कोई फकीर हो, को मन से दुआ दे, तो आपके जो है ना जिंदगी के सारे काम बिगड़ते भी बनते चले जाते हैं।
4: कोई दिल से दुआ दे तो वो जरूर लगेगी।
3: हाँ, और अगर कोई बहुत दुखी दिल से बद्दुआ दे दे तो आपके बनते बनते काम बिगड़ने लगते।
4: इसीलिए किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए, क्योंकि किसी का दिल दुखाने से बदबू जल्दी लग जाती है।
3: आज आपने फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगी, कौन सी फिल्म का?
4: मैं हेलो ब्रदर मूवी का सुनना चाहूंगी, वो मैंने क्यों प्यार किया, ये दिल बेकरार किया।
3: ठीक है, हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: जी, प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: अच्छा, ये बताइए, आज का विषय पता है आपको?
1: जी मैंने आज पहली बार कॉल लगाया है सर।
0: आज का विषय है क्या शुभकामनाओं और बद्दुआओं का हमारे जीवन पर असर पड़ता है।
1: जी बिल्कुल सर, अगर हमारे साथ में अगर कुछ ऐसा गलत होता है और कहते हैं कि अगर हमें शुभकामनाएं मिलती है तो कहीं अगर किसी की बद्दुआ भी लगती है तो मैं तो इस बात को मानता हूं, क्योंकि अगर हम अच्छे कार्य के लिए किसी को शुभकामना देते हैं तो शुभकामना मिलती है हमें, और अगर कोई हमारे साथ में अगर कुछ गलत करता है या फिर हमें कुछ गलत बात बोलता है तो उसका भी तो परिणाम हमें मिलता ही मिलता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सब शुभकामनाएं हमारे जीवन में बहुत सहजता लाती हैं, और जो बद्दुआएं होती हैं, दिल से निकली बद्दुआ, किसी का आपने दिल दुखाया, किसी का शोषण किया, किसी को आपने प्रताड़ित किया, तो उसकी दिल से जो बद्दुआ निकलती है वो भी जरूर लगती है।
1: जी जैसे कि किसी की आत्मा को ठेस पहुंचती है ना सर, तो वो तो मतलब हमारे लिए गलत सोचेंगे ही सोचेंगे, तो उनके लिए भी तो ऐसा मतलब हमें नहीं करना चाहिए कि किसी की बददुआ हमें लगे।
0: तो आज आपने फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे, कौन सी फिल्म का?
1: जी सर, मेरा पहली बार फोन लगा है तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है, और मैं मोबाइल एप पे कार्यक्रम सुनता हूँ, और हमारे एक दोस्त है लोकेंद्र वर्मा उज्जैन वाले, उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पे प्रोग्राम चलता है
0: हाँ
1: तो
0: जी,
1: मैंने फोन लगाया है सर यहाँ पे।
0: आपको अच्छा लग रहा है, हमें भी आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। नए लिसनर से आपका स्वागत है आकाशवाणी बरेली की ओर से। अब ये
1: जी
0: बताइए
1: सर,
0: कि आज कौन सा
1: हाँ
0: गीत
1: सर,
0: सुनेंगे?
1: जी सर, फिल्म का नाम रहेगा धड़कन और गाने के बोले दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।
0: ठीक है, हम भेज रहे हैं आपके
1: हेलो
0: रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये गीत।

मानते हैं दुआएं और बददुआएं, यानी शुभकामनाएं और बददुआएं हमारे जीवन पर किसी न किसी रूप में प्रभाव डालती हैं, चाहे से आध्यात्मिक दृष्टि से देखें या मनोवैज्ञानिक दृष्टि से। सकारात्मक भाव और शुभचिंतन व्यक्ति को आत्मविश्वास, प्रेरणा और मानसिक शांति प्रदान करते हैं। वहीं नकारात्मक शब्द और कटु भावनाएं मन को विचलित कर सकती हैं। हालांकि किसी के जीवन की सफलता या असफलता केवल शुभकामनाओं या बददुआओं पर निर्भर नहीं होती, हमारे कर्म, प्रयास, व्यवहार और निर्णय भी उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक सुंदर विचार, दिल की निकली सच्ची दुआ अक्सर हौसला बन जाती है और अच्छे कर्म इंसान को सबसे बड़ी ढाल बन जाते हैं। जहाँ तक अनुभवों की बात है, मेरे अपने व्यक्तिगत अनुभव से ये नहीं होते, लेकिन अनेक लोग बताते हैं कि माता पिता, गुरुजनों और शुभचिंतकों की दुआओं ने कठिन समय में उन्हें मानसिक शक्ति और आगे बढ़ने की के लिए साहस दिया। इसलिए जीवन में ऐसा आचरण रखना अच्छा माना जाता है कि लोगों की दुआएं मिलें, ना कि बददुआएं। सम्मान, विनम्रता और सद्भाव से भरा व्यवहार अक्सर अच्छे संबंध और सकारात्मक वातावरण बनाता है। और ये लिखने वाले हैं दयानंद भावानी पैट सोलापुर महाराष्ट्र से, विष्णु मिस्किन, रितिका वाणी आरप, चंद्रकला काशीनाथ, गणेश संगीता आरोही प्रियांशी। और ये संदेश लिखते हैं आत्मविश्वास में वृद्धि, जब लोग हमें शुभकामनाएं देते हैं तो हमारा आत्मबल और सकारात्मकता बढ़ती है, जिससे हम कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तनाव और अपराध बोध, यदि हमें पता हो कि हमारे प्रति गलत भावना और बददुआ रख रहा है हमारे सामने वाला, तो अनजाने में हमारे भीतर डर, तनाव, अपराध बोध, गिल्टी पैदा होता है, जो हमारे स्वास्थ्य और निर्णय को प्रभावित करता है। प्लेसिवो और नोसिवो प्रभाव, चिकित्सा विज्ञान में प्लेसिवो इफेक्ट अच्छी भावनाओं से ठीक होना और नोसिवो इफेक्ट नकारात्मक विचार से बीमार महसूस करना, दुआ और बददुआ के मनोवैज्ञानिक असर को प्रमाणित करते हैं। सामाजिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से रिश्तों का ताना बाना, शुभकामनाएं, अच्छे व्यवहार और प्रेम से मिलती हैं, इससे समाज में एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनता है। सद्भावना का माहौल, दुआएं हमारे सामाजिक जीवन को सुखद बनाती हैं, जबकि बददुआएं आपसी कड़वाहट और विवादों को का परिणाम होती हैं। और ये लिखने वाले हैं जी के परमार। अब ये देखिए, इन्होंने लिखा है अगर सच्चे मन से, सच्चे दिल से दी गई दुआएं और बददुआएं बिल्कुल सीधी चोट की तरह लगती हैं, ये बात तो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में भी लिखी हुई है। दुआएं और बददुआएं दोनों ही काम करती हैं, लेकिन हमें किसी भी बददुआ नहीं लेनी, दुआएं लेनी है तो हमें अच्छे कार्य में अपना योगदान देना है। किसी का जाने अनजाने में बुरा ना करें, भला हो सके तो किसी का भला कीजिए, आपको बहुत नेक दुआएं मिलेंगी। बददुआओं से बचें भाई, वरना जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नेक कार्य करते रहिए, किसी का दिल ना दुखाएं, आपको बहुत नेक दुआएं मिलेंगी। सादुल शहर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। और ये लिखते हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। शुभकामना और बददुआओं का जीवन में शत प्रतिशत असर पड़ता है। शुभकामना से जीवन में विकास होता है और बददुआ मिलने से विनाश भी होता है। लोगों के दुख सुख में साथ दीजिए, शुभकामनाएं प्राप्त होंगी। भूलकर भी किसी के साथ बुरा बर्ताव मत कीजिए, बुरा बर्ताव करोगे बददुआएं मिलेंगी, बददुआओं का असर भी दिख पड़ता है। ये आपको जीवन में तब पता चलता है जब बुरा वक्त आता है। गांव की मिट्टी में वो ताकत है जो इंसान को अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। आर्य नगर खोका बिलाई उत्तम सिंह जंगेल, मोरज जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदिनी जंगेल। धमदा ग्राम सुकरी कला, अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि अवोशिका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। अब ये हैं हमारे लिखने वाले, और साथी हैं हमारे लिखने वाले। देखिए इसमें जो आप लोगों ने अनुरोध की तरह फरमाइशी बना दिया है, फरमाइशी नहीं है, इसमें जो एक सब्जेक्ट दिया गया है उसके विषय में आपके विचार मांगे गए हैं। अब देखिए ये इन्होंने लिखा है विनेश कुमार निकट बैंक सेंटर जनिटी बरेली से, लिखते हैं जब कोई शुभकामना संदेश भेजता है दुगने साथ के साथ उस दिन को

0: क्योंकि ऐसे शुभ दिन बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं। आज मेरी सिस्टर की मैरिज एनिवर्सरी है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जिनका भी जन्मदिन और शादी की सालगिरह है उनको भी और मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये हमारे साथी लिखते हैं, ये मालवा रेडी श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट से, कि बदुआएं और शुभकामनाएं जो हैं ये हमारे जीवन में असर डालती हैं, इसलिए हमेशा अच्छा कार्य करें, किसी का दिल न दुखाएं और प्रेम से जीवन काटें। हमारे बहुत से साथियों ने केवल ऐसे संदेश भेजा है जैसे कि अनुरोध गीत वगैरह में भेजते हैं, तो हम आपसे फिर प्रार्थना करेंगे कि जो भी संदेश भेजें तो वो ऐसा संदेश भेजें जो उस विषय से संबंधित हो। और विषय से जो संबंधित नहीं होता है तो उसको शामिल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक कार्यक्रम का जो बना हुआ है तरीका, वो तरीका बिगड़ जाता है। हेलो, आपकी बात के साथ कौन साहब बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: हेलो सर, मैं इंदौर से बोल रही हूँ।
0: हाँ जी बोलिए, कौन साहब बोल रही हैं?
1: मैं ललिता बोल रही हूँ इंदौर से।
0: स्वागत है कार्यक्रम में आपका, आपकी बात आकाशवाणी के साथ इस कार्यक्रम में स्वागत करते हुए हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको आज का विषय पता है?
1: हाँ सर, ये विषय देखा है मैंने, शुभकामना और बद्दुआ का असर का पूछा है।
0: आप क्या कहना चाहती हैं इस विषय?
1: सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि माता पिता के शुभकामना और बद्दुआ का असर जरूर होता है, मेरे ख्याल से ऐसा मतलब मैं अनुभव करती हूँ।
0: हाँ ऐसा जीवन में सच है, क्योंकि धरती पे माँ बाप जो है वही भगवान का रूप है, भगवान तो नीचे नहीं आए हैं।
1: अन्य व्यक्ति का तो नहीं कह सकते, लेकिन माता पिता की बातों का जरूर असर होता है। अगर हम उनको प्रेम देंगे, उनकी बातों का अनुकरण करेंगे, उनको समझेंगे,
0: उनका तो मान सम्मान करेंगे,
1: शुभकामना निकलती है। और जहाँ उन्होंने उनका मन दुखाया, उन्हें बुरा व्यवहार दिया, तो उनकी बातों का असर हम पे बुरा भी होता है, उनके मन से गहराई से बद्दुआ भी निकलती किसी हद तक, ऐसा मेरा विचार है।
0: बहुत अच्छा विचार है आपका। आज आपने फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगी, कौन सी फिल्म का?
1: सर मैं पहली बार जुड़ी हूँ और मेरे को बहुत प्रसन्नता हो रही है कि मेरा कॉल लग गया है आपके चैनल पे।
0: हम भी बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं कि बरेली आकाशवाणी को आपने सुना और उससे आपने ये कॉल जोड़ी है। अब आप बताइए कौन सी फिल्म का गीत सुनेंगी?
1: सर ये आकाशवाणी बरेली है तो मैं बरेली का वो झुमका गिरा बरेली के बाजार में सुनना चाहूंगी सर।
0: ठीक है, हम भेज रहे हैं आपके रिसर्च पर आपकी पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, कुछ संदेश और है हमारे पास। ये लाल मोहम्मद अंसारी लिखते हैं, दुआ बद्दुआ दे ये मुमकिन नहीं, तू मुझको दगा दे ये मुमकिन नहीं। हर दुआ का असर होता है, चाहे वो दुआ हो बद्दुआ हो। जिसको मिली है वो शख्स खुद ही महसूस कर लेता है ये किसकी दुआ का असर है, या किसी का कोई नुकसान होता है तो वो जानता है कि ये किसकी दी हुई बद्दुआ है। अक्सर लोग जाने अनजाने किसी को परेशान कर देते हैं, किसी का नुकसान कर देते हैं, मगर उसको ख्याल भी नहीं होता कि उनके इस व्यवहार से उनको कितनी बद्दुआएं मिली, जिसके नतीजे में उनके हिस्से में बहुत से नुकसान उनको प्राप्त हुए। इसी तरह बहुत अच्छे काम जाने अनजाने व्यक्ति कर देता है और करके भूल जाता है, मगर जब उसका असर दिखता है तो व्यक्ति को बहुत सुकून मिलता है। हमें चाहिए हम लोगों की आदत में ऐसे काम करें, आदत डालें कि जिससे हमें लोगों की दुआएं मिले। बददुआ से हमें हमेशा बचना चाहिए। यह है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू अंसारी और उनके परिवार के सभी सदस्य। ये लिखते हैं रफीक अंसारी, शुभकामनाएं खुशी के मौके पर दी जाती हैं। बददुआएं उसे कहते हैं जब किसी का दिल दुखाया जाता है या किसी को चोट पहुंचाई जाती है, तो वो दिल से बददुआ करे उसे समझना चाहिए। रावल करनाल से विनोद लखनपाल लिखते हैं, यदि हम किसी को अपने दिल से सच्चे दिल से अगर दुआएं देते हैं तो जरूर कबूल होती है। ये हैं और रिस्पेक्ट, ये लिखते हैं मुस्किन है, लिखते हैं दुआ बद्दुआ पर मैं पूर्ण विश्वास करता हूँ, और हमारे साथ और भी श्रोता जुड़े हैं, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं ये कॉल।
1: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
2: आपका भी हम श्रोताओं की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं।
1: धन्यवाद। तो ये बताइए, आज का विषय आपको पता है?
2: नहीं, बताइए सर।
1: आज का विषय है क्या शुभकामनाओं और बद्दुआओं का असर हमारे जीवन पर पड़ता है?

0: प्रतिकूल पड़ता है, नकारात्मक और सकारात्मक दो अति दोनों को बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। शुभकामनाओं को उतना प्रभाव नहीं पड़ता है जितना बद्दुआओं का प्रभाव पड़ता है
1: जी।
0: लेकिन शुभकामनाएं जो होती हैं वो दूसरे के लिए की गई प्रार्थना ईश्वर बहुत जल्दी
1: स्वीकार
0: करता है, स्वीकार करता है और उसको भलाई करता है। इसलिए वो परोपकार के लिए होती है तो वो ईश्वर जो है स्वयं के बजाय परोपकार की प्रार्थना जल्दी स्वीकार करते हैं और वो कार्य भी जल्दी करते हैं
1: जी,
0: क्योंकि यही विशेषता है।
1: ठीक है, आज आपने फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगे, कौन सी फिल्म का
0: सुनवा दीजिए? राजा और रंग का वो फिरकी वाली, तू कल फिर आना नहीं फिर जाना।
2: मैं

ये प्रदीप कुमार लिखते हैं, टॉपिक बहुत अच्छा है। हमें पूरे कोशिश करनी चाहिए कि कभी किसी के बद्दुआ वाले हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, जो भी करें उसे पूरे मोहब्बत शिद्दत और पूरी लगन के साथ करना चाहिए। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे

0: किसी का दिल दुखे और वो हमें बददुआ दे। हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कोई भी आदमी इतना खुश हो, खासकर वो गरीब जो बहुत ज़्यादा परेशान है, उसकी ऐसी मदद करनी चाहिए कि वो इतना खुश हो कि दिल से आपके लिए दुआएं करे, आपकी लंबी उम्र की दुआ करे, आपकी तरक्की की दुआ करे, आपकी यश कीर्ति की दुआ करे, तो वो दुआ हमें अवश्य लगती है। और प्रदीप कुमार, ये जो है रामपुर रोड किला छावनी बरेली से हैं, और ये प्रवीण चौहान है। शुभकामनाएं, बद्दुआओं का असर जीवन पर होता है, शुभकामनाएं सीधे दिल से निकलती हैं जो हमारे लिए सकारात्मक होती हैं, जबकि बद्दुआएं में घृणा होती है और जो नुकसान पहुंचाती हैं। ये बहुत अच्छा इन्होंने संदेश लिखा है, और ऐसे ही आप लोग संदेश लिखते रहिए। ये फरमाइशी तो हम रोज सुनते ही हैं, लेकिन ऐसे कार्यक्रमों में भी आप भाग लें तो आपके ये अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग की प्रतिभागी इसमें बहुत अच्छी तरीके से प्रतिभागिता करते हैं।
1: आपने ट्यून किया 100.4 FM, क्योंकि जहां है आप वहां है हम। कार्यक्रम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, और विषय है क्या शुभकामनाओं और बददुआओं का हमारे जीवन पर असर पड़ता है। अपने अनुभव साझा कीजिए, देखते हैं इस बात को सबसे पहले कौन साझा करता है। हेलो,
2: हेलो,
1: आपकी बात आकाशवाणी के साथ, आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जी मैं इकरा बात कर रही हूँ।
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
2: जी मैं आंवले से बोल रही
1: हूँ। आज का विषय पता है?
2: जी विषय नहीं पता है, बता दीजिए।
1: क्या शुभकामनाओं और बद्दुआओं का हमारे जीवन पर असर पड़ता है?
2: जी मैं यही कहना चाहूंगी, मानने वाले मानते होंगे, वैसे मुझे ये नहीं लगता कि जो हमारी जिंदगी है वो अल्लाह पाक की दी गई ही है, उसमें उन्हीं का हक है और वही सब कुछ करते हैं, इसमें इंसानों का कुछ नहीं है, चाहे बद्दुआएं दे लें चाहे कुछ भी कर लें।
1: नहीं, ये बात आपकी अपनी जगह है, लेकिन दिल से दी हुई बद्दुआ और दिल से दी हुई दुआ दोनों ही लगती है। माँ की दुआएं जो है हमेशा जीवन में आपका साथ देती है।
2: जी जी, माँ की दुआएं तो हमेशा ही साथ देती
1: है। आज आपने फोन किया है, कौन सा गीत सुनेंगी, कौन सी फिल्म का?
2: मजावा मूवी का सुनना चाहूंगी, बहुत आई गई यादें मगर इस बार तुम ही आना।
1: ठीक है, हम भेज रहे हैं आपके रेडी सेट पर आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: सर, मैं सिद्धार्थ नगर, इज्जत नगर, बरेली से राजेश श्रीवास्तव बात कर रहा हूँ।
0: कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज का विषय पता है राजेश जी?
1: नहीं बताए सर, आप बताएं।
0: क्या शुभकामनाओं और बद्दुआओं का जीवन पर असर पड़ता है?
1: सर, शुभकामनाएं तो हम जैसे जो छोटे हैं या बड़े हैं तो उनको किसी भी जन्मदिन की बधाई हो, शुभकामना देना हो या किसी अच्छे काम के लिए तो शुभकामना देते ही हैं। और बद्दुआ तो सर किसको देनी चाहिए? मेरा तो मानना यह है कि बद्दुआ मत दो, ऊपर वाला देखने वाला खुद है, वो न्याय खुद ही करता है। बद्दुआ देने से किसी को कुछ नहीं होता।
0: देखिए, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन बद्दुआ दी नहीं जाती, निकलती है दिल से। ये बात हमेशा ध्यान रखिए, क्योंकि कभी किसी का दिल अति दुख जाता है। हाँ, आज आपने फोन किया, कौन सा गीत सुनेंगे, कौन सी फिल्म का?
1: सर, फिल्म का नाम है देवी और गाने के बोल है शादी के लिए रजामंद करनी, मैंने एक लड़की पसंद करनी।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको आज के शेष और कल के कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। कार्यक्रम विवरण,

कुछ ही देर में 5:05 पर आप सुनेंगे भजन संध्या। 5:30 बजे कार्यक्रम होगा नारी संसार, इसमें होगी वार्ता घर सुख समृद्धि और संगठन का आधार, और वार्ताकार होंगी रचना शंखधार। इसमें साथ ही चर्चा करेंगे बनाए रखें वर्क लाइफ बैलेंस। 6:00 बजे युववाणी कार्यक्रम होगा, इसमें आज का सवाल होगा वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन सी है, और कुछ खास बातें भी करेंगे जैसे आज वर्ल्ड साइकिल दिवस है। साढ़े 6:00 बजे चर्चा होगी अल्पसंख्यकों हेतु कल्याणकारी योजनाएं, साथ ही कृषक गोष्ठी होगी खेती एवं पशुपालन से अधिक उत्पादन कैसे लें। प्रतिभागी होंगे सुरेश चंद, खंडारी लाल, गेंदन लाल, संचालन करेंगे कृष्णपाल मौर्य, और साथ ही बेहतरीन लोकगीत आपको सुनवाए जाएंगे। 7:31 पर होगा कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन, विषय रहेगा डेंगू बुखार कारण लक्षण और उसका आधुनिक इलाज। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर मोहम्मद अकीक। विषय एक बार फिर सुन लें, विषय रहेगा डेंगू बुखार कारण लक्षण और आधुनिक उपचार शंकाएं व समाधान। 8:00 बजे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कवि सम्मेलन एवं मुशायरे में जो प्रतिभागी होंगे उनसे आप कविता और शायरी सुनेंगे। प्रतिभागी रहेंगे अनवर अली, मुख्तार अहमद, अफसर अली, आरफीन जहां

कल शाम 4 बजे आकाशवाणी के दीवानी कार्यक्रम में महेश कश्यप को आप सुन सकेंगे और 4:05 पर आकाशवाणी का जो विशेष कार्यक्रम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ वो सुनेंगे आप। 5:05 पर भजन संध्या का समय रहेगा। 5:30 नारी संसार कार्यक्रम होगा। वार्ता होगी उद्यमिता और वित्तीय स्वतंत्रता, महिलाओं के लिए बदलते आर्थिक अवसर। इसमें वार्ताकार होंगी ऋचा तिवारी। 6:00 आप सुनेंगे युववाणी कार्यक्रम और इसमें होगी वार्ता अपनी जड़ों से दूर होता युवा और वार्ताकार होंगी यशी मेहरोत्रा। 6:30 किसान वाणी कार्यक्रम होगा। 7:00 आप सुनेंगे ग्राम जगत और 7:31 पर अनुरोध गीत प्रसारित किया जाएगा। 8:00 आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कवि सम्मेलन और मुशायरा में प्रतिभागी होंगे मनोज सक्सेना, सत्यवती सिंह, ऋषि कुमार शर्मा, राम कुमार कोहली, अखिलेश कुमार गुप्ता और कमलकांत अंजलि वर्मा। 9:00 विविध भारती के कार्यक्रम हम रिले करेंगे मुंबई केंद्र से। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। लीजिए प्रस्तुत है भजन संध्या। भजन संध्या में हमने सबसे पहले लिया है कि ये भजन

रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शुक्रवार दिनांक 5/6/2026 को सायं 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 को 4:15 से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581-251-7200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लें।

रेडियो हेल्पलाइन संबंधी सूचना सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शुक्रवार दिनांक 5/6/2026 को साय 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं और उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 को 4:15 से। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581-251-7200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लें।

अभी आप सुन रहे थे बदन संध्या। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी संसार।

नमस्कार सखियों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रिय कार्यक्रम नारी संसार में। आपके रेडियो सखी रेडियो हम सफर अनुप्रीता सिंह के साथ, मींस मेरे साथ। अच्छा बहनों, हमें हमेशा वर्क लाइफ बैलेंस बनाकर रखना चाहिए, मतलब कार्य जीवन संतुलन हमेशा बना के रखना चाहिए। अपने काम के दायित्व और निजी जीवन के बीच एक स्वस्थ सामंजस्य अवश्य स्थापित करना चाहिए। ये तनाव कम करने और ऊर्जावान बने रहने में और व्यक्तिगत सुख समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ तरीके जरूर अपनाइए, जैसे घर और ऑफिस के काम की सीमाएं तय कीजिए। इसका मतलब यह है कि जब आप घर में हैं तो ऑफिस के काम को अवॉइड कीजिए, और जब ऑफिस में है तो घर का सोचना कम कर दीजिए। ऑफिस के काम को ऑफिस तक ही रखिए। कभी कभी हम क्या करते हैं कि वर्कलोड हम पर इतना होता है कि हम ऑफिस का काम ऑफिस में तो निपटाते ही हैं, साथ ही उसके कुछ काम ऐसे होते हैं जैसे मैसेजेस हो गए या किसी को कुछ देना हो गया या और भी काम बचा हुआ है, उसे हम घर तक ले आते हैं और फिर वो घर पे करते हैं। तो वो ऑफिस का काम घर पर भी करते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे घर की जो लाइफ होती है वो हौच पौच हो जाती है, तो उससे भी बचाव कीजिए अपना। और मेन चीज सखियों, स्वयं के लिए समय जरूर दीजिए, अपनी देखभाल कीजिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ हैं तभी तो आप दोनों काम कर पाएंगी। तो ये बैलेंस बनाना भी बहुत जरूरी है। समय समय पर ब्रेक जरूर लीजिए, मीन्स एक ऐसा अंतराल आता है जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो उस टाइम पे ब्रेक लीजिए, कोई काम नहीं करना है।

बस आराम करना है या घूमना फिरना है। अगर काम को लेकर ज्यादा तनाव में हो तो अपने ऑफिस में बात कीजिए और अपने काम का जो दबाव है उसे थोड़ा कम कीजिए ताकि आपको स्ट्रेस ना हो।

0: सखी ये तो एक गीत था, हमें किसी से भी खफा नहीं रहना है और हमें कोशिश करनी है कि कोई हमसे भी खफा ना हो। और सखियो अब रुख करते हैं वार्ता की ओर। विषय है घर सुख समृद्धि और संगठन का आधार। वार्ताकार हैं रचना शंखधार।
1: घर सुख समृद्धि और संगठन का आधार। मनुष्य के जीवन में घर का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। घर केवल ईंट पत्थर और सीमेंट से बनी चार दीवारों का नाम नहीं है, बल्कि यह प्रेम विश्वास सुरक्षा और संस्कारों का केंद्र होता है। एक अच्छा घर व्यक्ति को मानसिक शांति आत्मविश्वास और जीवन जीने की प्रेरणा देता है। परिवार के सदस्य मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि घर ही सुख समृद्धि और संगठन का वास्तविक आधार है। घर वह स्थान है जहां व्यक्ति अपने जीवन की शुरुआत करता है। जन्म लेने के बाद बच्चा सबसे पहले अपने परिवार और घर से ही सीख प्राप्त करता है। माता पिता बच्चे के प्रथम गुरु होते हैं और घर उनकी पहली पाठशाला होता है। घर में मिलने वाले संस्कार ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करते हैं। यदि घर का वातावरण प्रेमपूर्ण और अनुशासित हो तो बच्चे भी अच्छे संस्कार ग्रहण करते हैं और आगे चलकर समाज के आदर्श नागरिक बनते हैं। सुखी जीवन के लिए घर का वातावरण शांत और प्रेमपूर्ण होना आवश्यक है। जिस घर में आपसी प्रेम सम्मान और सहयोग होता है वहां हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। परिवार के सदस्य यदि एक दूसरे की भावनाओं को समझें और कठिन समय में साथ दें तो हर समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। घर में छोटी छोटी बातों और विवाद होने से तनाव बढ़ता है और सुख शांति समाप्त हो जाती है। इसलिए परिवार में धैर्य सहनशीलता और समझदारी का होना बहुत आवश्यक है। समृद्धि का अर्थ केवल धन संपत्ति नहीं होता, बल्कि मानसिक और सामाजिक उन्नति भी समृद्धि का ही भाग है। जिस घर में शिक्षा संस्कार और मेहनत को महत्व दिया जाता है वहां प्रगति अवश्य होती है। परिवार के सदस्य यदि ईमानदारी और परिश्रम से कार्य करें तो घर की आर्थिक स्थिरता आती है। साथ ही घर के बड़े बुजुर्गों का अनुभव और मार्गदर्शन परिवार को सही दिशा प्रदान करता है। एक संगठित परिवार कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखता है और निरंतर आगे बढ़ता है। घर संगठन का सबसे महत्वपूर्ण आधार है। संगठन का अर्थ है एकता और सामूहिकता। परिवार के सभी सदस्य जब मिलकर कार्य करते हैं तो घर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। संयुक्त परिवारों में यह भावना अधिक देखने को मिलती है। जहां सभी लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, परिवार में यदि कोई सदस्य कठिनाई में हो और अन्य सदस्य उसका सहारा बनते हैं, यही एकता परिवार को मजबूत बनाती है। जिस घर में संगठन की भावना होती है वहां बच्चे भी सहयोग और सामूहिक कार्य की शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज के आधुनिक युग में लोगों की जीवन शैली बहुत बदल गई है। व्यस्तता और भौतिक सुखों की दौड़ में लोग परिवार और घरों को पर्याप्त समय नहीं

0: दे पा रहे हैं। इससे परिवार में दूरियां बढ़ रही हैं और संयुक्त परिवार टूटकर छोटे परिवारों में बदलते जा रहे हैं। कई बार मोबाइल, इंटरनेट और के अत्यधिक उपयोग के कारण परिवार के सदस्य एक दूसरे से संवाद कम कर रहे हैं। इसका सीधा प्रभाव बच्चों और समाज दोनों पर पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि परिवार के सदस्य प्रतिदिन कुछ समय साथ बिताएं, बातचीत करें और पारिवारिक मूल्यों को बनाए रखें। घर का वातावरण सकारात्मक होना चाहिए। स्वच्छता, अनुशासन और अच्छे विचार घर की शोभा बढ़ाते हैं। यदि घर में धार्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का पालन किया जाए तो परिवार में शांति और सद्भाव बना रहता है। त्योहार, परिवार कार्यक्रम और सामूहिक भोजन परिवार को एक दूसरे के करीब लाते हैं। इससे आपसी प्रेम और संगठन की भावना मजबूत होती है। महिलाओं की भूमिका भी घर को सुख और समृद्धि प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। एक माँ पूरे परिवार को जोड़कर रखती है। वह बच्चों को संस्कार देती है और परिवार में प्रेम और अनुशासन बनाए रखती है। इसी प्रकार घर के पुरुष सदस्य परिवार की सुरक्षा और आर्थिक सहायताओं को पूरा करने में योगदान देते हैं। जब परिवार के सभी सदस्य अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं और मिलकर कार्य करते हैं, तभी घर वास्तव में सुख और समृद्धि का केंद्र बनता है। अंततः कहा जा सकता है कि घर मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। यह व्यक्ति को सुरक्षा, प्रेम, संस्कार और आत्मबल प्रदान करता है। घर की एकता और संगठन ही समाज और राष्ट्र की मजबूती का आधार बनते हैं। यदि परिवार में प्रेम, सम्मान और सहयोग की भावना बनी रहे तो समाज में शांति और खुशहाली स्वतः स्थापित हो जाएगी। इसलिए हमें अपने घर को केवल रहने का स्थान ना मानकर प्रेम, संस्कार और संगठन का मंदिर समझना चाहिए। यही घर व्यक्ति के सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य का वास्तविक आधार है।
1: मैंने अभी आपने सुनी ये वार्ता। विषय था घर, सुख, समृद्धि और संगठन का आधार। वार्ताकार थी रचना शंखधार।

0: सखियो, अब समय हो गया है हमारे सेगमेंट इनसे मिलिएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछती हूँ सवाल। सवाल है, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सखियो सवाल सुनिए, 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? इसका जवाब मैं आपको दूंगी कार्यक्रम के अंत में। तब तक आइए सुनते हैं ये हमारा अगला सेगमेंट जिसका विषय है टीकाकरण, और हमें जानकारी दे रही हैं ANM रत्ना देवल।
1: बहनों, आज हम ऐसी जगह आए हैं जहाँ चल रहा है टीकाकरण, तो आइए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि टीकाकरण क्यों होता है और कब कब होता है। नमस्कार डॉक्टर साहब।
2: नमस्ते, मैं रत्ना देवल, मेरे यहाँ आज वैक्सीनेशन हो रहा है
1: जी।
2: तो हमारे यहाँ मेरी आशा बहनें बच्चों को बुलाकर लेकर आती हैं, और यहाँ पर समय समय पर टीकाकरण हर बुध और हर शनिवार को होता है। इस टीकाकरण से बच्चों को जानलेवा बीमारियों से बचाया जाता है। काली खांसी है, टिटनेस है, डिप्थीरिया है, पेटोटेस है, खसरा है, निमोनिया है, और दिमागी बुखार है। ये टीकाकरण जानलेवा बीमारियों से बचाता है। पहले हमने देखा होगा गर्भवतियों के टीके लगाए जाते हैं, आपने देखा होगा मेरी यहाँ गर्भवतियाँ भी आ रही हैं।
1: बिल्कुल, मैं देख रही हूँ।
2: हाँ, उनको हम जाँच भी करते, वजन करा जाता है, उनका BP भी चेक किया जाता है, और शुगर की, ताकि उनको प्रोटीन वगैरह तो अधिक मात्रा में नहीं है, और हम उसके साथ साथ उनके HIV की टेस्ट, सिफिलिस की टेस्ट, काफी टेस्ट होते हैं। वो सारे टेस्ट अगर हमारे यहाँ पर नहीं हो पाते तो हमारे सेंटर पे रोज होता है। अब तो संडे को भी आरोग्य मेला लगाया जाता है हमारे यहाँ, तो ऐसा नहीं कि किसी भी दिन मतलब अस्पताल बंद है, अब अस्पताल भी हमेशा खुला रहता है, तो आप कभी भी उसमें जांच करा सकते हैं। और ये कुछ जैसे कि टीकाकरण होता है, तो हमारे यहाँ पहला टीका दिया जाता है BCG का, जो कि दिमागी TB से बचाता है। आपने देखा हो BCG का जब टीका लगता है तो एक बर्थ का निशान छोड़ जाता है।
1: बिल्कुल, हम लोग अगर देखें तो पहले के टाइम पे तो ये निशान ज्यादा दिखते थे। जब मैं छोटी थी तो मैं देखती थी, तो उसको हम लोग देख के, और जिनके भी दिखाई देता था हमारे बड़े लोगों के, तो उसको हम लोग हंसते थे या छू छू के देखते थे।
2: लेकिन उस समय वो खसरे का लगता था, पहले गोदने वाला लगता है, लेकिन अब ऐसा निशान खसरे पे नहीं पड़ता है, क्योंकि BCG का एक टीका जो कि बच्चे के आप 24 घंटे के अंतराल पे लगता है। अगर 24 घंटे के अंतराल पे किसी सपोज नहीं लग पाए तो वो 1 साल के अंदर अंदर आप कभी भी लगवा सकते हैं।
1: बिल्कुल। अच्छा, ये तो हो गया जो हमारे नवजात शिशु होते हैं उनका। गर्भवती के जो टीके लगने स्टार्ट होते हैं, टीकाकरण होता है, वो कब से शुरू होता है?
2: जैसे ही पता चले कि आपको गर्भ ठहर गया है, आप जांच कराइए, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप अपना कराइए अस्पताल में जाके, आप अपनी आशा आंगनबाड़ी केंद्र पे अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ताकि आपको समय समय पे आहार पोषण मिल सके, जो गर्भ जो हमारी आंगनबाड़ी बहने हम आप लोगों को प्रोवाइड करा सके अच्छे से। और ANM बहन जी जब आती हैं तो आप अपना वैक्सीनेशन कराएं। गर्भ के पता चलते ही खन एक टीका लगता है, ऐसा नहीं है कि आप टीका तो 5वें महीने में या 6ठे महीने में लगा रहे, और जैसे ही पहला टीका लगे उसके ठीक 28 दिन बाद आप दूसरा टीका लगाएं, ताकि उसकी इम्यूनिटी, उस टीके की भी इम्यूनिटी उस बच्चे को आराम से मिल सके। ये टीका गर्भवती के लिए लगाया नहीं जाता, ये बच्चे के लगाया जाता है।
1: ठीक है, तो ये जो बच्चे का टीका आप बता रही है, जैसे ही

0: पता चले तब लगाए और 28 दिन के बाद मतलब एक महीने बाद लगाए। तो ये जो टीका होता है ये किस चीज का होता है?
1: ये टिटनेस डिप्थीरिया का टीका होता है।
0: क्या होता है
1: इससे बच्चे को, जो न्यूनेटल बच्चा जो होता है गर्भ के अंदर बच्चा होता है उसको हम टिटनेस से बचा सके। मेरे समय की बात है, मेरे एक्सपीरियंस है कि मैं बरेली डिस्ट्रिक्ट में जब अपनी वो कर रही थी इंटर्नशिप, तो मैंने देखा था कि एक जो समुदाय था तो उन्होंने अपने पहले बच्चे में टीकाकरण करवाया था बेटी थी, लेकिन उनकी पुप्पो ने मना कर दिया था कि अब मत टीका लगवाना, तो उन्होंने टीका नहीं लगवाया। मेरे सामने 3 दिन का बच्चा पैदा हुआ था लड़का, अब वो 3 दिन का बच्चा एकदम से खत्म हो गया। पहले उसका बच्चे का मुंह बंद हो गया, जबड़ा ब्लॉक हो गया, धीरे धीरे बच्चा ऐठने लगा और बच्चा 3रे दिन में खत्म हो गया।
0: वो टिटनेस की वजह से?
1: हाँ, वो टिटनेस का उसका टीका नहीं लगा था। जब मैंने पूछा उनसे कि ये बच्चा क्यों, आपने क्या टिटनेस का टीका नहीं लगवाया, तो उन्होंने यही कहा कि बच्चा जब हमारा पहला हुआ था तब हमने लगवाया था, दूसरे बच्चे में हमने टिटनेस का टीका नहीं लगवाया।
0: तो ये जानलेवा भी हो
1: सकता है। ये जानलेवा बीमारियों का ही टीका है।
0: ये जो टीकाकरण है ये बहुत ही जरूरी है, और गर्भवती हो तब भी, और नवजात शिशु अगर आपके यहाँ कोई है तब भी टीकाकरण जरूर करवाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, जब बच्चा पैदा हो जाता है तो पैदा होने के 24 घंटे के अंदर आप बता रही है टीकाकरण होता है पहला, तो फिर ये आखिरी टीका कब तक लगता है बच्चों को?
1: आखिरी टीका तो वैसे टीका की कोई वो नहीं, क्योंकि हमारा 16 महीने तक बच्चों का शेड्यूल का टीकाकरण लगता है। BCG का टीका जन्म के समय पे लग जाता है, फिर 1.5 महीने के बच्चे पे आप उसके 6 वीक पे पेंटा का डोज, फर्स्ट डोज पूरी दी जाती है, फिर सेकंड डोज उस 2.5 महीने पे दी जाती है, 3.5 महीने पे उसकी थर्ड डोज, फिर 9 महीने पर MR खसरे का टीका और दिमागी बुखार का टीका, उसके साथ विटामिन ए का टीका भी लगाया जाता है, निमोनिया का भी टीका दिया जाता है, और 16 महीने पर उसको इसी की डोज MR फर्स्ट वाली जो डोज लगती है उसकी सेकेंड डोज लगती है MR सेकेंड की 16 महीने पर, उसके साथ DPT का टीका दिया जाता है जो कि काली खांसी गलगोटू टिटनेस से बचाता है, और फिर 5 साल पे लगता है DPT का टीका बूस्टर।
0: अच्छा, वो 5 साल वाला टीका कब से कब तक लगा सकते हैं?
1: वो 5 साल वाला टीका जैसे ही बच्चा आपका 5 साल का होता है आप तुरंत उसको टीका लगवा सकते हो, 5 से 6 साल के बीच में लगता है, क्योंकि उसके बाद हमारा जो आजकल यूविन पोर्टल चल गया है ताकि वो पोर्टल पे आसानी से चढ़ सके और टीका भी वेरीफाई हो सके, ताकि आप कार्ड अपना यूविन के द्वारा अपना नेट पे देख सके।
0: अच्छा, तो ये जो 5 से 6 साल का टीका है यही टीका है या इसके आगे भी कोई टीका करना?
1: उसके आगे टीकाकरण 5 साल के बाद 10 साल पे TD का टीका लगता है सभी के, ताकि बच्चों को टिटनेस डिप्थीरिया ना हो, क्योंकि 15 साल तक डिप्थीरिया कभी भी किसी को भी हो सकता है।
0: अच्छा, तो ये भी बहुत जरूरी है, 10 साल वाला भी जरूरी है,
1: 10 साल वाला भी जरूरी
0: है। तो सर, क्यों इस टीके को भी बिल्कुल भी अवॉइड ना कर, 10 साल का टीका भी जैसा कि डॉक्टर साहब बता रही है बहुत जरूरी है, इसके आगे भी कोई टीका है?
1: उसके आगे 16 साल पे किशोरियों के लगाया जाता है टीका, ताकि वो किशोरियाँ जब हमारी ऐसा होता है कुछ बच्चे उनके शादी भी हो जाती है और किशोरियों को पीरियड वगैरह जो दिक्कत होती है तो उससे भी हो जाती है,
0: तो वो नियमित हो जाता है।
1: हाँ, वो आराम से होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है।
0: अच्छा, तो ये किशोरियों के लिए ही है या किशोर
1: लड़कों के लिए लगाया जा सकता है? क्योंकि जैसे अब बच्चे बाहर घूम रहे हैं, साइकिल वगैरह में हाथ दे रहे हैं या कहाँ छूट चुके हैं, तो वो हमें प्रोटेक्ट करता रहता है।
0: अच्छा, प्रोटेक्शन के लिए। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी बहनों, और मुझे लगता है ये सभी बातें आप सबको ध्यान में रखनी चाहिए, अपने जहन में रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे आसपास या हमारे घर में कोई ना कोई गर्भवती महिला ज़रूर मिलती है या फिर छोटे बच्चे ज़रूर होते हैं, तो टीकाकरण का ध्यान रखिए, समय समय पर टीकाकरण अवश्य करवाइए।
2: सखियों, अभी सुनिए आपने ये हमारी छोटी सी वार्ता, विषय था टीकाकरण और जानकारी दे रही थी ANM रत्ना देवल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी संसार। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। निजी प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

रुकें हमारे श्रोता, तब तक आप सुनिए ये प्यारा सा सॉन्ग और फरमाइश हमारे पास आई है इसकी। विष्णु मिस्किन, रितिका मिस्किन, वाणी आरव, चंद्रकला कनीश, काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही, प्रियांशी सोनी सोलापुर महाराष्ट्र से, साधु शाह राजस्थान से, राम कुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़ की, पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजन जी शाह की। अगली फरमाइश हमारे पास आई है नलेश्वर नगर नरवील महाराष्ट्र से, पी एस नवानकर, निर्मला नवानकर, विशाल नवानकर, सुपान तांडे, नारायण इंगले। चलिए आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, 100 बात की एक बात है सही। सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
3: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
4: हमारी जनगणना हमारा विकास।
5: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
6: जिंदगी की गाड़ी को अगर मजबूती से चलाना है तो साइकिल के पैडल की तरह पैर आगे बढ़ाना है। थक कर बैठ मत रे साथी, इस मोड़ पर तुझे तो अभी अपनी मेहनत से पूरा जमाना जीतना है। दोस्तों, जैसे जिंदगी की रेस में अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत तो करनी पड़ती है, वैसे ही अगर साइकिल चलानी है तो आपको भी पता है कितनी मेहनत लगती है। पता है आज हम मना रहे हैं विश्व बाइसाइकिल डे। क्यों मना रहे हैं? क्योंकि भाई साइकिल सिर्फ मंजिल तक पहुंचाने का काम नहीं करती है, हमारी सेहत का भी काम करती है, हमें फिट रखती है और हमें फिट रखने के साथ साथ हमारी अर्थ को भी पॉल्यूशन फ्री रखती है। जो बाइक कार की वजह से पृथ्वी को नुकसान पहुंच रहा है उससे बचाती है। और इस प्यारी सी पृथ्वी को पर एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं आपके लिए, जैसे चक्रव्यूह में कि भारत के किस राज्य में हम उगते सूरज की भूमि कहते हैं, भारत के किस राज्य को हम उगते सूरज की भूमि कहते हैं। अगर आपको पता है तो हमें इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए। अब पूछते हैं हम चक्रव्यूह का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है आपके लिए कि इंसानी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है और कहाँ पाई जाती है। आपको अगर इसका उत्तर पता है तो हमें जल्दी से कमेंट करिए। अगला क्वेश्चन है चक्रव्यूह से, ChatGPT को बनाने वाली पेरेंट कंपनी का क्या नाम है। तो इन सभी के अगर क्वेश्चन के आंसर आपको पता है तो कमेंट करिए ताकि लाइव प्रोग्राम में आपका कमेंट भी शामिल हो पाए। और तब तक हम सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा सॉन्ग, और सॉन्ग की जो फरमाइश हमारे पास आई है वो आई है ग्राम शंकर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से सोमेंद्र यादव और गंगा सिंह रावत की, आज रेडियो क्लब से निसार अहमद अंसारी की, बेरूलाल वक्तड़िया धाकर उन्नीन जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से। अगली फरमाइश है मंडी कस्बा उसावा जिला बदायूं से धर्मवीर कश्यप की। फरमाइश हमारे पास आई है सागर मध्य प्रदेश से चंद्रीश गौहर वंदना गौहर की, हीनामणि वर्मा दातरंगी बाटापारा से। अगली फरमाइश हमारे पास आई है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी गोस्वामी नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। फरमाइश आई है अनोखीलाल मौर्य जी की पुराना शहर बरेली से, सुंदर देवी प्रकाश रिंकी कपिल वेदराम कैलाश सुनील खुशबू आरोही स्वाति इनके साथ जुड़े हुए हैं। अगली फरमाइश हमारे पास आई है बीपी गौतम की दिग्दर्शन और कविता कौर की। आइए सुनते हैं इनकी फरमाइश पे ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
2: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
3: वेलकम बैक दोस्तों, आप चलते हैं चक्रव्यूह के बचे हुए क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस शहर में स्थित है? इसका आंसर आपको पता है तो हमें जल्दी से बताइए। और ये मुझे लगता है आपको पता ही होगा क्योंकि अभी नया स्टेडियम बना है, इसके काफ़ी चर्चा में रहा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में UPI को किसने विकसित किया था? इसका उत्तर भी मुझे लगता है हमारे सारे ही श्रोताओं को पता होगा। अब चलते हैं चक्रव्यूह सेगमेंट के जो पुराने क्वेश्चन हमने आपसे पूछे थे उसका आंसर बताएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे किया गया था नासा द्वारा लॉन्च किए गए पहले अंतरिक्ष स्टेशन का नाम क्या है, जिसका उत्तर था स्काईलैब। अगला क्वेश्चन आपसे किया गया था संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, उत्तर है फुटबॉल। अगला क्वेश्चन आपसे किया गया था दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, इसका उत्तर है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगला क्वेश्चन आपसे किया गया था दुनिया की छत किस पठार को कहा जाता है, इसका उत्तर है पामीर का पठार। अगला क्वेश्चन आपसे किया गया था भारतीय संविधान पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ से हुई थी, इसका उत्तर है नागौर। अगला क्वेश्चन आपसे किया गया था किस विटामिन को एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जाना जाता है, जिसका उत्तर था विटामिन सी। अगला क्वेश्चन आपसे किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, जिसका सही उत्तर है 1600 वर्ष में।
4: चलिए युवा साथियों, हम आपसे वादा करते हैं रोजाना किसी न किसी युवा साथी को आपके बीच में लेकर आते हैं और मुलाकात करवाते हैं ऐसे ही।

0: कुछ खास युवा साथियों से या कुछ खास व्यक्ति से। आज हमारे बीच में जुड़ी हैं एक और खास मेहमान, इनसे जानते हैं पहले इनका नाम। आप हमारे युवा साथियों को अपना नाम बता दीजिए।
1: मैम मेरा नाम है शिवा राम।
0: मैं जानना चाहती हूँ आपसे आपकी जर्नी के बारे में, आपके सफर के बारे में। जब मैंने देखा कि आप डिफेंस की तैयारी कर रही हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपको देखकर। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस सफर की शुरुआत आपने कैसे करी, कैसे आपको मोटिवेशन मिला कि आपको डिफेंस में जाना।
1: मेरा 12th मैंने मैथ से किया है, मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट थे। उसके बाद मैंने बीएससी कर रही हूँ और मैं बीएससी के सेकंड ईयर में हूँ। साथ ही साथ मैं एनसीसी भी कर रही हूँ नेशनल कैडेट कॉर्प्स बरेली कॉलेज से।
0: अच्छा, तो एनसीसी में आपको क्या करना होता है? जैसे बीएससी में एडमिशन लिया तभी तुरंत एनसीसी ज्वाइन कर लिया, कैसे एनसीसी में जाने के लिए क्या किया आपने?
1: जब मैं वहाँ पे कॉलेज में अपना एडमिशन कराने गई थी बीएससी में, तभी वहाँ पे मुझे मैम ऐसे करके कि पता चला। उससे पहले कुछ पता नहीं था और हमारी फैमिली में भी कोई भी डिफेंस बैकग्राउंड से नहीं है, तो उस चीज की भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी।
0: अच्छा,
1: वहाँ पे जाके मुझे इस बारे में पता चला कि ये जो हमें सिखाया जाता है एनसीसी में, हम जो चीज सीखते हैं, हमें जो सर्टिफिकेट मिलते हैं, तो उसका आगे डिफेंस में काफी ज्यादा यूज होता है। हमें मार्क्स भी मिलते हैं और काफी सारी चीजें हमें सिखाती हैं।
0: इसीलिए आपने एनसीसी ज्वाइन करी कि आपको डिफेंस में जाना।
1: यस।
0: अच्छा, तो मतलब क्या आपको मोटिवेट किया, किस चीज ने आपको कि आपने ये सोचा कि आपको डिफेंस में जाना चाहिए?
1: एक्चुअली मैम कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी ग्रेट पर्सनैलिटी को देखते हैं और
0: जी।
1: उनसे काफी सारी चीजें उनकी हमें इंस्पायर करती हैं। बहुत सारे ऐसे विमेन थी, जैसे विंग कमांडर व्योमिका सिंह हैं और कर्नल सोफिया कुरेशी हैं, उन्होंने मैम ऑपरेशन सिंदूर कितना अच्छे से लीड किया। यही एक रेस्ट्रिक्शंस को ब्रेक करने के लिए कि लड़कियां भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड से तो कोई भी डिफेंस में नहीं था, तो इसीलिए मुझे इस लाइन में जाना था कि आई एम द वन इन माई ब्लड लाइन जो कि डिफेंस में है और एक लड़की कुछ भी कर सकती है जो वो करना चाहे। तो ये मोटिवेशन रहा और मैंने एनसीसी ज्वाइन करी इसी वजह से, और मैम मैं भी प्रिपरेशन भी कर रही हूँ।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है कि आपकी नहीं हर लड़की की इंस्पिरेशन है ऐसी महिला जो हमारे देश के लिए आज उन्होंने इतना कुछ किया है। उनको देखकर तो हर कोई इंस्पायर होता है, मोटिवेट होता है और हर किसी को उनकी तरह बनना चाहिए, एक सच्चा देशभक्त। आज आपने मुझे बताया कि आपको कैसे मोटिवेशन मिला। अब मैं आपसे इस जर्नी के बारे में, जैसे आप डिफेंस की तैयारी कर रही हैं तो उसकी पेपर की तैयारी के लिए आप कैसे, पेपर को हम 12th के बाद दे सकते हैं, ग्रेजुएशन के बाद दे सकते हैं, किस तरीके से दे सकते हैं, पूरी बात मुझे बताइए।
1: तो मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि हमारे जितने भी यूथ हैं जिन्होंने 12th कर रखा है या जो 12th पास आउट हैं, तो वो साथ ही साथ अपनी ग्रेजुएशन को भी साथ में करें, क्योंकि काफी सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जैसे CDS है, FCAT है, तो जो कि ग्रेजुएशन मांगते ही मांगते हैं, तो वो भी आपका होता रहेगा साथ में।
0: तो आपने अपनी तैयारी कब से शुरू करी थी शिवा?
1: मैम मैंने आफ्टर 12th अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। जब मैंने एनसीसी ज्वाइन करी थी मुझे पता चला और वैकेंसी भी आई हुई थी उस टाइम पे, तो मैंने तभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी।
0: तो आपने जैसे अपने प्रिपरेशन के लिए आप कितनी देर पढ़ाई करती हैं?
1: तो फ्रॉक्स हमें अपनी स्टडी को 5 to 6 hours तो देने ही चाहिए, ये तो मस्ट है कि हमें इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है।
0: हाँ।
1: तो मैं अपनी जो स्टडी है वो ऐसे मैनेज करती हूँ, जैसे हम कर सकते हैं साथ ही साथ, अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं और किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम दोनों चीजों का एक टाइम टेबल बना के हम प्रॉपर अपनी जो प्रिपरेशन है वो कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग हम अपने कॉलेज में भी बात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम की,
0: अगर हम चाहें तो हम क्या कुछ नहीं कर सकते। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि हम साथ में तैयारी कर सकते हैं, अगर जब तक हम अपने क्राइटेरिया को जितना स्मॉल रखेंगे उतना ही वो छोटा ही रह जाएगा, जितना उसको बढ़ाएंगे अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे उतनी हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी, हम पढ़ाई की तरफ और ज्यादा हमारा मन लगेगा। जब तक अगर सही बता रही हूँ, अगर पढ़ाई में मन नहीं लगाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि हम चाहे 10 घंटे बैठ जाएं चाहे 12 घंटे बैठ जाएं, हमारा जो पढ़ा है हमने वो मन में रहता ही नहीं है।
1: यस।
0: अच्छा, तो शिवा आप कैसे मैनेज करती हैं? कई बार क्या होता है कि आप पढ़ती होंगी तो आप उस चीज को कैसे याद रखती हैं, कैसे तैयारी कर रही हैं आप अपने पेपर की? मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि आप कितना आप प्रैक्टिकल कर रही हैं, कितना आप नोट्स में ध्यान दे रही हैं, या कैसे अपनी स्टडी टाइमिंग पे ध्यान दे रही हैं? क्योंकि डिफेंस में जाने के लिए आपको देखा जाए तो अपनी हेल्थ को भी बहुत ध्यान में रखना चाहिए, फिजिकल हेल्थ भी कई सारे पेपर्स में बहुत ज्यादा कंपलसरी हो जाती है कि आपको

0: नहीं, हाइट होनी चाहिए, आपका टेस्ट वगैरह, मेडिकल टेस्ट वगैरह भी होता है। तो आप बताइए कि आप कैसे अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखती हैं और पढ़ाई का भी।
1: तो मैम सबसे जरूरी होता है कि हमें अपना फिजिकल का तो ध्यान सबसे पहले रखना है, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम में अगर बैठेंगे तो उसके बाद अगर आपने रिटन क्वालिफाई कर लिया है तो आपका मेडिकल होना ही होना है और उसमें आपको फिट भी जरूर होना है। तो हमारी जो हेल्थ है वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मेरा दिन शुरू होता है अपनी एक्सरसाइज से और रनिंग से, क्योंकि मैं जिस चीज की तैयारी कर रही हूँ, मैं एयरफोर्स की तैयारी कर रही हूँ, तो उसमें रनिंग हमारी कंपलसरी होती है। तो मैं रनिंग करती हूँ, उसके बाद अपना एक्सरसाइज वगैरह जो भी मुझे करना
0: अच्छा
1: है वो करके, उसके
0: अच्छा
1: बाद हमारा जो खान पान होना चाहिए, डाइट हमारी बहुत ही अच्छी होनी
0: जी
1: चाहिए,
0: जी जी हाँ,
1: ड्राई
0: अगर
1: फ्रूट्स
0: देखिए
1: होते हैं,
0: अच्छी
1: ड्रिंक्स
0: डाइट लेंगे
1: वगैरह।
0: हम तभी हमारी हेल्थ ठीक रह पाएगी, एक
1: हाँ
0: अच्छी
1: हाँ
0: डाइट
1: यस
0: से
1: मैम,
0: ही। और हेल्थ क्या कहें, कहते हैं ना कि अच्छा भोजन, अच्छा मस्तिष्क अगर तभी रह पाएगा अगर हम अपने मन में अच्छे विचार रखेंगे। बहुत सारी
1: यस
0: चीजें होती
1: मैम,
0: हैं, देखिए अगर
1: यस
0: वही वाली
1: यस
0: चीजें, स्टूडेंट लाइफ बहुत ज्यादा प्रीशियस होती है, अगर उसको अच्छे से रखेंगे तो वो हमें जरूर बेनिफिट देगी। इसमें आप जितना अपना डिसिप्लिन लेकर आ सकते हैं उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल है। कई बार क्या
1: हाँ
0: होता है कि आप
1: यस
0: अपना टाइमिंग बनाइए, रूटीन बनाइए कि आप इस टाइमिंग पे उठेंगे और फिर अपने ही स्कोर को बीट कीजिए। देखिए कोई भी हो गया, अगर आपने डेली डेली की आज मैंने इतनी रनिंग करी है, फिर उसके बाद आप उससे ज्यादा करके देखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ एकदम से
1: यस
0: करिए, और 1 वीक आप उसमें लगाइए कि हाँ 1 वीक तक मैंने इतना रनिंग करी, फिर उसके बाद आओ सेकेंड वीक में अगले टाइम कि आपने और थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया, अपना अपनी
1: हाँ,
0: डिस्टेंस को बढ़ा दिया,
1: स्टार्टिंग हमें
0: स्पीड को।
1: आराम
0: जी
1: से ही करनी है,
0: जी जी
1: स्टार्टिंग में एकदम से बॉडी
0: हाँ
1: एकदम
0: हाँ
1: से नहीं करना है, आराम आराम से करना है, प्रेशर लेके कोई भी चीज नहीं करनी, आराम
0: हाँ
1: से करनी है, टेंशन फ्री होके हमें जो हम जिस चीज की भी पढ़ाई कर रहे हैं या रनिंग वगैरह जो भी कर रहे हैं वो आराम से फ्री माइंड से करना है, तभी हो पाएगा। मैम मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ आपके
0: हाँ
1: साथ।
0: जरूर
1: जब जब मेरा एयरफोर्स का फिजिकल था उसके पहले मैं इतना घबरा रही थी, इतना जिस दिन मुझे जाना था उस दिन तक मैं रो रही थी घर पे कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, लेकिन
0: हाँ
1: वहां जाके जब चीजें स्मूथली डन हुई देन आई फील कॉन्फिडेंट कि हाँ अगर हम कोई चीज आराम से करेंगे और जब हम उस चीज में जाते हैं वो चीज हम अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं तो हर चीज हो जाती है। उसके बाद फिर मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि आराम से हर चीज करें विदाउट एनी प्रेशर हर चीज हो जाती है। उसके बाद आज तक मुझे कभी प्रेशर नहीं हुआ ना मैंने लिया, हाँ बीच में कभी कभी थोड़ा सा
0: हो
1: डीमोटिवेशन
0: जाता है।
1: फील होता है, सभी को होता है, बट
0: हाँ
1: हमें अपने माइंड को इतना स्ट्रांग रखना चाहिए कि हमारे सामने फेलियर आ जाए तो हमें घबराना नहीं है बिल्कुल भी, कोई बात नहीं है, एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, कितनी बार नहीं होगा, जरूर होगा लाइफ
0: बहुत अच्छी बात है शिवा,
1: में।
0: और आपने मुझे बताया कि किस तरीके से आप उस वक्त इतना प्रेशराइज हो गई थी, खुद को इतना टेंशन में डाल लिया था, लेकिन जब ये चीजें ठीक हुई, बेटर हुई, तो आप में कॉन्फिडेंस आ गया। और फिर
1: हाँ, यस
0: कॉन्फिडेंस ही की होती है देखिए हमारे अचीवमेंट की। अगर हम अगर उस कॉन्फिडेंस ही नहीं है हमें लाइफ में कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, कई बार हम ऐसी जगहों पर मात खा जाते हैं जहाँ पर हम अच्छे हैं, जहाँ पर हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, बहुत बेटर कर सकते हैं, वहाँ पर
1: यस
0: ये कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं और वहीं पर ही हम पीछे हट जाते हैं। शिवा आज आपसे बातचीत की और मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और उम्मीद करती
1: थैंक यू
0: हूँ
1: सो
0: दोबारा
1: मच
0: फिर से
1: मैम,
0: बातचीत होगी जल्दी ही। आप अपना पेपर में सिलेक्शन कर लीजिए ताकि हम आपसे फिर से
1: यस
0: बातचीत कर पाए,
1: ओके
0: और
1: मैम,
0: आज हमारे जितने भी युवा साथी हैं वो आपको सुन के उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, और आपसे जो जानकारी मिली उम्मीद करती हूँ हमारे सारे युवा साथियों को मोटिवेशन देगी, इंस्पिरेशन देगी, नई दिशा देगी। और आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों। अब चलते हैं आज के सवाल पर, जहां हमने आपसे पूछा था कि वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस उपयुक्त मानी जाती है, जिसका सही उत्तर है हाइड्रोजन गैस। और हमें इसका सही उत्तर मिला है सहारनपुर से जॉन डी कैस्ट्रो, प्रवीण चौहान का, सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्किन का, सादुल शाह राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ का, पदमा टॉकेज नेपानगर से सुदर्शन शाह, नरवील महाराज से पीएस नवानकर, बदायूं से सोमेंद्र यादव, हल्द्वानी गंगा सिंह रावत, निसार अंसारी, उज्जैन मध्य प्रदेश से वीरूलाल वक्करिया धाकर, बदायूं से धर्मवीर कश्यप, बाटापारा से हीरामणि वर्मा, विजय सुरलकर, सागर मध्य प्रदेश से चंद्रीश कौहर, लाल मोहम्मद अंसारी, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, बीपी गौतम, दिग्दर्शन गौड़, राजपाल गजपीए, भुवन प्रकाश।

राजेश वर्मा, अनोखी लाल मौर्य का। इन सभी ने आज के सवाल का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। दोस्तों अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। देखिए घड़ी की सुई हमें इशारा कर रही है कि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और ज़्यादा बातें भी अब बातें तो बहुत होती हैं आपसे, लेकिन भाई इतना जब समय की बंदिश होती है तो सारी बातें एक साथ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम आपसे यही कहेंगे कि अपना ख्याल रखिए, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हमने आपसे कल भी

बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हमने आपसे कल भी कहा था कि अपनी सेहत का ध्यान रखिए, और अभी तो थोड़े टाइम में आपको याद है ना कि जून है, और जून में क्या आता है, योग दिवस आता है। तो ध्यान रखिएगा कि हमें अपनी सेहत को लेकर हमेशा सीरियस रहना है। आज भी हमने साइकिल डे पर हमने चर्चा करी कि प्रदूषण रहित कैसे रह सकते हैं, इसी पर हम यही कहेंगे कि अपना सेहत का हमेशा से ध्यान रखिए। और अभी आज के प्रोग्राम से अपनी दोस्त प्रज्ञा पाठक को दीजिए अनुमति। नमस्कार साथियों।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युगवाणी। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए आप प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: ग्राम जगत कार्यक्रम सुनन वारे सब भैया बहनन को आपके भैया सुरेंद्र
1: और आपके भैया राकेश शर्मा की
0: राम राम। और सुनाओ राकेश भैया, का हाल चाल है तुम्हारे और कैसो मौसम आजकल ही हुआ?
1: मौसम तो खैर देखो भैया, आप देख ही रहे उतार चढ़ाव को है। बात करी हाल चाल की, किसने को काम ऐसो है, वहां हाल चाल है का बता में, खेती बाड़ी में और जानवर में हमेशा लगे ही रहो, कोई ना कोई काम करते रहो।
0: देखो भैया बहुत कहा है ना, काम तो करने ही होते, क्योंकि हम खेती बाड़ी में काम करेंगे, जानवर के काम करेंगे, तो जो काम ऐसे हैं इनमें छुट्टी तो ना है, क्योंकि जो रोजाना के काम है भैया, अगर एक दिन जानवर को पानी नहीं पियाओगे तो कहा हुआ, ये हमें को पानी नहीं मिले तो भैया कैसे लगा है।
1: बिल्कुल भैया बात सही कह रहे हैं, अब बहुत काम दो दिन चले गए गौतर में, भैया हमारी हाथ की ही पर दूध हमें से दुबाती।
0: अच्छा,
1: बारह बड़े आना कहानी करी, बड़े लाते इतर उतर को चलाई तो बड़ी दिक्कत हुई गई।
0: तो भैया किसने दी तुम्हारे गैर मौजूदगी में?
1: अरे बड़े बारे बालकार ने कोशिश करी हमारे कपड़ा पहन के बैठेंगे, बताना हाथ पहचान की का कूद गई
0: तो पहन के बैठे भैया के आगे।
1: हाँ मगर फिर आएगी ठिकाने पाएगी।
0: तो लेकिन भैया जो चीजें हैं कि अगर हम जिस जानवर के साथ रोजाना रहते हैं तो बाऊगी आदत पड़ जाता है कि हमारे साथ हमारे जो हमारी सेवा कर रहे हैं वे हमारे संग हैं, तो उनको भी एक लगाव जैसे हो जाता है, जैसे हमें जानवर से लगाव हो जाता है, खेती बाड़ी से लगाव हो जाता है, ऐसी जानवरन को और खेती बाड़ी को भी भैया हमसे लगाव हो जाता है।
1: बिल्कुल भैया देखो लगाव होना ही चाहिए, अगर हम बात करें जो भी हम जिस क्षेत्र से भी जुड़े हैं, खेती बाड़ी है, पशुपालन है, हमारे किसान भैया जो हैं जय काम है उनको मुख्य रूप से, तो जो भी कार्य करें जी जान से करें, लगाव से करें, क्योंकि अगर उन्हें अपने काम के प्रति लगाव ना हो तो काम करने में मजा ना आएगा।
0: मजा का भैया देखो जैसे इस समय मौसम में काफी परिवर्तन है, कहूँ कहूँ देखो मौसम में बादल छुआ जाता है, धूप गर्मी काफी पड़ रही है, ऐसे समय में इस मौसम में बीमारी सबसे ज्यादा होती है, फसलों को बीमारी लगती है भैया, आदमियों को बीमारी लगती है, जानवरों को बीमारी लगता है, जहाँ कोई एक ही उपाय है साफ सफाई जरूर रखें, घर की खेत की पशुओं की और घर के आगे जो भैया रास्ता देखते हो, जो घर के छोटे छोटे हैं ना, तो हम देखते हैं कि हमारे जो दादा है ना सुबह ही 4 बजे उठ जाते हैं भैया, अब 4 बजे उठ कर ना वो खड़ारो लो और गेट के आगे खुर खुर खुर खुर करने लगे, यानी कि उनकी आदत में हो 4 बजे उठ के वे साफ सफाई जरूर करते हैं।
1: भैया जब आप सही कह रहे हो, लेकिन थोड़ा बदलाव जहाँ का हुआ है, पहले भी बड़े बूढ़े खरारे से सफाई करने के बाद में कूड़े कोने पर घिट्टो करते फेंके आते, अब क्या करता है साफ सफाई तो करता है, दूसरे के दरवाजे की नाली बंद करे आते हैं।
0: हाँ नाली में डाल देता, वो कति न करना चाहिए।
1: और जय एक लड़ाई को मुख्य कारण है, आदमी जा सोचा जब हम झाड़ू लगाइए रहे हैं तब कूड़ो नाली में ना डाल के कोने पर घिट्टो कर लो भर के फेंक दो।
0: लेकिन भैया इन चीजों को हमारे भैया बहन ध्यान दे, साफ सफाई अच्छी तरीके से करें और वह कूड़े को प्रबंधन अच्छो करें और वह गड्ढा में डाल देंगे तो वो देसी खाद बनकर उभरेगा। लेकिन राकेश भैया आज बात करेंगे अल्पसंख्यकों हेतु कल्याणकारी योजनाओं पर, लेकिन बात से पहले सुन लेते हैं जरूरी संदेश।
2: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।

0: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
1: देखो भैया, बातचीत चल रही है कि आज हमारी चर्चा को विषय है अल्पसंख्यकों हेतु कल्याणकारी योजनाएं। देखो भैया, जा तो आप लोगों के लिए पता है कि हमारी सरकार जो है भरपूर प्रयास करती है कि जो हमारे अल्पसंख्यक भैया हैं उनको भी हर प्रकार से कल्याण हो।
2: देखो, सरकार को भैया लक्ष्य रहता है कि बिना भेदभाव के जितनी भी योजनाएं हैं हमारे जो जन जन तक पहुंचे, उसमें से कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो अल्पसंख्यक के लिए विशेष तौर पर सरकार ने दी है।
1: बिल्कुल भैया, बात आप सही कह रहे हो। देखो, जैसे कि अगर बात करें घर के जो वजीफा मिलते हैं, तो जो हमारे अल्पसंख्यक हमारे भैया बहने हैं उनके लिए कुछ अतिरिक्त लाभ है। जैसे चाहे कक्षा 1 से लेकर 8 तक के वजीफा की बात करो, चाहे 9वीं से लेकर 10वीं 11वीं 12वीं की बात करो,
2: और चाहे भैया 12वीं से ऊपर की उच्च शिक्षा की बात करो, सब शिक्षा में जो है जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन है उनके लिए काफी कुछ जो है योजना से लाभ दो।
1: बिल्कुल भैया, और अगर हमारे अल्पसंख्यक भैया और ऊंची पढ़ाई करना चाह रहे हैं, डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, या कोई भी बड़ो कोर्स करना चाह रहे हैं, तो उसमें भी वजीफा की व्यवस्था करी गई है।
2: भैया है का जब वजीफा की व्यवस्था करी क्यों हुई है? अब राकेश भैया देखो, जैसे सबके पास भैया तो पैसा ना हो तो बाहर जाकर पढ़ पाओ। अगर बालक पढ़ने में अच्छो है, काबिल है, लेकिन उसके पास भैया पैसा ना है, तो वो अपनी जो उसके अंदर हुनर है उस हुनर को दिखा कर वो सरकार से उसकी मदद ले सकता है और आगे तक अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। और एक बात भैया और है, सरकार ने हमारे जो अल्पसंख्यक भाई बहन है ना उनके लिए कौशल विकास एवं रोजगार मुखी प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी है। अगर किसी के अंदर भैया हुनर है, कोई किसी प्रकार को हुनर ले लो आप, चाहे जैसे हम सबसे छोटी बात करें कि साइकिल को पिंचर जोड़ने की बात कर ले हो, या कोई चीज बनाने की बात कर ले हो, या मतलब जो भी उनके हाथ का हुनर है उस हुनर को प्रशिक्षण भी सरकार द्वारा कराया जा रहा है।
1: हाँ भैया, बात आपने बहुत अच्छी बताई। और देखो, एक प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से भी, और इसके साथ ही साथ अगर बात करें ऋण और रोजगार योजना की, तो ऋण और रोजगार योजना के माध्यम से हमारी सरकार को यही प्रयास है कि हमारे जो अल्पसंख्यक भैया हैं जिनके पास में पैसा की समस्या है, कोई अपना काम धंधा ना कर पा रहे हैं, तो सरकार से उनके लिए ऋण प्राप्त हो जाते हैं। ऋण प्राप्त करने के लिए उनको जहां भी खाता वगैरह चल रहा है जिस बैंक में, वहां जाए के मैनेजर साहब से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, का का कागज उनके लिए ले जाने हैं वे कागज ले जाएं, और जो भी बाकी प्रक्रिया है वे प्रक्रिया को अपनाने के बाद में जो एक निश्चित धनराशि है, शुरुआत में तो देखो भैया थोड़ा ही लोन मिलता है, छोटे मोटे काम करने के हिसाब से कितनों मिल सकता है उनके आधार पे, उनके कार्य के आधार पे या जानकारी उनके लिए बैंक में पहुंचने के बाद मिलेगी।
2: देखो भैया, होता है ना, जैसे हम कोई काम करने की सोच रहे हैं तो पहले उसकी नींव तो रखोगे, तभी तो बड़ी चीज पहुंच जाओगे एक साथ। तो सरकार जय चाहती है कि पहले नींव रखो, नींव के साथ काम की शुरुआत करो, और जैसे जैसे आपको काम बढ़े वो धीरे धीरे हम आपकी समय समय पर मदद करते रहेंगे। तो बहुत सारी योजनाएं हैं ऐसी, जैसे एक योजना है प्रधानमंत्री विकास योजना, नई मंजिला योजना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, महिला सशक्तिकरण आत्मनिर्भरता स्वयं सहायता समूह के लिए भैया बहुत बड़ी भूमिका है, लघु उद्योग एवं उद्यमता को बढ़ावा भी सरकार ने अल्पसंख्यक के लिए दो है।
1: देखो भैया, जो जागरूक भैया हैं हमारे वे तो ये जानकारी को लाभ उठाते हैं, किसी ना किसी प्रकार से अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, और जैसी उनकी आवश्यकता होती है, अगर उनके लिए लोन की आवश्यकता है तो वे लोन प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारी बहने हैं वे गांव-गांव में उन्हें समूह को निर्माण कर रखो है, और समूह को निर्माण के साथ साथ उनके लिए जो भी छोटी मोटी धनराशि की आवश्यकता होती है वो प्राप्त कर सकती हैं।
2: राकेश भैया है का समूह से तो बहुत ज्यादा काम जो है हमारी जो माताएं बहनें हैं वो कर सकती हैं। बहुत से ऐसे रोजगार हैं, बहुत से लघु उद्योग कुटीर उद्योग ऐसे हैं जो समूह की मदद से सरकार से लाभ ले सकते हैं और उनको चला सकते हैं। बस उसको चलाने को तरीका और नियत जो है वो सही होना चाहिए भैया।
1: बिल्कुल भैया, बात आपने सही कही, कि जो इस

0: प्रकार के लघु उद्योग हैं, अगर हमारे भैया या बहन बाको अपनाना चाह रहे हैं, तो उसके जो प्रशिक्षण की व्यवस्था है वो भी सरकार के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क है।
1: और सबसे बड़ी बात भैया, आज सरकार ने एक बात और सोची है कि जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं ना, उनको भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये सब योजनाएं चलाई गई हैं कि जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन हैं वो भी जो समाज की जो मुख्य विकास की धारा है उससे जुड़े। और सरकार को एक भैया उद्देश्य रहता है ना कि सब जो है एक समान रहे, सबको लाभ मिले वो एक समान मिले, सबको काम मिले वो एक समान मिले, बस जो है जिसमें जैसी योग्यता होगी वही सुबह को काम मिल जाएगा।
0: बिल्कुल भैया, बहुत अच्छी आपने जानकारी दी, हमारे भैया लोग जा जानकारी को जरूर लाभ उठावेंगे। देखो, जैसे कि हमारे कार्यक्रम की परंपरा है, हम चाहते हैं कि हमारे कार्यक्रम को जो भी भैया लोग सुन रहे हैं उनकी फरमाइश हम शामिल करते हैं, वे लोकगीत की फरमाइश हमारे पास में भेज जाते हैं, उनके नाम हम पढ़ते हैं। तो भैया आज जा देखो हमारे कौन कौन से ऐसे भैया हैं जिनने अपने नाम लिख के भेजे हैं और लोकगीत की फरमाइश हमारे पास भेजी है।
1: देखो राकेश भैया, सबसे पहले सब्जी मंडी कस्बा उसावा वार्ड नंबर 1 जिला बदायूं से हमारे जो भैया हैं वो लिख रहे हैं, राम राम भैया, तो इनको भी हमारी राम राम। लिखने वाले हैं धर्मवीर कश्यप, उषा कश्यप, ध्यानपाल कश्यप, संजय कश्यप, अनमोल कश्यप, अंश कश्यप, कुमारी करिश्मा कश्यप और डॉक्टर मुस्कान कश्यप। और अगली फरमाइश राकेश भैया हमारे साथ है, शाहदुल शहर राजस्थान से राम कुमार मेवाड़, चंद्रकला रेवाड़।
0: और भैया अगले साथी हैं, आप हैं हमारे नियमित श्रोता, ग्राम दूने नगर जिला बदायूं से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार, सत्येंद्र कुमार, गुड्डू, विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, नित्या, सरिता और अंतिमा।
1: राकेश भैया, उत्तम सिंह जंगेल लिख रहे हैं ग्राम धमदा सुखरी कला से कि गांव की मिट्टी में वह ताकत है जो इंसान को अपनी जड़ों से जोड़े रखती है। लिखन वाले हैं अमित जंगेल, सुकुन जंगेल, आरसी ओसका, आदित्य जंगेल और अंजलि जंगेल। अब इन सब भैया बहन की पसंद से सुन लेते हैं जो लोग।

0: इवन अभी आप सुन रहे हैं लोकगीत रुक जा परदेसी आज हमारे गांव में। राकेश भी ये कितनी पुरानी याद आ गई जब लोकगीत सुन गए कि पहले गांव में अक्सर जाए हो तो कि कोई परदेसी अगर आएगो तो बाको कम एक लोटा पानी कुआं से भर के पिया देते और पीपर की छांव में चार छह बुजुर्ग भैया गांव के बैठे रहते, उनको बैठार के सम्मान के साथ पानी पिया जातो। और भैया बतो क्या कही जाती कि भैया आज को आराम हमारी गांव में कर ले।
1: भैया बात सही कह रहे हो, पहले के लोगों में जो प्रेम हो मेहमान को जिस प्रकार से पकड़ते आवगत करते वो चीज दिन पे दिन खैर कुछ कम हो चली जा रही है, लेकिन फिर भी गांव में आज भी काफी यह चीज देखने को मिलती है कि जो पेड़ वगैरह होते हैं लोग वहां पर बैठे रहते हैं, कोई अगर राहगीर वहां से निकल रहा है भैया आप वो बैठ ले सत्ता ले इस प्रकार से उन्हें संबोधित करते हैं बैठालते हैं।
0: आज के दौर में कम है, लेकिन जब घर के छोटे छोटे भैया हमने खुद अपनी आंखों से देखे कि जब हमारे दादा परदादा जब पेड़ नीचे बैठे होते हैं कोई राहगीर जब निकल के जाते तो भैया एक आदत और ही पता कौन सी, जब चार आदमी बैठे देखते राहगीर तो दूर से भैया राम राम कर लेते कि भैया राम राम, तो आदमी बड़ा प्यार से बैठार के बुलाते कि भैया राम राम करिए तो आओ इन्हें आराम से बैठा लो पानी पिलाओ शरबत पिलाओ। और जब गर्मी में आपने सुलोकी सुनवा दो कि कुआं को ठंडो पानी पी लियो पीपर की छाए रुक जाओ परदेसी, तो ये चीजें आज भी अगर तरोताजा कर ली जाए तो भैया बचपन की याद आ जाती है। अभी अपने भैया बहन से और बातचीत करेंगे, कुछ जानकारी अपने कार्यक्रम में सुनवाएंगे, लेकिन बात से पहले सुन लेते भैया जरूरी संदेश।
2: चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट स्टेडियम रोड बरेली, सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य,
3: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
0: बाकी भैया देखो अभी हम आपसे कह रहे हैं कि अपने कार्यक्रम में जानकारी अपने भैया बहनों को सुनवाएंगे, और भैया जानकारी देखो सुनवाते हैं जो हमारे भैया बहन खेती बाड़ी करते हैं पशुपालन करते हैं, इन सब चीजों से अधिक लाभ कैसे लें, क्योंकि हमारे भैया को मेन उद्देश्य रहता है कोई काम करने को, कोई भी काम करो उद्देश्य जाहिर रहता है कि हम बाको अधिक लाभ कैसे लें। तो आज के कार्यक्रम में हम कुछ गोष्ठी लेकर आए हैं, विषय है खेती एवं पशुपालन से अधिक उत्पादन कैसे लें। प्रतिभागी हैं सुरेश चंद खंडारी लाल गेंदर लाल और संचालन कर हुआ है हमारे भैया कृष्ण पाल मौर्य। तो राकेश जी आप सुन लेते जा कृषक गोष्ठी।
4: भैया बहनों आज हम आपके लिए कार्यक्रम में लेके आए हैं कृषि गोष्ठी, और आज की कृषि गोष्ठी में हमारे साथ हमारे आज के मेहमान हैं वो कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, तो सबसे पहले उनका परिचय जान लेते हैं। जी भैया अपना नाम और पता बताओ, कहाँ से आप कार्यक्रम में शामिल हुए हो?
5: गेंदर लाल नौगुआ वीरान तहसील नवाबगंज से शामिल हुए हैं साहब
4: जी। और आप भैया?
6: सुरेश चंद्र बरखना तहसील नवाबगंज
4: जी। और आपको परिचय भैया?
7: खंडारी लाल नौगुआ वीरान तहसील नवाबगंज
4: जी। आप तीनों लोगों को

0: कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और देखो भैया, आज जो हमारा विषय है वो है खेती के साथ साथ पशुपालन से अधिक आमदनी कैसे प्राप्त करें। तो जब विषय पर आज हम कृषि गोष्ठी में बातचीत करेंगे, तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे अपने खेती बाड़ी सब करते हैं, खेती के संग संग पशुओं पालते हैं, और अपनो जय हर संभव प्रयास रहते हैं कि जो खेती बाड़ी कर रहे हैं वहां से हमको अच्छी उपज प्राप्त हो, पशु पालना है उनका अधिक उत्पादन हमको मिले, और लाग लिपट कर सब बालक बच्चे होते हैं बेहू काम में लगे रहते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं। तो गेंदलाल जी, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे जो पशु हैं उनको खेती में क्या योगदान है?
1: खेती में योगदान इनको जो है खाद मिलती है हमें बढ़िया तरीका से, वो खाद हम खेत में डालते हैं, अच्छी तरीका से पैदावार मिलती है उनसे। उसके अलावा दूध मिलता है हमें, दही मिलता है, काम आता है, सब बच्चे खाते पीते हैं।
0: जी सुरेश चंद जी, आप बता रहे जो पशु हैं हमारे किस तरीका से हमारे मददगार होते हैं और कौन कौन से फायदा है?
2: पशु पालने से यही फायदा है, खेती में घूरा बनता है उसमें घूरा डालो और खेती बढ़िया पैदा हुई, और अपने भी हाथ पैर चलते रहेंगे, अपना भी सही रहोगे, उसके सहारे कुछ नहीं कर रहे तो अपने घर बैठोगे, और जब वो पालो तो उन्हें चारा लाभ हो काट गए और उनसे लाभ मिलेगा। दूध हुआ अगर घर पर जितना यूज रहा उतना घर पर यूज करो, नहीं हुआ अगर बच रहा अपने उसे बेच लियो,
0: बिक्री जब कर लेगो तो थोड़ी बहुत आमदनी
2: होगी।
0: खंडाई लाल जी, आप भी कुछ अपने विचार बताइए कि जो पशु हैं वो खेती में किस तरीका से सहायक हैं?
3: वे खेती में भाई इस तरीका से सहायक हैं, हम तो खेती करते हैं और खेती के अलावा हमारे पास दो गाय हैं,
0: अच्छा
3: अच्छी जाति की दो गाय, तो उनको दूध की बिक्री करते हैं, कुछ घर पर इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आमदनी दूनी हो जाती है।
0: जी, और जो घर के बालक बच्चे बेहुआ में लगे रहते हैं
3: वो लगे रहे सब।
0: चलो बहुत बढ़िया बात है, तो पशुपालन आप सब लोग कर ही रहे हैं।
3: हाँ।
0: और जाके संग संग खेती बाड़ी हो रही
3: खेती
0: है, तो खेती में इस समय कौन कौन से काम चल रहे हैं?
1: इस समय साहब गन्ना की खुदाई चल रही है, गन्ना की तैयारी चल रही है, और आप पौध डालने को समय पौध डाल रहे हैं, कुछ लोगों ने डाल दी है, धान की पैदावार हुई।
0: जी, आपने धान की पौध डाल दी?
1: अभी नहीं डाली, डालेंगे हम।
0: अच्छा, तैयारी में लगे?
1: तैयारी में लगे।
0: कैसे तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी?
1: खेत जुताई करी है, जुताई करवाई गई खेत की, अब धान ले जाएंगे तो धान भिजवाएंगे, फिर उसकी जबई बनावेंगे, तब खेत में डालेंगे।
0: जी सुरेश चंद जी, अभी गेंदलाल जी बता रहे हैं कि जो धान की तैयारी ये कर रहे हैं, आपने धान की पौध अभी डाल दी?
2: ना डाल दी।
0: अच्छा, डाल दी।
2: डाल दी।
0: कौन सा धान की पौध डाली?
2: कोठलापुर।
0: कोठलापुर का खास बात है यहाँ
2: में, उसमें खाने में बढ़िया है वो।
0: अच्छा, और पैदावार कैसी?
2: पैदावार भी सही है।
0: अच्छा, तो जो आप बता रहे हो कि धान की पौध आपने डाल दी, किस तरीका से डाली, कौन कौन सी बातें हैं जो ध्यान रखी वहाँ में?
2: उसमें जे ध्यान करा लाए के जबई कर दाबी और फिर जबई बनाई उसकी, और जबई बना के फिर खेत में बो दी, और उसमें जे देखी कि जे फूट गया धान सब बढ़िया तरीका से जबई हो गई।
0: अच्छा,
2: जबी खेत में पानी भर के पटेरा लगा के पौध डाल दी।
0: तो कितने दिन हो गए पौध को डाले हुए?
2: अभी डालिए 29 तारीख।
0: खंडाई लाल जी, आपकी क्या तैयारी चल रही धान की फसल को लेकर?
3: जी धान की तैयारी हो रही है, अब गड़ाई की पौध हो गई है 15 दिन की।
0: अच्छा, 15 दिन की पौध आपकी हो गई।
3: हाँ।
0: चलो बहुत बढ़िया बात है, आप कौन सा धान लगा रहे हो?
3: PR 13।
0: PR 13 जामा का खास बात है?
3: जामा खास बात ये है, इसकी पैदावार ज्यादा है, बिक्री सही से मिल जाती है, इससे फायदा हो जाता है।
0: और खान में कैसे हुआ?
3: खान में तो बढ़िया नहीं है,
0: मतलब मोटो धान है।
3: हाँ, मोटो।
0: तो 15 दिन की आपकी पौध होगी। सुरेश चंद जी, जो पौध डालते हैं, चूंकि आप पौध डाल चुके हैं और खंडाई लाल जी की पौध 15 दिन की हो गई है और गेंदा लाल जी अभी पौध डालेंगे, तो चूंकि पौध आपने अभी जल्दी में डाली है, तो जो पौध की जो जबी बता रहे हो आप, बाकी हम बुवाई करते हैं खेत में, वो किस तरीका से करी जाती है? कुछ लोग कहते हैं कि जबई को खेत में बोते समय पीछे को हटना जरूरी होते हैं।
2: पीछे हटाओगे तो वो बढ़िया होगी, उससे पैर नहीं बनेंगे, आगे को बढ़ के जाओगे तो पैर बनेंगे, उसमें गड्ढे में जाएगा दाना, तो उसमें उखेड़न में दिक्कत होगी,
0: इसलिए कहते हैं कि जो जबई बोते समय हम पीछे को हटना,
2: पीछे हटना चाहिए,
0: जो दानों है वो दबाए
2: नहीं, दबाएगा नहीं उससे।
0: चलो बहुत बढ़िया बात है, तो जो कन्हर वगैरह बनाओ जाते हैं वो कैसे बनाते हैं, क्योंकि छोटी क्यारी होती है। अच्छा,
2: हाँ, अच्छा जी, पौध वाला इसमें तो अपने वैसे ही जुतवा लिया, फिर मेल डाल ली, और फिर अगर ट्रैक्टर नहीं चल पा रहा तो पहले जुता हुआ उसमें पटेला आपने यहाँ घुमा दिया।
0: हमने जो देखी है कि गांव में एक पटेला ऐसे होते है, लकड़ी ले गए बामा रस्सी बांधी और अपने बालक बच्चे को लेकर गांव को बांधना, अपने पटेला आप बैठा दो, अपना खींच रहे हैं और अपने पौध डाल के वहां में कन्हर अच्छी तरीके से कीचड़ बनाई जाती है,
2: बस ऐसा ही करते हैं
0: वो, अपने बनाए दी और बाकी बाद अपने वहां में पौध की वो कर दी। अच्छा, पौध डालने के बाद रखाने भी पड़ती है?
2: जी रखाने तो पड़ती है, क्यों अब इतने टाइम पशु छूटे हुए बहुत हैं, उसमें तार उर लगाना पड़ता है, अगर लगाओगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा।
0: खंडाई लाल जी ये कह रहे हैं कि तार लगाने पड़ते हैं, लेकिन हम पहले देखते हैं कि जो हमारे भैया बहने वे चारों तरफ धोती बांध देते।
3: हाँ, धोती बांध दो, कुछ ना कुछ तो करने हैं हमसे,
0: तो धोती से रुक जाते हैं।
3: हाँ, धोती से रुक जाओ, धोती से तो और फायदा है।
0: हाँ।
3: उसमें

0: ना कुत्ता पहुंचेगा, कोई जानवर छोटू ना पहुंचेगा।
1: तो बहुत ही सही है। गेनालाल जी, आप बताओ कि पौध की सुरक्षा हम किस तरीके से कर सकते हैं?
2: पौध की सुरक्षा धोती लगाए गाड़ करो, या बांध लगाए गाड़ करो, या तार लगाए गाड़ करो, बाउंड्री उसकी करनी है उसके बीच की, तभी उसकी तैयारी पूरी तरीके से पावेगी
1: जी। हम पहले देखते कि जब पौध डालते खेत में, तो कुछ लोग टहनी गाड़ देते, चाहे लिप्टिस की गाड़ दे या आम की टहनी तोड़ी बाम लगा देते, वे क्यों लगा देते?
2: वो इसलिए गाड़ देते चिड़िया उड़िया ना आवे, पहले बया बहुत होते, बया चुगते आएगा तो उसके वजह से भी नहीं आता
1: टहनी की वजह से।
2: टहनी की वजह से,
1: लेकिन टहनी हुई तो हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि बाप और ज्यादा पक्षी आएगा बैठेंगे
2: ना बैठेंगे।
1: अच्छा, और पहले ये भी तो देखते जो और जो अपने खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो फसल उगाते वहां में धोखा लगा देते, कपड़ा पहना देते और ऊपर मुंह पर कपड़ा बांध देते, बात से लीलगा वगैरह रुक जाते।
2: हाँ, लीलगा वगैरह उससे मानते हैं, जो देखते कि आदमी खड़ा हुआ तो ना आते हैं।
1: सूर्यचंद जी सही बात है जी।
3: जी वो लकड़ी जुगाड़ते हैं उसमें ये भी है कि हम दो धान कर रहे हैं तो एक इधर डाल दिया और बीच में पहचान बना दी उससे, एक धान की बेड़ इधर डाल दी, एक इधर डाल दी।
1: कोई बांसपति लगा रहे हैं तो अपने हमें ध्यान लाए, कोई बांसपति इतने लगी हुई है और मोटो धान हमने
3: मोटा इधर है,
1: बाकी पहचान बनी रहती है,
3: पहचान भी रहती है।
1: इस तरीके से जो है हम मतलब पौध डालते हैं। खंडाईलाल जी, हमने देखी कि जो पौध हम डालते हैं छोटी छोटी क्यारी बनाते हैं, जाके पीछे का कारण होता है, क्यों छोटी क्यारी बनाई जाती है?
0: कुछ क्यारी इसलिए बनाते हैं, जो बेड़ हुआ था वो अलग अलग डालते हैं, कई तरीके की बेड़ डालते हैं, और कुछ एक एक खेत बना लिया था तो उसमें भी लकड़ी बना लेते हैं
1: ना। क्यारी की जो मेड़े होती है पतली पतली बनाई जाती हैं, कुछ लोग कहते हैं कि निराई में आसानी रहती है कि मेड़ पे बैठ के अपने निराई दो, या इस तरीके का कुछ है?
0: हाँ, बेड़ की, बेड़ की अब तो वो घास फूस नहीं होती है।
1: अच्छा, दवाई डाल दी जाती है?
0: दवाई डाल दी।
1: चलो बहुत बढ़िया बात है। तो इस तरीके से आप पौध की तैयारी करते हैं। पौध जब कुछ समय बाद जब हो जाती है, जैसे आप बता रहे हैं 15 दिन की पौध होगी, पौध पीली भी पड़ जाती है
0: ना, उसकी देखभाल करने हो तो दवाई लगाने होती है। अच्छा। कि इसमें क्या मर्जी लग रही क्या नहीं है। अभी हमने कल मेड़ में वो फोलेट डाली, जैसे कोई भी किरवा उरवा है तो वो मर जाए उसमें।
1: अच्छा, जब जहाँ से पहले जो कहते हैं गर्मी की जुताई करना बहुत आवश्यक है, जैसे हमने उस समय गेहूं की कटाई करी, बाकी बात जो किसान भैया बहन है वो गर्मी की जुताई अपने खेतों की कराते हैं, जैसे का फायदा होता है गेनालाल जी?
2: उससे फायदा जो होता है जमीन को तप जाती है, खूब तप जाती है, उसके कीड़ा जो महीने महीने वो भी मरते हैं। अब पानी बरसा फिर दोबारा जुताई होती है, उससे पानी बैठ जाता है पूरे खेत में, जो तो वो खेत हो तो
1: जी
2: अंदर तक नमी पहुंच जाती है, खेत ठंडा जाता, तब पौध डालो तो ज्यादा बढ़िया बात रहता है।
1: और जो खरपतवार होते हैं
2: भी जमे आता
1: है, बाकी बात जब जुताई करते हो तो वायु नष्ट हो जाता,
2: नष्ट हो जाता
1: जी। बिल्कुल बात सही है। अच्छा सूर्यचंद जी, ये तो हमारे धान की पौध की बात चल रही, अब इस समय जो खेतन में फसलन की बात जो चल रही है, तो गन्ना भी आप करते होंगे?
3: हाँ, गन्ना है,
1: गन्ना खड़ो है
3: जी।
1: कैसे हुआ गन्ना?
3: गन्ना बढ़िया है।
1: क्या काम करने पड़ रहा है गन्ना?
3: गन्ना में खोद और पानी स्प्रे बस जी करना पड़ रहा है।
1: अच्छा,
3: अगर दिक्कत लग रही तो स्प्रे करवा दो, उसमें दवाई लाएंगे, और नहीं दिक्कत तो खाली पानी लगाए रहो बराबर।
1: पानी कितने दिन बाद लगाने पड़ रहा है?
3: पानी इतने टाइम गर्मी में तो हफ्ता में लगाने पड़ रहा है, एक हफ्ता नहीं कट रहा है, जब उससे पहले लगाने पड़ रहा है।
1: खंडाईलाल जी, गन्ना आप भी करते हैं?
0: हाँ।
1: खेती बाड़ी काम ऐसे होता है जिसमें हर रोज कोई ना कोई काम लगू ही रहता है।
0: हाँ।
1: और खेतन पर हम लोगों के लिए जाने पड़ता है, मेहनत करते हैं अपने, तो गर्मी ऐसी जो लू चल रही है, तपन हो रही है, ऐसे में जहाँ हम अपने सेहत को कैसे ध्यान रख रहे हो कि हम सही बने रहे, स्वास्थ्य हमारा सही रहे, का ध्यान रखते हो?
0: इसको ध्यान जो है ज्यादा गर्मी में काम मत करो, खेती काम करो, सवेरे जल्दी में कर लियो और शाम को कर लियो, दोपहर में काम मत करो।
1: और गमछा वगैरह भी सर पे बांध लेते
0: हो? सर पे बांधे रहो,
1: पानी वगैरह तो ले ही जाते होंगे?
0: हाँ, पानी तो रहता है।
1: सूर्यचंद जी कहूँ, अगर हमें कोई स्प्रे करने की बात आती है खेत में कि किसी कीटनाशक की हमें स्प्रे करने हैं, तो उस समय का ध्यान रखते हो?
3: उस समय मुंह से ढाटा बांध लेते हैं।
1: अच्छा,
3: मुंह पे बांध लिया अंगोछा और बस अब वैसे कर दी।
1: दस्ताने वगैरह भी पहन ले तो?
3: हाँ, वो भी पहनते हैं।
1: लेकिन गेनालाल जी, हमने कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं कि स्प्रे कर रहे हैं खेत में, कभी बीड़ी में छुट्टा मार लो, कहू तमाकू लई व रगड़ लई और लई मुंह में डाल ली,
2: वो गलत है। वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए।
1: अच्छा,
2: हाँ,
1: कैसे गलत है?
2: गलत ऐसे जैसे हमने दवाई घोल बनाओ या दवाई के छींटा आए गए और हमने उसे तमाकू रगड़ी, तो वो हमारे असर अंदर पहुंचे, एक तो दवाई की जो सुगंध है वो थोड़ी बहुत तो पहुंचती है, ऊपर से तमाकू खाई उसको नशा, तो वो नुकसान देती बहुत ज्यादा।
1: ऐसा ना करना चाहिए।
2: हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए।
1: सूर्यचंद जी, कुछ लोग जब स्प्रे करने जाते हैं तो अपने बालकों को संग ले जाते हैं
3: जी,
1: कि चलो बालक जो है टंकी उठवाए दे, और जो दवाई के डिब्बा होते हैं हम देखते हैं कि बालक ने वहां में डोरा बांधो और वहीं पर गाड़ी बना के बाबू खेल लो, चला रहो चक रोड पे, मट्टी भल रही भाई में,
3: वो गलत करते हैं, वो डिब्बा फेंक दिया जाए उन्हें।
1: खंडाईलाल जी, सूर्यचंद जी कह रहे हैं कि डिब्बा जो

0: फेंक दे जाए, लेकिन जो हमारे पशु है कभी कभी जंगल में जाते हैं, कभी हम पानी पिलाते ले जाते हैं, नहरें चली रही हैं गाँव में, या कभी चारा चुगाते ही ले चले जाते हैं कुछ लोग, तो अगर डिब्बा अगर वहाँ पड़े होंगे खुले रूप में तो हो सकता है कि हमारा पशु चाट भी लेगा।
1: हाँ चाट ले, डिब्बा खुले में नहीं छोड़ना चाहिए, स्प्रे के बाद में डिब्बा खेत में गाड़ देना चाहिए, वो मिट्टी में दाब दे, इसके बाद में ना बालक को मिलाए ना पशु को मिलाए।
0: जी आज के समय में हमारे किसान साथी अपने खेतों में देखा देखी में खूब अंधाधुंध खादें डाल रहे हैं, कीटनाशक दवाइयां लगा रहे हैं।
1: हाँ।
0: अगर श्यामलाल चाचा अगर खाद डाल के आए हैं तो हम सोचते रहे जाओ बालों को तुम ले जाओ खाद और अपने खेत में डाले आओ, लेकिन जहाँ से पहले कहते हैं मिट्टी जांच कराना बहुत जरूरी होते हैं।
1: हाँ।
0: तो जी सही है कहा कि देखा दूनी में खाद हम डाले,
1: ज्यादा खादे लगेंगे, देसी खाद को इस्तेमाल करना चाहिए ज्यादा कर।
0: जी गिनलाल जी ये कह रहे हैं कि देसी खाद को इस्तेमाल करना चाहिए और आपकी उम्र भी लगभग काफी हुई चली है, तो आपने पहले देखी हुई कि जो हमारे किसान साथी है चूंकि धान की खेती की बात चल रही है तो उस समय देखी होगी कि पहले लोबिया है, पटसन है, सनई है, बाको अपने जिस खेत में हमें धान लगाने होते वहां में बुवाई कर देते।
2: हाँ ढेंचा जैसे बह दो और सनई बह दई,
0: या
2: मान लो चरी बह दई, चरी खवानो काम मात, बल्कि ज्यादा फायदामंद जो ढेंचा है और सनई ये चीज उसमें गलाय दो तो खेत में ताकत बढ़ती है।
0: लेकिन अब ऐसे कम देखने को मिल
2: रहा है, अब कम हो रहा हूँ, कम हो रहा हूँ, इस वजह से लीलगा वगैरह नहीं रख रहे हैं, बाजार बहुत हो गए, कहाँ रखाए गए,
0: लेकिन फायदेमंद तो है,
2: फायदेमंद बहुत है, अब बाजार ज्यादा नुकसान कर रहे हैं
0: इस वजह से ना कर पा रहे,
2: इस वजह से ना कर पा रहे हैं,
0: तो पैदावार में कहूँ ना कहूँ तो अंतर
2: फर्क तो आवेगा। अब वह है देसी खाद डाल लो उसी से जो पैदा हुआ थोड़ी बहुत खाद लगा रहे हैं, कीटनाशक लगा रहे हैं तब पैदा हो रहा हूँ।
0: सुरेशचंद जी गेनालाल जी कह रहे हैं कि देसी खाद डाल लो लेकिन पशु हम उतने पाल ना पा रहे हैं, पहले देखे हुए कि पशु जो है बहुत सारे पशु होते ले जाते हैं चरागाह में चरा लेते हैं, चूंकि अब सब में खेती हो रही है चरागाह रहे ना तो पशु न पाल रहे हैं, तो जब पशु न पालेंगे तो देसी खाद कहाँ से मिलेगी?
3: पशु तो पालना ही पड़ेंगे भाई, पशु से बहुत बड़ी सुविधा है, पशु से अगर पशु पाला हो तो उसका दूध भी मिलेगा और घूरा भी बनेगा, वो अपने घूरा अपने खेत में इस्तेमाल करो और बच्चों के लिए दूध घर में होएगा, फालतू तो अपने बिक्री भी कर लियो।
0: सही बात है, लेकिन पशुपालन है बहुत जरूरी।
3: हाँ है बहुत जरूरी।
0: खंडाईलाल जी जो पशुपालन की जो बात चल रही है कि जो हमारे किसान भैया बहन पहले बहुत पशु पालते लेकिन आज पशु बहुत कम पाल रहे हैं, क्या कारण मानते हो जाके क्यों ना पाल पा रहे हैं, पशु का बात कहा है
1: जे इसलिए ना पाल पा रहे हैं? अब जैसे गाय है तो गाय को जो बछड़ा है पहले तो बिक जाता हूँ, अब बिकना ही रहो तो इसलिए आदमी नहीं पाल रहा हूँ, अब भैंस हर आदमी पालना पाए रहो क्यों, भैंस पे है बहुत महंगाई।
0: लेकिन भैंस पे महंगाई तो है, अगर एक बार हम भैंस ले लेंगे उसके बाद में वहां से दूध की प्राप्ति हुई हमें,
1: हाँ।
0: फिर जो पड्डा होए वो पड़िया होगी, बाकी हम बिक्री करेंगे अगले चल के, तो एक तो हमने वहां से दूध लो, देसी खाद के लिए गोबर मिलो हमारे, और जाके संग संग जब अगर पड्डा पड़िया हो तो उसकी बिक्री करके भी हम अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं,
1: आमदनी बढ़ जाएगी।
0: क्या विचार है गेनालाल जी?
2: भैंस पालना जरूरी है मगर भैंस सबको लेना ही मिल रही महंगाई, हर आदमी ना ले पा रहा वो।
0: अच्छा
2: अच्छा गाय जो है कम पैसा में जैसे मिल रही है तो गाय अपने जैसे दो गाय हमारे पास है तो वे पाल रहे उनसे गोबर मिल लो दूध मिल लो और खाद भी तैयार हो रही है
0: जी,
2: और गोबर से कंडा भी बन रहे हैं, वो जलान के भी काम में आ रहे हैं और घुरू भी बनता है बाद में।
0: जी बात बिल्कुल सही है, तो जे तो मान दो कि यहाँ पशुपालन करना बहुत जरूरी है,
2: बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी पशुपालन करना, चाहे गाय पालो या बस है तो भैंस ले।
0: सूर्यचंद जी जो आजकल के बालक हैं
3: जी,
0: हम पढ़ाते लिखाते हैं उनके लिए
3: जी,
0: और उनसे कह दो कि लला खूंटा में गांठी लगा दो, या जब भैंसी या खूंटा तो खोल के बाप खूंटा बांध दो।
3: बच्चे बहुत कम पसंद कर रहे हैं, वो तो बच्चे जो कहते हैं कि हाँ इसे बेचो हमें कोई मतलब नहीं है, हम नहीं छुएंगे, लेकिन अपना करने पड़ती है, तो छोटे बच्चे नहीं देखते उनके आज
0: कहीं नौकरी की बात आती है तो 2-4 हजार रुपए नौकरी करते ही बाहर चले जाएंगे।
3: हाँ
0: लेकिन अगर पशुपालन के लिए कहा तो पशुपालन ना करेंगे,
3: ना करेंगे,
0: लेकिन हम मानते हैं कि खेती के साथ साथ अगर पशुपालन करें तो हम अपने घर को विकास अच्छे तरीके से
3: अच्छे तरीके से हो।
0: अच्छा माताएं बहनें जो हमारी होती हैं वे तो सहयोग पूर्व करती हैं,
3: वे सब लगे रहते हैं बच्चे और माता बहन सब लगी रहती है,
0: हाँ। कभी चारा लाने है खेत से, कभी घर पर आके कुट्टी काटने है, या हम खेत पे काम कर रहे हैं तो पता लगी पशु घाम में बंधो रम्या रहो उनको खोल के बांध दो,
2: ऐसा हुआ हम तो खेत पे हैं, पशु हमारो घर है, हमारे घर में जो लड़कियां हैं हमारी बहुएं हैं या हमारी पत्नी है वो सहयोग देती है पूरू, अब चरी काट के लाए हम अकेले खांद नहीं सकते तो बच्चे बाहर हैं तो पत्नी को सहारो लेने पड़ते कि चलो तुम मोख लगा दो, इसके बाद नांदे कर दो, कुछ ना कुछ तो उन्हें भी उनसे भी करवाना पड़ता है।
0: ना, बात सही है, क्योंकि हाँ। जब हम सब मिलकर काम करेंगे
2: तभी तरक्की होगी,
0: तभी तरक्की होगी, अपने बालकों को अच्छे तरीके से पढ़ा लिखा सकते हैं और जो और घर के काम धाम जो हमें करने हैं उनको भी सही तरीका से कर सकते हैं। खंडाई लाल जी, आज के दौर में हम जो सुनते हैं लोगों के मुंह से कि साहब खेती बाड़ी कर रहे हैं।

0: बात कुछ बचना रहो
1: बचे वो अगर सही से करो तब अब तुम खेती करे आए अब तुम 8 दिन देखने ना जाओ उसमें क्या लगो क्या ना लगो उसकी डेली देखभाल करो खेती के साथ में कुछ ना कुछ और करो पशु पालो
0: खेती से जुड़े व्यवसाय हैं उनको करना चाहिए जैसे पशु पाल लो बकरी पालन इनको कर लो और अगर आपके पास थोड़ा पैसा है तो मुर्गी पालन भी कर सकते हो आप इस तरीके से जो
1: कुछ भी करो खेती के साथ में एक काम करने पर आयो।
0: अब ये बताओ जो आप कह रहे हैं कि आज के समय में लगातार काम करने पड़ता है खेती में और बाको लगातार देखने पड़ता है लेकिन पहले हम देखते थे कि जो हमारे बुजुर्ग है खेती में बुवाई कर गए और बाके बाद लहड़ू जोड़ो और साथ साथ इनको उतर खा रहे हैं
1: वो टाइम और अब खेती में देखो भाई डंगर ना खोन दे अगर तुम 8 दिन ना आएगा तो 8 दिन में खेत में कुछ ना रहे
0: सही कह रहे हो
1: डंगर उजार जाए
0: लेकिन सूर्यचंद जी पहले कैसे गौतर खाया
2: पहले गौतर खाया साहब तो वैसी फसल भी पैदा होती उनकी ना के समान फसल कटती थी आज के दौर में देख लो अगर मेहनत करने वाला है तो उसकी फसल अच्छी हुई
0: जी बात सही है पहले तो बिजली बोए रही अपने खेत में और बोए के अपने चले गए
2: गौतर खा
0: रहा है जमे आई अपने चल रही है जी कहानी जी कह रहे हैं कि अगर आज के समय में ऐसे करेंगे तो फसल पैदा ना हुई और फसल आज की जी बात सही है कि जो हम किसान भाई हैं उत्पादन लेने में काफी सफल हो रहे हैं जिस तरीके से हम अपने खेतों से उत्पादन ले रहे हैं काफी उत्पादन में लो कहीं ना कहीं देखने में ये आ रही है कि जो हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति है वो लगातार घटत जा रही है
3: उसकी जांच करने वाले पहुंचते हैं गांव में तो कभी कभी ले आते हैं मिट्टी उसकी जांच करवाई जाती है तो फिर वैसे वैसे बता वैसे करने पर
0: लेकिन फसल चक्र भी तो ना अपना रहे हैं पहले हम देखते कि चना बो देते अर्रा होती खेतन में उड़द हो तो मूंग हो तो ये सब फसलें करते अब तो आदमी अगर गन्ना कर रहे हो तो गन्ने पे लगो पड़ो है गेहूं बोए तो गेहूं पे कर रहे हैं या धान की फसल लगा रहे हैं तो धान की फसल लगातार लगा रहे हैं
3: ऐसा लील घा अर्रा नहीं हुन दे मसूर बह दो तो अर्रा लील घा नहीं हुन दे चना बह दो लील घा नहीं हुन दे ये कई मजबूरियां हैं अब गन्ना में भी कुछ गन्ना ऐसे जिन्हें बाजार ना खा रहा हो अब कुछ गन्ना ऐसे बहुत मन से खाते हो ना तो जी है इसलिए जो चना की और अर्रा की मसूरी पैदावार इस वजह से कम भई है
0: बिल्कुल सही कह रहे हो लेकिन कम भई है लेकिन कहीं ना कहीं इसी वजह से हमारी जो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो कम हो जा रही है क्योंकि देसी खाद हम अपने खेतन में भरपूर तरीके से देने पा रहे हैं हरी खाद की पलटाई अपने खेत में करना पा रहे हैं पशु पाल रहे हैं जो हमें गोबर की देसी खाद मिले और जो हम जो फसलें उगाते अर्रा है उर्द है मूंग है जी फसलें भी ना कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उत्पादन लेने में सफल हो रहे हैं और हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति लगातार हमारी जो है कम हो जा रही है तो कुछ प्रयास हमें आज जी करने पड़ा है पुनः उसी स्थिति में आने पड़ा है हल्के हल्के जैविक खेती पर हमें आने पड़ा है जिससे कि जो शुद्ध उत्पादन हमें मिले बाको हम खा के अपने हष्ट-पुष्ट हुए और हमारी जो भूमि की सेहत है वो भी सही बनी रहे और कुल मिला के हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं गेंदलाल जी सूर्यचंद जी और खंदाई लाल जी कि खेती के संग संग हर किसान को पशु पालने ही पड़ेंगे
1: हाँ, पालने
3: बहुत जरूरी
2: बहुत जरूरी
1: बहुत जरूरी
0: क्योंकि जब तक हम पशु ना पालेंगे अपनो विकास ना कर पाएंगे और कहते भी तो हैं गेंदा लाल जी की खेती के बिना पशु अधूरे हैं और पशु के बिना खेती अधूरी
3: खेती अधूरी हकीकत है जी हकीकत है जी पहले हम बैल जब पालते तो हमारो एक कोनो ऊंचो है तो वो हम पटेला से पांव दाब खींच लेते आज ट्रैक्टर से वो ना है पा रहा हूँ क्यों ट्रैक्टर हर आदमी पास है नहीं अच्छा महंगाई इतनी डीजल है तो जुताई भी महंगाई है अब जब हम बैल पालते तो हम जुताई खूब करते आज बैल ना पाल रहे हैं इस वजह से कि बच्चे करना ना चाह रहे हैं काम वो बाहर काम करना चाह रहे हैं
0: पशुपालन को ध्यान ना दे पा
3: पशुपालन ध्यान ना दे पा रहे
0: पहले तुझे कहते जब आपने बैलन की बात कही कि पहले तुझे कहते कि 4-4 बजे से हर लेके चले जाते हैं
3: हमने खुद जोतो
0: और मनमानी जुताई करते
3: जैसे
0: कठिया हल अपने
3: कठिया हल हो कल्टीवेटर हो नब्जिया पंखी हो हैरो हो जो सब चीज चलाई है हमने मगर अब वो रूटावेटर जुतवाने पर रहो हैरो जुतवाने पर रहो तो खेत ऊंचे नीचे ज्यादा हो रहे हैं तो ब्लेड करवाने पड़ते फिर
0: सही बात है
3: समय समय पर
0: तो कुल मिलाकर जो है कि हम खेती के साथ साथ पशु जरूर पालें और पशु पाल के हम दूध की बिक्री कर सकते हैं पनीर बना सकते हैं मक्खन बना सकते हैं और जो देसी गोबर की खाद है वो तो हमको प्राप्त होगी ही तो ये तो आप तीनों लोग मानते हैं कि खेती के संग संग पशुपालन करना बहुत जरूरी है और जिससे कि पशुपालन करके हम अपनी तरक्की अच्छे तरीके से कर सकते हैं गेंदलाल जी सुरेश चंद जी खंदाई लाल जी आप हमारे कृषि गोष्ठी कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने बड़े ही महत्वपूर्ण ये जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई हम समझते हैं कि इस कृषि गोष्ठी को सुनकर हमारे किसान साथी लाभान्वित हुए होंगे कार्यक्रम में आने के लिए आप तीनों महान भावों का बहुत बहुत धन्यवाद
4: अभी हमारे भैया बहन सुन रहे कृषि गोष्ठी विषय हो खेती एवं पशुपालन से आय कैसे बढ़ाना तो राकेश भैया देखो कितनी अच्छी तरीके से बताई इन्हें कि हमें पौध कैसे डालना चाहिए खेती बाड़ी में काम कैसे करना चाहिए हमारा उद्देश्य रहता है अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि जो हमारे भैया बहन गांव में काम कर रहे हैं वे देखें

0: कि और किसान भैया बहन किस तरीका से काम कर रहे हैं, तो इनको सुनकर हमारे किसान भैया बहन में जरूर कुछ ना कुछ आपको लाभ लेंगे। और अब हम देख रहे हैं कि हमारे सोशल मीडिया पेज पे बहुत सारे भैया बहन कमेंट कर रहे हैं कि भैया जात जात एक लोकगीत हमें और सुनवा दो।
1: कौन कौन भैया हैं जरा उनके नाम भी शामिल करो।
0: तो भैया जी हमारे पास फरमाइश आई है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पी एस नवाकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, सोपान ताड़े और नारायण इंगले।
1: और भैया अगले साथी हैं इसी क्रम में ग्राम चंपतपुर पोस्ट बल्लिया जिला बरेली से वीरपाल सिंह, पवनदेव, देवांश, सुमन देवी, भरत कुमार, मुकेश।
0: ग्राम पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजय पाल यादव, शुभम यादव, शिखा यादव, ऋषा यादव, गुड़िया यादव, सुरभि यादव। और कटरा जानखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेद राम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति मौर्य। और एटा रोड गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम, सरता गौतम, लखनऊ पब्लिक स्कूल के पास बिशपुरी गांव से हैं नाम करण मौर्य, अनुज, अर्जुन मौर्य, प्रेमपाल, गोधन मौर्य। अब इन सब भैया बहन की पसंद सुन लेते लोकगीत, मैं गोरी पिया मो कारो मिलो कैसो मेरो नसीब।

0: भैया मैंने देखो अभी आप सुन रहे लोकगीत और हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो लोकगीत बहुत पसंद आए होगा। राकेश भैया देखो अब देख रहे हो घड़ी टिक टिक करके इशारों कर रही है कि भैया अब जो है और समय ना है कि अपने भैया बहन से बातचीत करें या जानकारी दें या मनोरंजन करें। मन तो ना होता है अपने भैया बहन से विदा लेने को, क्योंकि बातें ऐसी लगती हैं कि जल आग तक करता रहो अपने भैया बहन से बात।
1: कोई बात ना भैया, देखो समय सीमा में तो हम और आप सब लोग बंधे भाई हैं। अगले कार्यक्रम में फिर अपने भैया के बीच में लेके आवेंगे कुछ नई नई जानकारी, ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए अपने भैया से कहो तो अनुमति ले लीजिए।
0: तो भैया बहनों कार्यक्रम ग्राम जगत से अपने भैया सुरेंद्र
1: और अपने भैया राकेश शर्मा को दो अनुमति। भैया बहनों
0: राम राम, राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम जगत, ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए रेडियो हेल्पलाइन सुनिए। श्रोताओं, स्वास्थ्य संबंधी विषय पर होने वाले हमारे फोन इन कार्यक्रम रेडियो हेल्पलाइन में शुक्रवार दिनांक 5 जून 2026 को शाम 7:31 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं, उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। इसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 को शाम 4 बजे। इस संबंध में यदि आपका कोई प्रश्न हो तो हमें टेलीफोन नंबर 0581-251-7200 पर फोन करें। आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे स्टूडियो में बरेली के यूरोलॉजिस्ट एवं एंड्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार अग्रवाल उपस्थित रहेंगे। विवरण एक बार फिर सुन लें। विषय है गुर्दे की पथरी व पेशाब संबंधी समस्याएं, उनका आधुनिक इलाज, शंकाएं व समाधान। रिकॉर्डिंग की तारीख और समय याद रखिएगा, गुरुवार दिनांक 4 जून 2026 को 4:30 से, और हमारा टेलीफोन नंबर है 0581-251-7200। सूचना समाप्त हुई।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए कुछ ही क्षणों में सुनते हैं लखनऊ से प्रादेशिक समाचार।

0: अभी आप सुन रहे थे किसानों के लिए सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना।
3: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली है गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई मंत्री परिषद की बैठक में 24 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि मंत्री परिषद ने नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मंजूरी दी है।
4: नगरीय क्षेत्रों में जो हमारे 17 नगर निगम है और नोएडा, कुल 18 हमारे जो बड़े शहर है, उनमें ई बसें संचालित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव लेकर के गए थे और उसमें 1725 नई बसें चलाने का हमारा प्रस्ताव था, जिसे माननीय मंत्री परिषद ने मंजूरी दिया है। और ये बसें 17 नगर निगम है और प्लस नोएडा, उसमें जेवर जो एयरपोर्ट है उसको भी हम लोग कवर करने वाले हैं।
3: कैबिनेट ने सरकारी वकीलों के भत्तों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में दिल्ली एनसीआर में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने वाली योजना को मंजूरी दे दी गई है। मीडिया को जानकारी देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के भागीदार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से लागू किया जाएगा।
5: कैबिनेट में अप्रूव हुआ रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड ट्रक्स एंड बसेस रजिस्टर्ड इन दिल्ली एनसीआर टू BS6 और EV और CNG व्हीकल्स। इस स्कीम के लिए 5041 करोड़ रुपीस का आउटले है। सपोर्ट लेंगे गवर्नमेंट्स ऑफ दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। इनकी मदद से करीब 200,000 के आसपास ट्रक्स हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम बनाया जाएगा और करीब 16,000 बसेस हैं जिनको रिप्लेस करने का प्रोग्राम है। इससे हमारा मीडियम टर्म में और लॉन्ग टर्म में दिल्ली में पोल्यूशन सिग्निफिकेंटली कम होगा।
3: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में गीडा के विभिन्न क्षेत्रों के लिए करीब

0: 208 करोड़ रुपए के 71 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने 42 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से बने फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास और उद्यम के लिए सुरक्षा सबसे जरूरी है। उन्होंने कहा कि साल 2017 के बाद से सरकार अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ आगे बढ़ी है। इसी का परिणाम है सरकार को 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।
1: सुरक्षा का मॉडल क्या होना चाहिए, अब यूपी में वह उपलब्ध है। और सरकार की अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति इसी भाव के साथ आगे बढ़ रही है। और आज इसी का परिणाम है प्रदेश में 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त। 15 लाख करोड़ का हमने जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया। 7.5 लाख करोड़ का हमारे पास तत्काल तैयार है, इसको कभी भी हम ग्राउंड ब्रेकिंग कर सकते हैं। लाखों नौजवानों को इसके माध्यम से कार्य मिला है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में आजमगढ़, बस्ती और गोरखपुर की संयुक्त मंडलीय खरीफ उत्पादकता संगोष्ठी 2026 का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में अन्नदाता किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों को सशक्त बनाने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने निर्यात के मानकों पर खरा उतरने पर जोर देते हुए प्राकृतिक खेती पर बल दिया।
1: जो औद्यानिक फसल हम पैदा करें, न्यूनतम केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का उपयोग कर न्यूनतम उन मानकों पर खरा उतर सके जो निर्यात करने लायक भी हो, और इसके लिए प्राकृतिक खेती एक बेहतरीन ऑप्शन है भारतवासियों के सामने। गौ आधारित खेती है ये, गौ माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए गौ माता की रक्षा भी होगी, लेकिन केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड से आपकी खेती को बचाव करने के साथ साथ लागत को कम करने का भी एक माध्यम हो सकता है। हमें इसमें कार्य करना होगा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। वाराणसी में कल और 5 जून को ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की महत्वपूर्ण बैठक होगी। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में ब्राजील, चीन, मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
2: बैठक के दौरान संस्कृति, विरासत संरक्षण और आपसी सांस्कृतिक सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग एवं ODOP उत्पादों की विशेष प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी में वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपरा के 6 शिल्पियों के 6 विशिष्ट उत्पाद प्रदर्शित करेंगे। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से परिचित कराया जाएगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुँचाने का अवसर भी मिलेगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की काशी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। प्रतिनिधियों के आगमन पर एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थलों तक लोक नृत्यों की प्रस्तुति होगी। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज चर्चा मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की।
3: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता है। वहीं GST ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाई है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1.25 करोड़ घरों में से 98 लाख से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। गाजियाबाद के अभिषेक कुमार ने बताया कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिली है।
4: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से

0: मकान आवंटित होगी। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
1: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43 करोड़ 52 लाख स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। समाचार

0: रोजगार दे रहे हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: प्रदेश के 36 जिलों में आज और कल टीजीटी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के तहत होने वाली ये परीक्षा आज पहले दिन सकुशल संपन्न हुई। 3,539 पदों के लिए होने वाली इस परीक्षा में 8,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के पश्चिमी और पूर्वी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की बारिश का अनुमान जताया है। वहीं पश्चिमी जनपदों में कुछ स्थानों पर तेज हवाएं चलने और गरज चमक का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने आज 24 प्रस्तावों को किया पारित। नगरीय परिवहन सेवा को बेहतर बनाने के लिए 1725 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने को मिली मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली NCR में पुराने ट्रक और बसों को बदलने के लिए योजना को दी मंजूरी। उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों के सहयोग से लागू होगी पहल। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर में 208 करोड़ रुपए की 71 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति से प्रदेश में निवेश को मिली गति। और वाराणसी में कल शुरू होगी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक। चीन, ब्राजील और मिस्र समेत 11 देशों के प्रतिनिधि होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए, अब प्रस्तुत है रेडियो हेल्पलाइन। विषय है डेंगू बुखार, कारण, लक्षण और आधुनिक उपचार, शंकाएं एवं समाधान। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मोहम्मद अकीक।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर शालिनी माहेश्वरी, गंगाशील हॉस्पिटल, दीनदयालपुरम, बरेली।
3: महिला रोगियों के संपूर्ण आधुनिकतम इलाज का उच्चीकृत किफायती अस्पताल
2: गंगाशील हॉस्पिटल। गर्भाशय का बिना चीरे का ऑपरेशन डॉक्टर शालिनी माहेश्वरी द्वारा
3: आधुनिक विधि से बहुत कम खर्च में।
2: गंगाशील हॉस्पिटल। गर्भावस्था में दौरे पड़ना, पीलिया और गर्भावस्था में खून कटना, सांस फूलना, दमा और दिल की मरीज, गर्भवती स्त्रियों के इलाज की विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी महेश्वरी।
3: गंगाशील हॉस्पिटल, दीनदयालपुरम, बरेली।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा फोन नंबर 9927544444।
4: रेडियो हेल्पलाइन कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही स्वागत है हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद बरेली के फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अकीक साहब का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: जी नमस्कार। थैंक यू।
4: और डॉक्टर साहब, आज हमारा विषय है रेडियो हेल्पलाइन का डेंगू बुखार, कारण, लक्षण और इसका आधुनिक उपचार।
5: जी,
4: तो डेंगू की बात जब भी आती है, एक डर, एक दहशत, एक भय सा व्याप्त हो जाता है।
5: जी।
4: लोग डरने लगते हैं, अरे डेंगू हो गया, प्लेटलेट खत्म हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, क्या
5: जी,
4: होगा।
5: जी जी बिल्कुल।
4: चूंकि आप एक डॉक्टर हैं, लंबे अरसे से मरीजों का इलाज कर रहे हैं और डेंगू जैसी बीमारी को आपने काफी पहले से भी देखा है।
5: जी बिल्कुल।
4: क्या बताएंगे सर, किस तरह की बीमारी है डेंगू और वाकई में क्या इसकी वजह मच्छर ही है?
5: जी हाँ, डेंगू बहुत ही विकराल रूप ले लिया था। पिछली बार तो काफी डेंगू से कैजुअलिटीज भी हुई थी।
4: जी जी।
5: तो डेंगू का नाम सुन के ही दहशत में तो लोग आ जाते हैं।
4: जी जी।
5: लेकिन अब की बार डेंगू देखा गया है कि उतना जिस जैसे पहले था डेंगू, उतना डेंगू नहीं है।
4: जी।
5: इसका कारण ये कि ये भी है कि लोगों में जागरूकता रही है। आप लोग रेडियो के माध्यम से इतना ज्यादा जागरूक करते रहे कि डेंगू किस कैसे बचें, कैसे डेंगू ना हो, कैसे अगर हो जाए तो कैसे इलाज कराएं, तो ये भी एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है जिससे कि इस बार डेंगू उतना नहीं है। तो डेंगू जो है मच्छर के काटने से होता है।
4: अच्छा।
5: एडीज मच्छर के काटने से होता है।
4: जी।
5: और ये मच्छर ज्यादातर दिन के उजाले में काटता है, सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग के काटता है या फिर जो है इवनिंग के टाइम पे काटता है।
4: जी, जी।
5: और ये मच्छर के द्वारा जब काटा जाता है तो वायरस चला जाता है।
4: जी।
5: शरीर के अंदर। तो डेंगू एक वायरल फीवर है और वायरस के द्वारा होता है।
4: जी, जी।
5: और मच्छर के काटने से होता है। तो ये मच्छर ज्यादातर साफ पानी में होता है।
4: जी।
5: जैसे कि आप लोगों ने काफी जागरूक किया कि कूलर का पानी बदल दें, कई एड्स भी सरकार द्वारा दी जाती हैं।

0: कि पानी इकट्ठा ना होने दें। जो
1: जी
0: इकट्ठा पानी होता है उसमें ही ये प्रजनन करके मच्छर अपने प्रजाति को बढ़ाते हैं और वहीं से ये फलते फूलते हैं।
1: जी
0: तो साफ पानी में रहता है ये, और इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं।
1: अच्छा
0: तो जब वायरस जाता है शरीर के अंदर, चार तरह के प्रकार के होते हैं, NS1, NS2, NS3, NS4 करके चार प्रकार हैं।
1: जी
0: तो वो चार इसकी प्रजातियां हैं जो डेंगू वायरस है,
1: अच्छा,
0: उसी से फैलता है ये।
1: ये चार प्रजातियां जो डॉक्टर साहब आप बता रहे हैं, इसमें कौन सी ज्यादा खतरनाक है, कौन सी कम खतरनाक है, कुछ ऐसा भी है क्या?
0: जी हाँ, ज्यादातर इंडिया में जो है दो ही प्रजातियां हैं, वन
1: जी
0: और टू है।
1: अच्छा
0: तो उसमें वन ज्यादा कॉमन मिलता है और टू
1: अच्छा
0: होता है, तो टू के कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हैं,
1: अच्छा
0: उसमें जो है जान जाने का खतरा ज्यादा है। लेकिन जो कॉमन मिलता है तो वन एंटीजन ज्यादा मिलता है।
1: डॉक्टर साहब, बुखार साथ में जुड़ा हुआ शब्द है, जब बुखार की जब भी बात आती है तो ये बुखार के लिए ये कहा जाता है, बुखार अपने आप में कोई बीमारी नहीं है बल्कि एक ऐसा लक्षण है जो बताता है शरीर में कुछ ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। और क्या इसी तरह की बात हम डेंगू के साथ भी जोड़कर देखते हैं या कुछ अलग होता है?
0: बिल्कुल, बुखार जो है एक नॉर्मल जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है। कोई भी अगर बाहर से बैक्टीरिया या वायरस या कोई भी एंटीजन अगर शरीर में प्रवेश करता है,
1: जी, जो शरीर को
0: तो
1: स्वीकार्य नहीं है।
0: जी जो शरीर के बाहर का, जो शरीर से मिलता जुलता नहीं है, तो
1: जी
0: शरीर उसको बाहरी दुश्मन समझती है,
1: जी
0: तो इम्यूनिटी सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उसको खत्म करने का प्रयास किया जाता है।
1: जी जी
0: तो उससे लड़ाई लड़ते हैं, हमारे शरीर के अंदर ऐसी इम्यूनिटी पावर होती हैं, जो सेल्स होती हैं जो लड़ती हैं उसे एंटीजन से।
1: जी
0: तो जब वो लड़ाई करती हैं तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिसकी वजह से बुखार उत्पन्न होता है।
1: जी
0: तो उसमें बहुत सारे केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसमें इंटरल्यूकिन वन जो है, वन अल्फा मोस्ट कॉमन होता है, जो बुखार बॉडी का टेम्परेचर जो है बढ़ाता है। तो इम्यूनिटी की वजह से ही बुखार आता है, और डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा एंटीजन है, कितनी ज्यादा मात्रा में इंटरल्यूकिन वन निकल रहा है।
1: जी
0: इसीलिए कुछ लोगों को बुखार 100 डिग्री भी रहता है, किसी को पता नहीं, हमें तो 104 आ रहा है।
1: अच्छा,
0: तो अलग अलग की शरीर की इम्यूनिटी के हिसाब से बुखार आता है।
1: ये तो बात रही बुखार की डॉक्टर साहब, चूंकि डेंगू की बात है, डेंगू की चर्चा कर रहे हैं हम, और आपने बताया कि एक खास तरह का एडीज मच्छर है जिसे टाइगर मच्छर भी कहते हैं, उसके काटने पे जो वायरस है डेंगू का वो शरीर में पहुंच जाता है। चार तरह के वायरस आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं हमारे देश में, भारतवर्ष में NS1 और NS2 दो तरह का वायरस डेंगू फैलाने के लिए जिम्मेदार कहा जाता है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है डेंगू के साथ वो ये है डॉक्टर साहब कि जब भी डेंगू बुखार होता है इसको ये निश्चित हो जाए या जरा सा भी लगे किसी को डेंगू बुखार है, डॉक्टर थोड़ा सा भी कहते हैं कि लग रहा है डेंगू बुखार है, तो वहीं प्लेटलेट्स की बात आती है और भी कई चीजें जुड़ी जाती हैं। हम चाहेंगे विस्तार से लक्षणों के बारे में बता दिया जाए श्रोताओं को आज।
0: जी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है कि लक्षण जानना बहुत जरूरी है
1: जी।
0: कि कैसे पहचाने कि हमें डेंगू बुखार है।
1: जी।
0: तो डेंगू का जब मच्छर काटता है तो उसमें कुछ पीरियड होता है कि आज मच्छर अगर काटा तो ये नहीं कि अभी मच्छर काटा अभी हमको डेंगू हो जाएगा।
1: अच्छा
0: हाँ, 3 से 4, 5 घंटे, 6 घंटे, एक अलग अलग पीरियड होता है। तो उस पीरियड के बाद ही वो क्रियाएं शरीर में उत्पन्न होती हैं,
1: जी
0: फिर वो इंटरल्यूकिन निकलता है, इसमें समय लगता है, तो तब उसको बुखार आना शुरू होता है। तो डेंगू में जो है बुखार आएगा, बुखार के साथ बहुत तेज शरीर में जो है दर्द भी होगा।
1: अच्छा
0: इसको हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं,
1: अच्छा
0: या बहुत लोग बोलते हैं जॉइंट्स पेन बहुत ज्यादा कराता है।
1: जी जी
0: आंखों के पीछे बहुत तेज दर्द होता है,
1: पुतलियों में,
0: पुतलियों में जो है बहुत दर्द होता है,
1: अच्छा
0: हेडेक होता है। तो तेज बुखार आएगा, जाड़ा लगेगा उसको, लेकिन कपकपी नहीं होगी, जैसे कि मलेरिया में, मलेरिया से इसीलिए इसको अलग करते हैं कि इसमें कपकपी नहीं होती है।
1: जी जी
0: ठंड लगेगी, तेज बुखार आएगा और शरीर में दर्द बहुत होगा,
1: अच्छा
0: बिल्कुल इतनी ज्यादा दर्द होगा कि आप कोई काम ही नहीं कर पाए, बस लेटे रहे, इतना
1: अच्छा
0: ज्यादा होता है। तो सबसे पहला जो लक्षण है डेंगू का कि बुखार आएगा,
1: जी
0: बुखार होगा और बहुत तेज होगा, साथ में शरीर में दर्द होगा।
1: जी
0: अब आजकल जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसके साथ कुछ और भी लक्षण मिल जाते हैं,
1: अच्छा
0: जैसे बुखार है, बुखार के साथ शरीर दर्द है, ये तो है ही है, साथ में किसी किसी को डायरिया भी हो जाता है,
1: अच्छा
0: या किसी को गले में खराश हो गई या कुछ ऐसा कि हल्की खांसी आने लगी, तो ये भी लक्षण मिलते हैं। लेकिन जो मेन लक्षण है कि बुखार के साथ शरीर में तेज दर्द होना, ये अगर अगर ऐसा हो रहा है और बहुत तेज बुखार आ रहा है, और तो ये डेंगू का लक्षण है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, जुकाम भी अगर है साथ में बुखार के तो क्या ये भी डेंगू हो सकता है?
0: हाँ, बड़ी
1: संभावना होती है,
0: संभावना ये होती है कि अगर जुखाम है साथ में तो ऐसा नहीं कि डेंगू नहीं होगा।
1: जी
0: तो हमको अगर जुखाम हो रखा है तो डेंगू नहीं होगा,
1: जी
0: तो हो सकता है डेंगू बुखार हो, साथ में एसोसिएटेड ये भी हो, या साथ में एसोसिएटेड डायरिया भी हो।
1: जी जी
0: तो ऐसा नहीं है कि डेंगू नहीं होगा।
1: कौन सी जांच है डॉक्टर साहब जिसके माध्यम से आप लोग तय कर पाते हैं कि

0: वाकई में ये डेंगू है, और डेंगू है तो कौन सा डेंगू है?
1: जी हाँ, डेंगू के लिए हमारे यहाँ डेंगू प्रोफाइल की जांच कराते हैं, उसमें N1 एंटीजन, IgM एलाइजा और IgG एलाइजा ये जांच कराते हैं। ये अलग अलग पीरियड पे पॉजिटिव आती हैं, तो इसमें एंटीजन N1 पॉजिटिव आता है तो हम लोग कंफर्म करते हैं कि ये डेंगू हो गया है, इनको डेंगू का इन्फेक्शन है।
0: ये जो जांचे हैं डॉक्टर साहब, क्या आसानी से हर जगह हो जाती हैं या फिर कुछ खास जगहों पर ही होती हैं?
1: नहीं, अभी तो डेंगू का इतना ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया है तो लगभग हर जगह डेंगू की जांचों की व्यवस्था है और हर लैब पे डेंगू की जांच हो जाती है।
0: अब ये और बताइए डॉक्टर साहब, डेंगू बुखार कब खतरनाक होता है?
1: जी, डेंगू का बुखार पिछली बार हम लोगों की चर्चा हुई थी, बताया था डेंगू जो होता है ये तीन तरह से बीमारी करता है। डेंगू डेंगू फीवर बोलते हैं, डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं और डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। तीन तरह का होता है। तो जो डेंगू फीवर होता है ये कम घातक होता है, डेंगू हेमरेजिक फीवर उससे ज्यादा घातक होता है, और डेंगू शॉक सिंड्रोम जो है जिसमें जाने जाती हैं तो जो सबसे खतरनाक होता है, जिसमें जो है बहुत ही सीरियस कंडीशन होती है, उसको कभी भी ऐसा नहीं छोड़ना, उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज करना, अच्छे हॉस्पिटल में अच्छे डॉक्टर से इलाज कराना है, तभी उसमें जो है उसको बचाया जा सकता है बहुत गंभीर का। तो जो लेकिन डेंगू फीवर वाली कंडीशन होती है उसको घर पे भी ठीक किया जा सकता है।
0: अच्छा,
1: कुछ ज्यादा दवाइयां अलग अलग तरीके लोग बताते हैं क्या करना है क्या नहीं है। अगर डेंगू फीवर है तो उसमें 3 से 5 दिन तक बुखार आएगा, उसके बाद फिर बुखार बंद हो जाएगा आना
0: जी।
1: और डेंगू फीवर की वजह से लीवर में सूजन आ जाती है, जिसकी वजह से लोगों को पेट भारी लगता है, उल्टी होने लगती है। तो ये जो है बुखार जब आना बंद हो जाता है तो उसके बाद से शुरू होता है
0: जी।
1: तो डेंगू फीवर में बुखार के लिए दवाई लें और बॉडी को डिहाइड्रेट ना होने दें।
0: अच्छा,
1: उसके लिए पानी का सेवन करें। आईवी फ्लूइड का भी लोग इस्तेमाल करते हैं जो लोग नहीं ले पाते हैं, लेकिन आईवी फ्लूइड भी बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए वरना कंडीशन और भी चीजें गड़बड़ जाती हैं।
0: आईवी फ्लूइड डॉक्टर साहब वो तो एक शरीर में चढ़ाया जाता है नसों के द्वारा, लेकिन ये कहा जाता है कि जो ORS घोल जो है वो लेना ज्यादा उपयुक्त रहता है, एक डॉक्टर होने के नाते आपका क्या सुझाव है?
1: जी बिल्कुल, यही हमने कहा ना, डेंगू फीवर जो है, जो फीवर वाली फेब्राइल स्टेज होती है उसमें फीवर बहुत तेजी से आता है
0: जी।
1: तो जब बहुत तेजी से फीवर आता है तो जब आने के बाद क्या होती है, बॉडी बहुत डिहाइड्रेट हो जाती है
0: जी।
1: तो डिहाइड्रेट हो जाती है तो ORS बहुत अच्छी चीज है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, ग्लूकोज भी होता है, तो बॉडी को हाइड्रेट करने में बहुत फायदेमंद होता है। तो अगर ORS ले सकते हैं, खूब पिए ORS, और बुखार अगर आता है तो पैरासीटामॉल लें। पैरासीटामॉल की दवाई हर जगह अवेलेबल हो जाती है
0: जी।
1: तो पैरासीटामॉल लें और ORS लें, इसी से ही डेंगू फीवर की स्टेज को ठीक किया सकता है।
0: अच्छा, डेंगू फीवर की स्टेज डॉक्टर मोहम्मद हकीक जो आप बता रहे हैं, ये आप बता रहे हैं 4-5 दिन तक रहती है, उसके बाद ठीक हो जाता है व्यक्ति?
1: टोटल ड्यूरेशन जो होता है 7 दिन का होता है।
0: 7 दिन होता है।
1: 7 दिन में डेंगू फीवर ठीक हो जाता है
0: जी। डॉक्टर साहब इसी बीच एक श्रोता आ गए लाइन पर, इनकी बात सुन लेते हैं
1: जी।
0: रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताए।
2: नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार।
2: मैं प्रेमपाल बात कर रहा हूँ सर,
1: जीगंज से। जी प्रेमपाल जी, बताइए कैसे हैं आप?
2: क्या नाम, अभी हमारे ना ताई जी को 3-4 दिन से बड़ी तेजी से बुखार आ रहा है सर
1: जी।
2: हाँ, तो अभी सर जांच वूच कराई थी सर, तो डेंगू के तो लक्षण नहीं है सर, लेकिन सर बुखार ठीक नहीं हो रहा है सर
1: जी। अगर उनको 3 दिन से बुखार आ रहा है, बहुत तेज से आ रहा है और ठीक नहीं हो रहा, तो उसको डॉक्टर से संपर्क करें और डॉक्टर पता लगाएगा कि अगर डेंगू नहीं
2: भी तो लग रही सर, उन्हें जाड़ा भी लग रहा है बहुत।
1: जी जी जी, तो और भी कई तरह के बुखार होते हैं, तो कहीं दूसरा बुखार तो नहीं है, तो आपको डॉक्टर के पास जाके और उसको दिखाना चाहिए और वो डॉक्टर अपने हिसाब से टेस्ट करा के आपको बताएगा कि क्या बीमारी है। ठीक है,
2: डॉक्टर को तो दिखाई रहे वैसे सर, हमने सोचा सर।
1: अच्छा
2: सर, आपसे पूछे कुछ।
1: हाँ, तो उसमें फिर आप अगर डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो उनसे बोलिए कि
2: गंगाचरण में दिखाया था सर हमने।
1: अच्छा अच्छा जी, गंगाचरण में अगर आप आ सकते हैं तो गंगाचरण में दिखाइए और उसका हम इलाज करेंगे और ठीक करेंगे। ठीक है, आपकी पूरी समझ।
2: नमस्कार,
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए। ये तो बात रही डेंगू बुखार के पहले स्टेज की जो आपने बताई इस कॉल को सुनने से पहले।
1: जी जी जी,
0: अब दूसरी स्टेज के विषय में भी बताइए।
1: हाँ, डेंगू हेमरेजिक फीवर दूसरी स्टेज है, डेंगू हेमरेजिक फीवर
0: जी।
1: हेमरेजिक इसलिए बोलते हैं कि ब्लीडिंग होने लगे, कहीं से खून बहने लगे
0: जी।
1: खून बहना कई तरह का होता है, एक होता है कि खून स्किन में ही बहता है अगर।
0: अच्छा।
1: तो उसको हम बोलते हैं, जो हमको बाहर नहीं दिखता
0: जी,
1: उसको बोलते हैं पिटेकी हो गए, या फिर आम भाषा में हम लोग रैशेस बोलते हैं।
0: अच्छा।
1: लाल लाल चकत्ते पड़ना हिंदी में बोलते हैं।
0: अच्छा, अच्छा।
1: तो वो भी एक ब्लीडिंग का प्रकार है।
0: अच्छा।
1: और फिर बाकी और होता है कि नाक से खून आ जाए, तो उसको हम लोग एपिस्टैक्सिस बोलते हैं डॉक्टरी भाषा पे, नाक से खून आना
0: जी।
1: या फिर उसको पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है तो पेट के

0: अंदर कहीं से ब्लीडिंग होने लगी है उस वजह से पेट में दर्द होता है, तो ऐसे भी हो सकता है।
1: मतलब पॉटी में भी
0: जी, अब पॉटी फिर काली होएगी उसको, तो हम लोग पूछते हैं कि काली पॉटी तो नहीं हो रही है। तो इस तरह से ये ब्लीडिंग वाली स्टेज, डेंगू फीवर हुआ और साथ में ब्लीडिंग भी होने लगी, तो ऐसी स्टेज को हम लोग बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। ये स्टेज ऐसी है कि इसमें बिल्कुल खतरा मोल ना लें, घर पे बिल्कुल ना ट्रीट करने की कोशिश करें, तुरंत अस्पताल में भर्ती कराएं और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहने दें। ये बड़े आराम से ठीक हो जाती है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप डॉक्टर के पास पहुंच गए और सही इलाज मिल रहा है तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कभी घबराने की जरूरत। इसमें प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है
1: जी,
0: जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। इसीलिए बहुत आम भाषा में ये है कि ना प्लेटें कम होगी, प्लेटें कम होगी, तो ये वही वाली स्टेज है जब प्लेटलेट बहुत कम होने लगती है, 50,000 से कम हो जाए तो फिर उसको भर्ती करा के डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए।
1: प्लेटलेट्स की बात हम करेंगे क्योंकि नई नई चीजें सामने आ रही हैं, जब भी दौर बदलता है तो कुछ नया सामने आता है। लेकिन तीसरी स्टेज भी आप जरूर बताइएगा, जो आप तीसरी स्टेज बता रहे थे सबसे घातक होती है डेंगू बुखार में।
0: जी, डेंगू हेमरेजिक फीवर के बाद तीसरी स्टेज होती है डेंगू शॉक सिंड्रोम।
1: जी,
0: डेंगू शॉक सिंड्रोम वाली स्टेज जब आती तो बुखार बिल्कुल नहीं होगा, सबसे आसानी से पहचाना जा सकता है। अब बुखार जो आ रहा था मरीज को, बुखार बिल्कुल खत्म हो चुका, बुखार की दवाई भी नहीं लेने, फिर भी बुखार नहीं होगा, तो फिर डेंगू शॉक सिंड्रोम में क्या होता है, ये अंदर इतना ज्यादा मेम्ब्रेन्स डैमेज होने लगती है, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन हो जाता है, तो पानी आने लगता है।
1: अच्छा,
0: तो फेफड़े में पानी आ जाएगा, पेट में पानी आ जाएगा
1: जी,
0: प्रोटीन लीक होने लगेगी, तो इसकी वजह से बीपी लो होने लगता है।
1: अच्छा,
0: तो ये है डेंगू शॉक सिंड्रोम और इसको बहुत ही केयरफुल हैंडल करना पड़ता है, आईसीयू में मरीज को भर्ती कराना पड़ता है और डॉक्टर ये इस ऐसी स्टेज में जान जाने का खतरा होता है।
1: तो ये डेंगू शॉक सिंड्रोम जो आप स्थिति बता रहे हैं डॉक्टर साहब, ये बुखार की शुरुआत से कितने दिन के बाद हो सकती है?
0: ये बुखार 5 दिन बाद, फिर जब बुखार बिल्कुल उतर जाता है तो वो 48 घंटे पीरियड जो होता है वो बहुत ही रिस्की होता है, जिसमें पेशेंट डेंगू शॉक सिंड्रोम में जा सकता है। तो बिल्कुल इसको वो लापरवाही में ना लें कि बुखार तो अब ठीक हो गया, अब तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। तो वो 48 घंटे जो होते हैं उस पीरियड में ऑब्जर्वेशन में रहें और डॉक्टर उसको देखेगा कि कहीं डेंगू शॉक सिंड्रोम में तो नहीं जा रहे, उसमें बीपी कम होने लगा मरीज का, धड़कन बढ़ने लगेगी, ये एक पहचानने का तरीका।
1: तो डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपने बताई हैं। अच्छा, इस बार जो डेंगू बुखार है, एक तो बात यह है कि एक दौर था जब सितंबर अक्टूबर के महीने में डेंगू बुखार के मरीज बहुत हुआ करते
0: जी, जी,
1: और एक दहशत सी कायम हो जाती थी कि डेंगू शुरू हो गया, डेंगू बुखार आने लगा, जैसे मलेरिया का सीजन होता है, कोल्ड का सीजन होता है, इस तरह सीजन की बात होती थी। हम सीजन की बात भी करेंगे, एक और श्रोता आगे लाए।
0: जी जी,
1: रेडियो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं।
2: जी, मैं प्रकाश रावत बोल रहा हूँ नवाबगंज से। सर
0: जी जी नमस्कार।
2: जी नमस्कार डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मलेरिया के क्या लक्षण हो सकते हैं स्टार्टिंग में मरीज को?
1: बात आज डेंगू की हो रही है, चलिए मलेरिया,
0: चलिए डेंगू की बात हो रही है और मलेरिया भी साथ साथ चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि मलेरिया के क्या लक्षण होते हैं। मलेरिया में बुखार आएगा, बुखार आएगा तो साथ में कपकपी भी लगेगी, बुखार में कपकपी भी लगेगी और फिर उसके बाद पसीना छूटेगा। और कई तरह का मलेरिया होता है, 4 तरह का आमतौर से देखा जाता है। तो जिस एक मलेरिया होता है जो वाइवेक्स पॉजिटिव होता है, जिसमें 48 घंटे में बुखार आता है, और एक जो घातक मलेरिया होता है फैल्सीपेरम से होता है, उसमें हर 24 घंटे के बाद बुखार आता है। बुखार जब भी,
2: क्या हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए सर?
0: जी, जब भी मलेरिया का इस तरह से बुखार लगे कि हर 24 घंटे में आ रहा है और बहुत तेजी से आ रहा है, कपकपी लग रही है और उसके बाद पसीना छूट रहा है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर को दिखाएं, घर पे बिल्कुल इसको ठीक करने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर आपको बहुत तेजी से बुखार है तो पैरासीटामोल की टेबलेट अगर आपके घर पे है तो वो ले लें और उसके बाद डॉक्टर को तुरंत दिखाएं।
2: धन्यवाद,
1: धन्यवाद कॉल करने के लिए। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न आपसे था कि इस बार जो है वो डेंगू काफी लेट आया है ऐसा माना जा रहा है।
0: जी जी जी जी, हाँ,
1: क्या वजह मानते हैं आप?
0: ये सबसे बड़ी वजह तो इसकी यही है कि इतना डेंगू का प्रचार प्रसार किया गया आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से, सरकार के बहुत सारी अलग अलग विधाएं जिसके द्वारा समझाया गया लोगों को कि डेंगू से कैसे बचा जाए, तो वो बहुत देखा जा रहा है कि आमतौर से लोगों ने उसको अच्छे से ध्यान में रखा, पानी इकट्ठा नहीं होने दिया, साफ सफाई रखी।
1: एक तो, और श्रोता लाइन पर है डॉक्टर साहब, इनसे बात करते हैं।
0: जी
1: जी, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं, रेडियो हेल्पलाइन में स्वागत है आपका।
3: हेलो
1: जी, रेडियो हेल्पलाइन में स्वागत है, अपना परिचय देते हुए प्रश्न बताएं।
3: नाम मेरा राजेश कुमार।
0: जी नमस्कार राजेश जी, बताएं।
3: अरे हमारे गांव में आजकल डेंगू मलेरिया बहुत चल रहा है, मच्छर बहुत हो गए,
0: जी।

0: कैसे बचाव करें उसका।
1: जी जी बिल्कुल वही हम लोग अभी चर्चा कर रहे
2: जी
1: थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय डेंगू काफी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि मच्छर बहुत ज्यादा अभी काट रहे हैं लोगों को, क्योंकि गर्मी का सीजन चला गया है, पंखे लोगों के बंद हो गए हैं, लेकिन लोगों ने अभी भी पूरे शर्ट के कपड़े पहनना नहीं बंद किया है, वो
0: हाँ,
1: पहन
0: नहीं
1: नहीं
0: तो
1: रहे हैं।
0: ये
1: तो
0: गर्मी थोड़ी हो रही है, और फिर हम लोग
1: जी
0: गांव में रहते हैं तो मच्छरदानी तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन सब लोग नहीं लगा पाते, किसी के पास है किसी के पास नहीं है ना,
1: जी
0: इसके
1: जी कोशिश करिए
0: लिए
1: कि जो
0: बचाव के
1: है,
0: लिए हम लोग क्या कर सकते
1: जी जी
0: हैं।
1: कोशिश करिए कि जो है मच्छरदानी तो लगाए ही जितने लोग लगा सकते हैं, पानी कहीं ना इकट्ठा होने दें, साफ पानी में ये डेंगू का जो मच्छर है होता है, तो साफ पानी कहीं इकट्ठा, जैसे कूलर अगर है या टायर हैं गंदे या छत पे पानी कहीं कुछ रखा है बर्तन जिसमें
0: जी
1: पानी इकट्ठा
0: कूलर
1: हो
0: तो
1: रहा
0: सब
1: है,
0: बंद कर दिए हैं, सब उसका
1: जी
0: पानी
1: उसका
0: नहीं
1: पानी
0: निकालते हैं,
1: निकालना है। जी
0: परेशानी
1: जी
0: है।
1: पूरे शर्ट के कपड़े पहने, पूरा हाथ ढका रहे, पूरे पैंट पहने जिससे कि मच्छर ना काट पाए, और मच्छर से बचने के लिए जो भी उपाय मार्केट्स में उनको यूज करें, और ये मच्छर
0: जी
1: ज्यादातर शाम के टाइम काटता है और सुबह अर्ली मॉर्निंग काटता है, तो उस टाइम
0: असल
1: बचें।
0: में क्या है कि जहाँ हमारे लोगों का घर है
1: जी
0: वहाँ कूड़ा करकट बहुत रहता है, जैसे गोबर भी होता है,
1: जी
0: और
1: जी
0: तुम्हारे की जैसे हमारे घूरे होते हैं उनका कूड़ा होता है,
1: जी
0: और बाकी जो है जैसे गली क्षेत्र में जैसे अपने जैसे घर है कच्चे वनों में छिप जाते हैं, वो रात को उस
1: जी जी जी
0: दिन में तो खैर नहीं काटते, रात को ज्यादा निकल आते।
1: जी जितना सफाई कर सकते हैं करिए, और अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ है कूड़ा करकट इकट्ठा हो रहा है, तो आप पीएससी सेंटर पे डॉक्टर से जाके बोलिए और उसे छिड़काव करवाइए। ठीक है
0: ठीक है, थैंक यू सर।
2: जी, धन्यवाद कॉल करने के लिए। बचाव की बात आ रही थी, जागरूकता की बात थी डॉक्टर साहब, और
1: जी
2: हमारे श्रोता जानते भी हैं
1: जी जी
2: कि
1: जी
2: किस तरह से डेंगू का मच्छर बढ़
1: अभी
2: रहा है।
1: बताया इन्होंने कि कूलर का पानी हमने निकाल दिया है,
2: जी
1: तो
2: जी
1: ये
2: जी
1: सारी चीजें इतना जागरूकता फैलने की वजह से ही कि इस बार डेंगू कम आया है, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया है कि क्योंकि गर्मी जा रही है और ठंड आ रही है,
2: जी
1: लेकिन लोगों का अभी भी गर्मी जैसा माहौल समझ रहे हैं, तो पूरे बांह के कपड़े नहीं पहन रहे हैं
2: जी जी
1: और वह सुबह भी घूम रहे हैं, शाम को जिस टाइम मच्छर काटता है तो उतना ध्यान नहीं है, तो अब उसको ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि जागरूक है वो जागरूकता ध्यान रखने की जरूरत है, और मच्छरदानी का प्रयोग अभी से शुरू कर दें।
2: तो डॉक्टर साहब, चूंकि जागरूकता की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, और अभी भी जागरूकता के लिए कोई खास शब्द आप हमारे श्रोताओं के समक्ष रखना चाहें, कुछ सुझाव रखना चाहें किस तरह से जागरूक हो, चूंकि आपने बताया कि जो क्रीम होती है एंटी मॉस्किटो रिपेलेंट्स वगैरह हैं, इसके अलावा जो अगरबत्ती है या जो मच्छर भगाने वाले साधन है उनका प्रयोग कर सकते हैं।
1: जी हम तो एडवाइज करेंगे सबको कि जो मच्छरदानी का प्रयोग करें वो सबसे बेस्ट है,
2: हाँ
1: जो आजकल मॉस्को रेपेलेंट वाली मच्छरदानियां आ गई हैं
2: जी
1: वो
2: जी
1: यूज करें तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं कर पाते तब हमारे पास अदर उपाय हैं कि क्रीम लगाएं और जो है मॉस्किटो कॉयल्स रहती हैं
2: जी
1: वो लगाएं, तो उससे लेकिन मॉस्किटो से इस समय मच्छर कटने से बचना चाहिए, बस ये सबसे कैसे भी करके बचा जाए।
2: जी अब एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे जरूर हम जानना चाहेंगे वो
1: जी
2: ये
1: जी
2: है कि इस बार डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की बात बहुत कम की जा रही है,
1: जी
2: इस बार कुछ नई नई बातें आ रही है,
1: जी जी जी
2: टीएलसी आप बताइएगा क्या है, और टीएलसी कम होना या टीएलसी का बढ़ना घटना ये किस ओर संकेत करता है।
1: जी आजकल के डेंगू फीवर में इस बार आ रहा है कि जो है प्लेटलेट्स तो घट रही हैं, साथ साथ टीएलसी और टीएलसी का ज्यादा घट रही हैं,
2: जी
1: तो ये वेरिएंट है, अलग अलग वेरिएंट होता है, तो कि ब्लड में तीन तरह की सेल्स होती हैं, WBC होती है जिनको हम लीकोसाइट्स बोलते
2: जी
1: हैं,
2: व्हाइट ब्लड
1: टीएलसी का
2: सेल्स,
1: मतलब टोटल लीकोसाइट काउंट होता है,
2: अच्छा
1: व्हाइट ब्लड सेल्स,
2: जी
1: और जो प्लेटलेट्स होती हैं और रेड ब्लड सेल्स होती हैं,
2: जी
1: तो
2: जी
1: मलेरिया में हम लोग ज्यादातर देखते थे रेड ब्लड सेल टूटती थी,
2: अच्छा
1: फिर डेंगू आया तो उसमें प्लेटलेट टूटती थी,
2: ओ
1: लेकिन इस बार के डेंगू फीवर में जो है टोटल लीकोसाइट्स भी काफी डैमेज हो रही हैं,
2: जी
1: तो लीकोसाइट काउंट भी घट जा रहा है, प्लेटलेट उतने अमाउंट में नहीं घट रहे हैं,
2: अच्छा
1: तो ये ऐसा है कि ये डेंगू भी हो सकता है,
2: अच्छा
1: टोटल लिकोसाइट काउंट घट रहा है, प्लेटलेट हमारे नॉर्मल हैं, तो हम डेंगू भी रिपोर्ट देख के उस पर शक जाहिर कर सकते हैं, उसके लिए डॉक्टर से संपर्क करें कहीं डेंगू तो नहीं हो गया, ये बहुत
2: अच्छा
1: बढ़िया क्वेश्चन है,
2: जी
1: इस बार ये काफी देखा जा रहा है और लोगों को पता भी चलने लगा सर टीएलसी घट रहा है टीएलसी घट रहा
2: जी
1: है।
2: जी जी क्योंकि प्लेटलेट्स के बारे में डेंगू ने ही जागरूक किया है, जब
1: जी
2: डेंगू बुखार आया तब लोगों को समझ आया कि प्लेटलेट्स क्या होती हैं, क्या काम होता है,
1: जी
2: तो टीएलसी का भी कुछ विशेष काम होता है डॉक्टर साहब हमारे शरीर में।
1: ये मेन हमारे जो है वो होते हैं आर्मीज होते हैं,
2: अच्छा
1: सबसे पहले जो शरीर में कोई बाहरी चीज आती है जिससे लड़ना है तो ल्यूकोसाइट्स ही आती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं, वो जाके उनसे लड़ाई करती हैं, इसीलिए ये इनको भी टूटना लाजमी है कि टूटेंगी।
2: अच्छा, यानी शरीर का सुरक्षा कवच जो है उसमें सबसे आगे TLC
1: ग्लूकोसाइड्स।

0: आती हैं, ल्यूकोसाइट सबसे आगे सबसे पहले वही आती हैं। अच्छा। और उन्हीं का ही सारा होता है कि हमारी इम्यूनिटी उन्हीं पे डिपेंड करती है
1: जी। अब ये और बताइए, जब प्लेटलेट्स कम होती थी तो कई बार प्लाज्मा चढ़ाते थे, प्लेटलेट्स चढ़ा देते थे, ब्लड चढ़ाते थे, ये नए नए तरीके इलाज के निकाले गए। टीएलसी में डॉक्टर साहब क्या टीएलसी भी चढ़ाई जाती है, किस तरह इलाज करते हैं?
0: टीएलसी नहीं चढ़ाई जाती है, उसके लिए देखते हैं कि ब्लड हमारा शरीर में कितना है। ब्लड अगर कम है तो ब्लड चढ़ाया जाता है, उसके द्वारा पूरा किया जाता है। लेकिन टीएलसी के लिए कोई ऐसा नहीं है कि अलग से प्लाज्मा चढ़ाने से टीएलसी बढ़ जाएगी, ये तो ब्लड का कंपोनेंट है, ब्लड चढ़ने पे ही टीएलसी जो है बढ़ेगी।
1: डॉक्टर साहब ये और हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि समाज में देखिए बच्चे भी है, महिलाएं भी है
0: जी,
1: बुजुर्ग लोग भी है
0: जी,
1: और युवा भी है, तो वो कौन लोग हैं जिनके लिए डेंगू बुखार ज्यादा खतरनाक हो सकता है? अगर कोई किसी बीमारी से पीड़ित है पहले से ही, या फिर किसी को कोई शुगर, डायबिटीज या फिर हार्ट की बीमारी या कैंसर जैसी बीमारी है, तो उस परिस्थिति में डेंगू बुखार कितना नुकसान दे सकता है?
0: जी, डेंगू बुखार जो है सबसे ज्यादा अगर किसी को खतरा पैदा करता है तो बुजुर्ग लोगों में सबसे ज्यादा खतरा पैदा करता है, और ऐसे जिनको बहुत क्रोनिक बीमारी है। क्रोनिक बीमारी में जैसे कि उनको शुगर की बीमारी है या गुर्दे की बीमारी, किडनी लोगों की खराब है
1: जी,
0: उनको दिक्कत हो सकती है, या फिर कैंसर की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है। अच्छा। ऐसे लोगों के लिए डेंगू बहुत खतरनाक है, आज भी खतरनाक है, और ऐसे लोगों में डेंगू शॉक सिंड्रोम की जो स्टेज मैंने आपको बताई थी बहुत ही जल्दी आ जाती है। अगर वो 6 दिन में आ रही है तो ये 4 दिन में भी, 5 दिन में आ सकती है, तो इनको सबसे ज्यादा बचने की जरूरत है। और अगर बूढ़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं जो 60 से ऊपर हैं या फिर कोई क्रोनिक बीमारी से अगर ग्रसित हैं, तो उनको बुखार आने पे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, उसमें कोई भी लापरवाही ना बरतें, घर पे इलाज करने की उसमें जरूरत नहीं, सीधे डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। बाकी फिर उसके बाद आता है कि हाँ, उसके दूसरे नंबर पे भी बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं डेंगू से
1: जी, जी।
0: बाकी यंग एज के अगर हैं तो उनपे इतना ज्यादा असर नहीं होता
1: नहीं होता है
0: जी।
1: डेंगू बुखार अगर किसी को है और ये तय हो जाता है डॉक्टर साहब, तो अब चूंकि आप डॉक्टर हैं और डेंगू बुखार के मरीजों का इलाज कर रहे हैं
0: जी,
1: तो क्या वाकई में खून चढ़ाने की जरूरत होती है? अगर होती है तो कब, और खून के अलावा और वो कौन से कंपोनेंट हैं जो दिए जा सकते हैं डेंगू के मरीज को, जिनकी रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल्स में की जाती है?
0: जी, डेंगू का इलाज करने के लिए अगर प्लेटलेट्स इतने कम हो गए हैं कि शरीर में ब्लीडिंग होने लगी है, जैसे डेंगू हेमरेजिक फीवर की कंडीशन मैंने आपको बताई, तो उस कंडीशन में आपको ब्लड भी चढ़ाना पड़ सकता है और फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा भी चढ़ाना पड़ सकता है।
1: अच्छा।
0: तो ऐसी कंडीशन में अभी भी अगर होता है कि कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा चढ़ाना पड़ेगा, और ब्लड बहुत कम हो रहा है, जैसे इस बार देखा जा रहा है कि लोगों का हीमोग्लोबिन 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, टीएलसी भी घट रहा है, प्लेटलेट काउंट भी घट रहा है, तो ऐसे लोगों में ब्लड चढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस बार देखा गया है कि बहुत कम ऐसे मरीज आ रहे हैं जिनको ब्लड या प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ रही है।
1: डॉक्टर साहब ये भी कहा जाता है कि डेंगू बुखार के साथ दूसरे बुखार भी हो सकते हैं, जैसे टाइफाइड या मलेरिया, क्या ये संभव है 2-3 बुखार इकट्ठे हों?
0: जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि डेंगू बुखार है तो सिर्फ आपको डेंगू बुखार है, हो सकता है आपको साथ में टाइफाइड का बुखार भी हो, या फिर जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आजकल हो रहे हैं कि जुखाम खांसी बुखार है तो वो भी हो सकता है, हो सकता है साथ में डायरिया भी हो।
1: अच्छा।
0: तो डायरिया अलग से ही हो रहा था, डेंगू हो गया, तो 2-2, 3-3 बीमारी भी साथ में हो सकती है
1: जी।
0: तो ऐसा नहीं है कि डेंगू बुखार है तो आपको और कोई बीमारी नहीं है
1: जी। इससे जी बिल्कुल डॉक्टर मोहम्मद हकीक साहब, अब ये तय हो गया कि अगर डेंगू बुखार के साथ कुछ और भी है तो ये मामला ज्यादा सीरियस हो सकता है।
0: बिल्कुल ज्यादा सीरियस है, और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, और हम लोग सेवा में तत्पर हैं कि कैसे भी बचाया जाए। और आप जो कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छा, कि डेंगू के बारे में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इससे काफी कम किया गया डेंगू, इसके लिए आप तारीफ के काबिल।
1: थैंक यू, धन्यवाद डॉक्टर साहब। इसके अलावा एक प्रश्न और है जो हमारे श्रोता हैं उनकी ओर से
0: जी, जी।
1: एक बड़ी अजीब सी धारणा हमारे समाज में है, लोगों का मानना यह है कि डेंगू नहीं भी होता ऐसा, फिर भी हॉस्पिटल वाले डेंगू बता देते हैं, किसी भी बुखार को डेंगू बता देते हैं। तो एक डॉक्टर होने के नाते चूंकि ये प्रश्न बड़ा अजीब सा प्रश्न है आपसे जो मैं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी समाज में जिस तरह के मिथक हैं, जिस तरह की बातें की जाती हैं, उनको भी स्पष्ट हो ही जाना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे?
0: ऐसा तो मिथ है कि कोई डॉक्टर ऐसा कहेगा कि नहीं डेंगू बुखार आ रहा है, वो डेंगू ही बुखार है। आजकल इतने ज्यादा अच्छे अच्छे इन्वेस्टिगेशन आ गए हैं, लैब बहुत सारी जगह है, तो कभी हम लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं कि अगर बुखार आ रहा है तो डेंगू ही है, जांच कराएं, उसमें रिपोर्ट्स में पता चलेगा, उससे लक्षण भी होंगे
1: जी,
0: तभी उसको हम लोग डेंगू डिक्लेयर करते हैं, कभी ऐसा नहीं करते हैं, ये किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं।
1: बिल्कुल, हमारा ये कार्यक्रम भी इस दिशा में एक प्रयास है आकाशवाणी का
0: जी,
1: कि लोग जाने वास्तव में कोई भी बीमारी या जो भी बात यहाँ हम कर रहे हैं
0: जी।

0: उसकी सच्चाई क्या है। तो डेंगू बुखार की सच्चाई के विषय में आपने बताया हमारे श्रोताओं को कि कौन कौन से वो लक्षण हैं जिनके तह पर, जिनकी गवाही में ये कहें, जिनकी रोशनी में ये तय होता है कि डेंगू है या नहीं, उसके बाद जांच होगी।
1: डेंगू के लिए हम एक चीज ये बताना चाहेंगे कि फीवर अगर आता है, बुखार अगर आता है ठंड लग के, तो एक बार डॉक्टर से संपर्क सलाह जरूर लें
0: जी,
1: तो वो आपको सही बताएगा कि ये डेंगू का बुखार है क्या है। घर पे इलाज करना बेहतर नहीं होता है। अगर बुखार आ रहा है, 2-3 दिन से आ रहा है और सही नहीं हो रहा है, तो आप डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, तो जल्दी ठीक हो जाएंगे और गंभीर अवस्था नहीं आ पाएगी, जिससे अलग अलग स्टेज जो हमने आपको बताई उस स्टेज में ना पहुंचे। तो डॉक्टर की सलाह एक बार जरूर लें, मेरा ये आपसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तय है कि हर एक बुखार डेंगू नहीं होता,
1: नहीं होता,
0: लेकिन कोई भी बुखार डेंगू हो
1: भी सकता है।
0: दोनों ही बातें हैं, हमें इसमें ध्यान रखने की जरूरत है, अपना ख्याल रखेंगे और डेंगू से बचाव के जो उपाय डॉक्टर साहब आपने बताए हमारे श्रोताओं को, उनका ध्यान रखेंगे। स्थिति खराब होने से पहले ही अगर उचित इलाज मरीज को मिल जाएगा तो निश्चित ही सभी लोग स्वस्थ रहेंगे।
1: डेंगू से डरने की जरूरत नहीं। मैं आखिरी में एक मैसेज देना चाहूंगा, डेंगू का इलाज है, डेंगू ठीक हो सकता है, डेंगू से बिल्कुल मत घबराएं, डॉक्टर के पास आएं और डेंगू से सुरक्षित रहें।
0: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहम्मद अकीक साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे श्रोताओं को डेंगू बुखार कारण, लक्षण और आधुनिक उपचार के विषय में विस्तार से जानकारी दी, उनकी शंकाओं के समाधान किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक डॉक्टर शालिनी माहेश्वरी, गंगाशील हॉस्पिटल, दीनदयालपुरम, बरेली।
3: महिला रोगियों के संपूर्ण आधुनिकतम इलाज का उच्चीकृत किफायती अस्पताल
2: गंगाशील हॉस्पिटल, गर्भाशय का बिना चीरे का ऑपरेशन डॉक्टर शालिनी माहेश्वरी द्वारा
3: आधुनिक विधि से बहुत कम खर्च में,
2: गंगाशील हॉस्पिटल। गर्भावस्था में दौरे पड़ना, पीलिया और गर्भावस्था में खून कटना, सांस फूलना, दमा और दिल की मरीज, गर्भवती स्त्रियों के इलाज की विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी माहेश्वरी,
3: गंगाशील हॉस्पिटल, दीनदयालपुरम, बरेली।
2: इमरजेंसी सेवाओं के लिए हमारा फोन नंबर 9927544444।
4: अभी आप सुन रहे थे रेडियो हेल्पलाइन, विषय था डेंगू बुखार कारण, लक्षण और आधुनिक उपचार, शंकाएं एवं समाधान। विशेषज्ञ थे डॉक्टर मोहम्मद अकीक। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब प्रस्तुत है आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में आयोजित कवि सम्मेलन एवं मुशायरा में प्रतिभागी अनवर अली, मुख्तार अहमद, अफसर अली, आरफीन खां और शाकिर हसन, सुजात हुसैन और अलीम हुसैन।

मैं इस आकाशवाणी बरेली में तमाम सामईन का इस्तकबाल करता हूँ और जो शोरा कराम हैं उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, इसलिए कि आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहली खुशी यही है कि हमारे इस आकाशवाणी के 90 साल पूरे हुए हैं। और 90 साल का अरसा एक तवील मुद्दत और एक तवील अरसा होता है कि जिसमें इसने बहुत सारे अदवार और बहुत सारे मराहल तय किए हैं। और इस खुशी के मौके पर जो हमारे यहाँ शोराए कराम तशरीफ़ लाए हैं उनके असमाए ग्रामी जनाब शाकिर हसन साहब, मोहतरमा आरिफीन।

बहुत बहुत शुक्रिया। क्यों मेरी आंखों ने ऐसा ख्वाब देखा रात भर। और गजल का खास तौर से शेर मुलाहिजा फरमाए नाजिम साहब।

और मतलब मुलाहिजा फरमाए कि जब नजर आया ना कोई मुन सोयावर अली, जब नजर

0: फिर मुझे वो दीदे तेरी याद आया रात भर। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आने वाले शायर के इस्तकबाल में मैं मिर्ज़ा गालिब की गज़ल का एक अंदाज, एक मतला और एक दो शेर आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, और उसके बाद शायर आपके हवाले है कि सवाल करती है दुनिया ये मुझसे तू क्या है। सवाल करती है दुनिया ये मुझसे तू क्या है, मैं सोचता हूँ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। सवाल करती है दुनिया ये मुझसे तू क्या है, मैं सोचता हूँ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। मैं सोचता हूँ ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। सबा ने कर दिया बेदार सब परिंदों को, सबा ने कर दिया बेदार सब परिंदों को, शगुफे खिलते हैं गुलशन में चार सू क्या है। शगुफे खिलते हैं गुलशन में चार सू क्या है। आइए मैं इन्हीं मिसरों के साए में एक शायर आपके समातों के हवाले करने जा रहा हूँ। मेरी मुराद है जनाब शुजात हुसैन से कि वो आएँ और अपने गज़ल के अशार से सामईन को महसूस फरमाएं।
2: मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, 90 साल पूरे हो रहे हैं इस आकाशवाणी बरेली की तरफ से। मैं सभी यहाँ के अधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को और जो जो यहाँ प्रोग्राम में शिरकत फरमा रहे हैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। गज़ल का मतला आप सभी के हजरात के सामने पेश करता हूँ, समाप्त करें कि जब मैं अपनी गज़ल गुनगुनाने लगा, जब मैं अपनी गज़ल गुनगुनाने लगा, सारा शहर सुखन मुस्कुराने लगा, सारा शहर सुखन मुस्कुराने लगा, और फर्शे गेती मेरे गीत गाने लगी, फर्शे गेती मेरे गीत गाने लगी, आसमां साज़े उल्फत बजाने लगा, आसमां साज़े उल्फत बजाने लगा। और वो नहीं आए थे, था अंधेरा बहुत, वो नहीं आए थे, था अंधेरा बहुत, जब वो आए तो घर जगमगाने लगा, जब वो आए तो घर जगमगाने लगा। और ये अजल से ज़माने का दस्तूर है, ये अजल से ज़माने का दस्तूर।

पूरा सर देखें कि कोई आने लगा कोई जाने लगा, ये अजल से जमाने का दस्तूर है। कोई आने लगा कोई जाने लगा, और शेर पे तवज्जो का तालिब हूं। देखें कि मेरा कातिल मेरा कत्ल करने के बाद, मेरा कातिल मेरा कत्ल करने के बाद मेरी मैयत पे आंसू बहाने लगा। मेरा कातिल मेरा कत्ल करने के बाद मेरी मैयत पे आंसू बहाने लगा। और मैं सभी शायरों को और कवियों को ये एक संदेश देना चाहता हूं कि बहर में शेर कहने की कोशिश करो, बहर में शेर कहने की कोशिश करो, क्या खबर कौन कब आजमाने लगा, क्या खबर कौन कब आजमाने लगा। और मकता देखें, छोड़कर बर्क अपना शहर जो गया, छोड़कर बर्क अपना शहर जो गया, उसको अपना वतन याद आने लगा, छोड़कर बर्क अपना।

और इस शेर पे मैं खास तवज्जो चाहती हूँ। समझ में कुछ नहीं आती है ये अदा उसकी, समझ में कुछ नहीं आती

दिए और गजल का मतलब हाजिर करता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ। क्या बताएं के गम खुशी क्या है।

0: falando.
1: बेहतरीन गज़ल से आपको खुश कर रहे थे जनाब शाकिर हसन साहब, जो अफकार और जो ख्यालात वो पेश कर रहे थे, अगर कोई शायरा होती तो यही होता कि इसको सास ने सताया है तभी अपना दर्द बयान कर रही है, मगर बयान करने वाला शायर था। आइए हजरात, मैं एक शायर की खिदमत में चल के हर्फ इल्तिमास लेकर हाजिर हूँ कि कितनी लज्जत है इस तकल्लुम में, कितनी लज्जत है इस तकल्लुम में, दिल नशीनी है क्या तबस्सुम में, कितनी लज्जत है इस तकल्लुम में, दिल नशीनी है क्या तबस्सुम में, एक जादू की लहर है मौजूद, एक जादू की लहर है मौजूद, खूब अनवर तेरे तरन्नुम में, खूब अनवर तेरे तरन्नुम में। आइए हजरात, मैं जनाब अनवर साहब को आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ।
2: गज़ल का मतलब हाजिर करता हूँ, समाज फरमाएं।

गजल का मतलब हाजिर करता हूँ। वो हमें याद आने लगे

लगे। ये शेर खास तौर से भाई आपके लिए। कल जो रोते थे हालात पर,

आखिरी शेर, देख कर अपने महबूब को,

लगे मक्ता पेश करता हूँ। भूल बैठा था अनवर जिन्हें, भूल

पलकें तेरी यादों में रो रो के भिगो लेंगे। दूसरे मिसरे पे बिलखुसूस तवज्जो चाहता हूँ, जो इश्क के मारे हैं वो जल्दी समझ जाएंगे। पल

तकदीर के मारे हैं, तकदीर पर रो लेंगे। देखें भाई ऐसे हैं कि जो उधर रो रहे हैं।

यादों की चुभन हमको, यादों की चुभन हमको सोने नहीं देती है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति मिली। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बैनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा।
1: ATF प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड में एक सेल्फ सस्टेनिंग रिवॉल्विंग फंड बनाया गया। ATF प्राइस फॉर द एयरलाइन कैरियर्स हु वांट टू पार्टिसिपेट इन दिस, उनको एक स्टेबल ATF प्राइस अभी करंट क्राइसिस के दौरान मिलेगा। इससे हमारे एंटायर एविएशन सेक्टर में करीब 70 लाख से अधिक जो जॉब्स हैं, जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ना आरंभ होने लगा था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस इन द सेक्टर, वो इससे सिग्निफिकेंटली मिटिगेट होगा।
0: मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बसें BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैष्णव ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय घटकर लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा।
2: ओडिशा में कोस्टल हाईवे जो स्टेट की बहुत लंबे समय से एक डिमांड रही है, बिकॉज कोस्टल एरियाज का बार बार साइक्लोन से इम्पैक्ट होना, कोस्टल एक्टिविटीज जो है फिशिंग हो, पान की खेती हो, धान की खेती हो, कई तरह के इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, और साथ ही साथ जो टूरिज्म और श्रद्धा के बड़े केंद्र हैं जैसे पुरी हो गया, चिलिका हो गया, इन सब की कनेक्टिविटी अलोंग द कोस्ट कैसे हो, ये एक लंबे टाइम से ओडिशा की डिमांड रही है। तो इस डिमांड को आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में अप्रूव किया।
0: मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानून के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। एक रिपोर्ट।
2: ऋतव्रत बनर्जी पहले मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राज्यसभा सांसद थे और बाद में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगभग 60 विधायकों का समर्थन मिल गया है। यह संख्या दल बदल विरोधी कानून के अंतर्गत आवश्यक 2/3 बहुमत के आंकड़ों से अधिक है। ममता बनर्जी गुट ने इससे पहले शोभन देव चट्टोपाध्याय को विपक्ष नेता नामित किया था। इससे पहले पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के लिए जमा किए गए हस्ताक्षरों से जुड़े विवाद में पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में विधायक ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साह को निष्कासित कर दिया था। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज नबन्ना में सामाजिक सुरक्षा योजना अन्नपूर्णा की शुरुआत की। इसके अंतर्गत 28 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 3,000 रुपए भेजे गए। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को पंजीकरण कराने के लिए 90 दिन का समय दिया गया है। 25 से 60 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाएं योजना के लिए पात्र होंगी। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धारमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शपथ ग्रहण के बाद एक्स साइट में कहा कि इस बदलते टेक्नोलॉजी के युग में कर्नाटका नए आइडियाज के साथ अपने विकास पथ में सबसे आगे बढ़े। लोकभवन से विधानसौध पहुंचने के बाद उन्होंने महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर, जगत ज्योति बसवन्ना और अन्य महान पुरुषों की पुतली पर पुष्प नमन किया। उसके बाद उन्होंने विधानसौध के नॉर्थ गेट पर झुककर नमस्कार किया। अपने पहले कैबिनेट मीटिंग में वह कुछ नए समाज कल्याण कार्यक्रमों की घोषणा करने की संभावना है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। दिल्ली के मालवीय नगर के एक होटल में आज सुबह आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। 40 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है। एक रिपोर्ट।
4: दिल्ली पुलिस ने दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में आग लगने की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में FIR दर्ज किया है। इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई। 26 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। दिल्ली नगर निगम ने भी घटना की जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत संधू ने कहा है कि कल से जिला मजिस्ट्रेटों, पुलिस उपायुक्तों और नगर निगम के उपायुक्तों की संयुक्त नेतृत्व में 1 महीने तक चलने वाला प्रवर्तन और रोकथाम अभियान शुरू किया जाएगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बनकर उभरा है। श्री यादव ने बताया कि 2025 तक वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में देश ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात मध्यम वर्ग के कल्याण के लिए सरकार के कदमों की।
5: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और सुधारों के माध्यम से मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त बनाया है। सरल कर व्यवस्था, बेहतर बैंकिंग, बीमा और पेंशन जैसी सुविधाओं ने मध्यम वर्ग की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित की है। नई कर व्यवस्था

0: तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ता। वहीं जीएसटी ने भी कर व्यवस्था को सरल बनाकर और रोजमर्रा की चीजों की लागत कम करके मध्यम वर्ग को राहत पहुंचाया है। 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने लाखों लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराया है। इस योजना के तहत स्वीकृत 1,25,00,000 घरों में से 98,00,000 से अधिक घर बनकर लाभार्थियों को दिए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अभिषेक कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इस योजना के जरिए गरीबों को अपना घर मिल रहा है और किराए के मकान से मुक्ति मिल रही है।
1: मैंने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था। आवेदन करने के बाद मेरे को लॉटरी ड्रॉ के माध्यम से मकान आवंटित हो गया। स्कीम बहुत ही बढ़िया है जिससे गरीब लोगों को आवास मिल रहे हैं, सबको सहूलियत हो रही है।
0: वहीं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 43,52,00,000 स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा मिली है। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत जन औषधि केंद्रों के माध्यम से लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां मिल रही है जो बाजार से 50-80% सस्ती दरों पर उपलब्ध है। बिहार के रहने वाले ब्रह्मदेव ने बताया कि इन केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिलती है।
2: लगभग 1 साल से यहां से दवाई ले रहा हूं, सस्ती दवाई मिलती है, डॉक्टर का विश्वास है कि जन औषधि से दवाई खरीदे।
0: वहीं 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के कारण लोग अपना व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 40,00,000 रुपए के ऋण दिए जा चुके हैं। भारत के मध्यम वर्ग के लोगों की आय बढ़ने और नए अवसर मिलने के कारण अब वे देश की आर्थिक प्रगति, विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
3: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल केरलम और माहे में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में भी अगले 2 दिन तेज वर्षा हो सकती है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गौर ने कहा है कि प्रस्तावित भारत अमरीका अंतरिम व्यापार समझौते का 99% काम पूरा हो चुका है। मुंबई में उन्होंने कहा कि दोनों देश बाकी बचे मुद्दों को सुलझाने में लगे हैं और अगले कुछ सप्ताह में समझौते को अंतिम रूप दिया जा सकता है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में स्थित अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया है। इसमें एक भारतीय की मौत हो गई है। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंग यांग को हराया। रोहन कपूर और ऋत्विका ने चीनी ताइपे के हु लिंग फांग और यांग पो ह्यूआन को पराजित किया। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पंजाब और उत्तर प्रदेश में भारत और कम्बोडिया से संचालित मानव तस्करी गिरोह मामले में तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने बताया कि इस गिरोह के मानव तस्करी, साइबर धोखाधड़ी और अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह है। निदेशालय ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत जांच शुरू की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
5: बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 304 अंकों की गिरावट से 74,346 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 78 अंक कम होकर 23,406 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज डॉलर के मुकाबले 44 पैसे कमजोर होकर 95.70 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विमानन ईंधन स्थिरता कोष को मंजूरी दी। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को भी स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने निष्कासित विधायक ऋतव्रत बनर्जी को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। कांग्रेस नेता डी के शिव कुमार ने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। जी परमेश्वर ने

उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग में 21 लोगों की मौत। पुलिस ने गैर इरादतन हत्या के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की। मौसम विभाग ने कल केरलम और माही में तेज वर्षा की चेतावनी दी। और इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी चीन के वेंग होंग यांग को हराकर सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करें। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए एक गाने के साथ। इसे हमने लिया है फिल्म महबूब की मेहंदी से। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

आइए अब सुनते हैं जवानी दीवानी फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। गीत आनंद बख्शी का है, संगीत आर डी बर्मन का।

कार्यक्रम का अंतिम गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम है सिलसिला, गीत जावेद अख्तर का है, संगीत शिव हरी का।

सिलसिला फिल्म के इस गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को कार्यक्रम आपके लिए समाप्त करने की अनुमति दीजिए और आप सुनते रहिए विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कहने के खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: श्रोताओं नमस्कार, स्वागत है आपका आज के फनकार में। आज हम बात करेंगे उस चेहरे की जिसे देखकर दिल मुस्कुरा उठता है, जिसकी मुस्कान पर लोग दिल हार जाते हैं और वो हमारे दिल में बस जाता है। एक ऐसा अभिनेता जो रोमांस करता है तो सच्चा लगता है,
1: सच कह रहा है दीवाना,
0: और जब दर्द दिखाता है तो आंखें नम हो जाती हैं।
1: दिल दिल ना किसी से लगाना।
0: जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे अपने आर माधवन की, जिन्हें प्यार से लोग मैडी कहते हैं।

एक ऐसा कलाकार जिसने टेलीविजन से शुरुआत की, तमिल सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई और फिर बॉलीवुड में अपने अभिनय से लाखों दिलों को छू लिया।

रंगनाथन माधवन का जन्म 1 जून 1970 को बिहार के जमशेदपुर में हुआ, जो अब झारखंड में आता है। पिता राघवन टाटा स्टील में मैनेजर और माँ सरोजा बैंक में मैनेजर थीं। आर माधवन की फैमिली जमशेदपुर में ही रहती थी, इसी वजह से इनकी स्कूलिंग यहाँ से पूरी हुई। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद महाराष्ट्र में मौजूद कोल्हापुर के राजाराम कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स से बीएससी में ग्रेजुएशन किया और वो पढ़ाई में बहुत ही शानदार स्टूडेंट थे। और ग्रेजुएशन करने के बाद मुंबई के किशनचंद चेलाराम कॉलेज से पब्लिक स्पीकिंग में अपने पोस्ट ग्रेजुएशन को कम्प्लीट किया। पढ़ाई के अलावा आर माधवन पढ़ाई के दिनों में ही एनसीसी कैडेट भी रह चुके थे और एनसीसी ट्रेनिंग भी उन्होंने ली। लाइफ में एक ऐसा समय भी आया जब वो मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इसी दौरान उन्हें मॉडलिंग का ऑफर मिला और फिर आया टेलीविजन का।

असली ब्रेक मिला साल 2000 में मणिरत्नम की तमिल फिल्म अलई पायते से। इस फिल्म की सफलता ने उन्हें तमिल सिनेमा का रोमांटिक हीरो बना दिया और फिल्म का हिंदी रीमेक साथिया के रूप में बना साल 2002 में, और इसमें नजर आए विवेक ओबेरॉय और राय मुखर्जी।

2001 में उन्होंने हिंदी फिल्म रहना है तेरे दिल में से हिंदी डेब्यू किया। फिल्म में दिया मिर्जा और सैफ अली खान के साथ उनके किरदार मैडी ने युवाओं के बीच उन्हें सुपरस्टार बना दिया। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म शुरुआत में औसत रही, लेकिन बाद में ये कल्ट रोमांटिक क्लासिकल बन गई।

साल था 2002। फिल्म थी दिल विल प्यार व्यार। इस फिल्म में माधवन ने एक ऐसे नौजवान का किरदार निभाया जो प्यार में टूटा तो जरूर, लेकिन फिर उस टूटे दिल को संगीत के सुरों में ढाल दिया। एक तरफ इमोशन था तो दूसरी तरफ रफ्तार से भागती जिंदगी, और इन दोनों के बीच माधवन ने अपनी एक्टिंग से वो बैलेंस बनाया जिसे देख दर्शक बस यही बोले, क्या बात है।

बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो आर माधवन के लिए सिर्फ एक रोल नहीं बल्कि एक क्रिएटिव सफर थी, राम जी लंदन वाले। ये फिल्म तमिल हिट नल दमयंती की हिंदी रिमेक थी जिसे लिखा था कमल हसन ने, लेकिन हिंदी वर्जन को माधवन ने सिर्फ निभाया ही नहीं बल्कि संवादों से लेकर क्लाइमेक्स तक खुद लिखा खुद संवारा। बावर्ची नाम से शुरू हुई ये फिल्म बाद में राम जी लंदन वाले बनी। और खास बात ये थी कि निर्देशक संजय दयामा, जिन्हें आपने लगान जैसी फिल्मों में बतौर सह निर्देशक देखा होगा, पहली बार डायरेक्शन की कमान संभाल रहे थे। राम जी लंदन वाले आज भी माधवन के करियर की एक यादगार कहानी है। साल 2006 में रंग दे बसंती में फ्लाइट लेफ्टिनेंट अजय राठौर की भूमिका माधवन ने निभाई, जो छोटी लेकिन बेहद असरदार थी। कहा जाए तो उनके किरदार के इर्द गिर्द ही पूरी कहानी गुथी गई। इस फिल्म में सोहाली खान के साथ उनकी जोड़ी को काफी सराहा गया।

2009 में आई फिल्म थ्री इडियट्स और आर माधवन उस कहानी का वो हिस्सा बने जिसने लाखों युवाओं के दिल की बात कह दी। उन्होंने निभाया फरहान कुरैशी का किरदार, एक ऐसा लड़का जो इंजीनियरिंग की किताबों में उलझा जरूर था लेकिन उसके भीतर बसता था एक कलाकार का दिल, एक फोटोग्राफर की उड़ान। फरहान की दुविधा, उसके डर और अंत में उसका हिम्मत से किया गया फैसला, ये सब

कुछ इतना सच्चा लगा कि मानो हर दर्शक को अपनी ही कहानी उसमें दिखाई दी। माधवन ने फरहान को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि जिया, और इसी वजह से आज भी वो किरदार लोगों के दिलों में एक प्रेरणा की तरह जिंदा है।

साल 2011 और पर्दे पर नजर आई एक अनोखी प्रेम कहानी तनु वेड्स मनु। इस फिल्म में आर माधवन बने डॉक्टर मनु शर्मा, एक शांत संकोची लेकिन दिल से बेहद सच्चे प्रेमी। उनके सामने थी कंगना रनौत एक बिंदास और बगावती तनु के रूप में। मनु का किरदार जैसे सादगी की मिसाल था, वो प्यार करता लेकिन उसका शोर नहीं मचाता था, उसकी खामोशी में भी इश्क की आवाज थी। और फिर साल 2015 में इसका सीक्वल आया तनु वेड्स मनु रिटर्न्स। फिल्म ने तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। इस बार माधवन ने उसी मनु को और भी गहराई और टूटे दिल की तड़प के साथ निभाया।

बाद माधवन कुछ समय के लिए सिल्वर स्क्रीन से दूर हो गए। इस दौरान उन्होंने खुद को रिफाइन किया, एक्टिंग और लुक्स पर काम किया और साल 2017 में धमाकेदार वापसी की फिल्म विक्रम वेधा से। इस क्राइम थ्रिलर में उन्होंने एक पुलिस अफसर का किरदार निभाया जिसे क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों का प्यार मिला। इस थ्रिलर को निर्देशित किया था पुष्कर गायत्री की जोड़ी ने, जिन्होंने साल 2017 में तमिल सिनेमा को एक नई ऊंचाई दी। आर माधवन बने ईमानदार पुलिस अफसर विक्रम, गंभीर, सुलझा हुआ और भीतर से सवालों से घिरा हुआ। वहीं विजय सेतुपति के निभाए किरदार वेधा ने अपनी कहानियों से विक्रम की सोच को ही हिला दिया। ये फिल्म जितने थ्रिलिंग थी उतनी ही सोचने पर मजबूर करने वाली। तभी तो साल 2022 में आई इसकी हिंदी रीमेक। निर्देशन फिर से

पुष्कर गायत्री के हाथ में था। इस बार विक्रम बने सैफ अली खान और वेधा बने ऋतिक रोशन। फिल्म में एक्शन और स्टाइल भरपूर था, लेकिन गहराई थोड़ी हल्की। सैफ का विक्रम ज्यादा आक्रामक था, जबकि ऋतिक वेधा के रूप में पूरी तरह चार्म और धमक से भरे। तमिल वर्जन सोच के दरवाजे खोलता है और हिंदी वर्जन एंटरटेनमेंट का दरवाजा।

2022 में आर माधवन ने खुद को सिर्फ एक अभिनेता नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प और जुनून के प्रतीक के रूप में पेश किया। फिल्म थी रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ये फिल्म तीन भाषाओं में एक साथ बनी, इंग्लिश, तमिल और हिंदी। इस बार माधवन ने सिर्फ पर्दे पर अभिनय नहीं किया बल्कि इस फिल्म को लिखा, निर्देशित और प्रोड्यूस भी किया। कहानी थी एक सच्चे हीरो की, इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायणन की, जिनकी जिंदगी में विज्ञान जितना बड़ा था उतना ही बड़ा था अन्याय से लड़ने का हौसला भी। माधवन ने इस किरदार में नंबी सर की प्रतिभा, पीड़ा और आत्मसम्मान को कुछ इस तरह जिया कि हर दर्शक की आंखें नम हो गई। रॉकेटरी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और कांस फिल्म फेस्टिवल में भी इसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, ये थी माधवन की सबसे महत्वाकांक्षी और दिल के करीब परियोजना, जिसने साबित किया कि जब सच्ची कहानी और सच्चा कलाकार एक साथ मिल जाएं, तो सिनेमा इतिहास बन जाता है।

माधवन की निजी जिंदगी भी उतनी ही प्रेरणादायक है। उनकी पत्नी सरिता बिरजे हैं, जिनसे उनकी मुलाकात एक पब्लिक स्पीकिंग वर्कशॉप के दौरान हुई थी। वो एयर होस्टेस थीं और दोनों ने साल 1999 में शादी की। उनका बेटा वेदांत माधवन एक इंटरनेशनल स्विमर है और भारत के लिए उसने स्वर्ण पदक जीते हैं। माधवन अपने बेटे की सफलता को सबसे बड़ा गौरव मानते हैं।

हाल ही के वर्षों में माधवन ने न सिर्फ सिनेमा में वापसी की बल्कि अपने अभिनय की गहराई से सबको चौंका दिया। साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म शैतान, इसमें

तांत्रिक की भूमिका निभाई जो रहस्यमय और भयावह शक्तियों से जुड़ा हुआ है। इस किरदार में उनका खामोश डर, रहस्यपूर्ण मुस्कान और संजीदगी ने दर्शकों को डराया भी और बांधे भी रखा। ये भूमिका उनकी अभिनय क्षमता का एक नया आयाम दिखाती है। इसके अलावा वेब सीरीज डी कपल्ड में उन्होंने एक तलाकशुदा लेखक की भूमिका निभाई जो अपने रिश्तों और समाज की विडंबनाओं से जूझ रहा है। इस सीरीज में उनका व्यंग्यात्मक अंदाज और ईमानदार प्रदर्शन एकदम नया अनुभव था। साथ ही 2023 में नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित वेब सीरीज द रेलवे मैन में उन्होंने भारतीय रेल कर्मियों के संघर्ष को दर्शाने वाले एक अहम किरदार में दमदार अभिनय किया। हिसाब बराबर में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज के ज्वलंत मुद्दों को बारीकी से प्रस्तुत किया। माधवन का मानना है कि फिल्मों का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि प्रेरणा देना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना।

माधवन को मिले पुरस्कारों में शामिल हैं बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर साउथ अवार्ड, अलई पायते फिल्म के लिए आईफा और जी सिने अवार्ड का नॉमिनेशन उन्हें मिला थ्री इडियट्स फिल्म के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार उन्हें मिला बेस्ट फीचर फिल्म का रॉकेटरी के लिए। इसके अलावा उन्हें यूएन द्वारा यूथ आइकन के तौर पर सम्मानित किया गया। उनकी छवि एक जिम्मेदार अभिनेता और संवेदनशील इंसान की है। माधवन एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने मेहनत, लगन और ईमानदारी से इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बनाई। उम्र के इस दौर में भी उनका चार्म और व्यक्तित्व उन्हें किसी भी नए अभिनेता से कम नहीं ठहराता। वो आज भी हर दिल में बसते हैं, युवाओं के फेवरेट हैं और हर भूमिका में एक नई ताजगी लेकर आते हैं।

0: रहा था, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो।
1: आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित था दिलकश मुस्कान के मालिक आर माधवन पर, स्वर नेहा शर्मा का, शोध आलेख और प्रस्तुति तेजश्री कामले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: आज के फनकार।

आशा भोसले और किशोर कुमार की युगल आवाजों में पेइंग गेस्ट फिल्म से कार्यक्रम का ये गीत आप सुन रहे थे। आगे बढ़ चलते हैं और लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल आवाजों में कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं, आया सावन झूम के।

सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफी की आवाज में ब्रह्मचारी फिल्म से कार्यक्रम का आखिरी गीत आप सुन रहे थे। इसी के साथ पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ओल्ड इज गोल्ड अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, रात्रि के 10:30

हो गए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम में आज आपको सुनवाने जा रहे हैं सुभांत मुखर्जी का वायलिन वादन। इस कार्यक्रम में आज पहले आपको सुनवाने जा रहे हैं राग सहानी, जिसमें विलंबित झप ताल में निबद्ध है और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है। साथ ही इसी कार्यक्रम में इसके बाद आप सुनेंगे राग बागेश्री, जिसमें विलंबित तीन ताल और द्रुत दोनों ही तीन ताल में निबद्ध है।

0: अभी आप सुन रहे थे सुभांत मुखर्जी का वायलिन वादन। तबले पर संगत करने वाले कलाकार थे प्रमोद कुमार मिश्र। इसी के साथ आज का शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। मीरे वेव 4.1 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश। यहाँ काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है। इनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOEP के वेबसाइट पे होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं। ऋतु का ज्ञान रहा न जिन्हें, वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। श्रोताओं, रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी

0: क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैश्रम ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है। और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने ओडिशा में रामेश्वर से पारादीप तक 163 किलोमीटर से अधिक लंबे तटीय राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दे दी है। इस परियोजना की कुल लागत 830 करोड़ रुपए से अधिक होगी। श्री वैश्रम ने बताया कि इससे रामेश्वर और पारादीप के बीच यात्रा का समय लगभग 2.5 घंटे कम हो जाएगा। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 और 231 के खगड़िया पूर्णिया खंड को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। इसकी लागत 3,936 करोड़ रुपए से अधिक होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन संबंधी केंद्र सरकार की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की महानिदेशक कंचन देवी करेंगी। समिति को इस वर्ष 31 अगस्त तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। आग पर काबू पा लिया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
2: जिनके लापरवाही के कारण ये हुआ है, पुलिस जांच करके उसे तुरंत अभी गिरफ्तार करेंगी। आसपास के इस एरिया में ऐसी जितनी इमारतें चल रही हैं, जिसमें राई बराबर भी वॉयलेशन होगी, शाम तक उसकी जांच करके ऐसी सभी इमारतों को सील किया जाएगा। एक भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया है। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायकों के एक समूह को अलग विधायक दल के रूप में मान्यता देने के बाद ये नियुक्ति हुई है। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने आज राज्य के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सिद्धरमैया मंत्रिमंडल में गृह विभाग संभाल रहे डॉक्टर जी परमेश्वर ने उप मुख्यमंत्री पद की और 12 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री डीके शिवकुमार को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार जनता के कल्याण के लिए कर्नाटक सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत में आवागमन वाहन पारितंत्र अब किसी एक तकनीक पर निर्भर नहीं रहेगा। नई दिल्ली में हीरो मोटोकॉर्प की पहली फ्लेक्स फ्यूल मोटरसाइकिल बाजार में उतारे जाने के अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य का वाहन पारितंत्र इलेक्ट्रिक वाहनों, जैव ईंधन, हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा को भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप एकीकृत करेगा। इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में आयुष शेट्टी सिंगल्स तथा रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे मिक्स्ड डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। आयुष ने चीन के वेंग होंगयांग को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।